सुप्रभात। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी एफएम शिमला से बोल रही हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 22 मई साल 2026। इस समय प्रातः के 5:58 और 30 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: अपने रेडियो सेट्स पर आपने ट्यून किया है एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। हिंदी और अंग्रेजी में समाचार थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया रेले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से 7 सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह किया है।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ उद्योग जगत प्रमुखों को संबोधित करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की आधिकारिक यात्रा पर होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। असम में आज हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ बुधवार को लेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा हो गया है और तेल बाजारों को झटका लगा है। ईरान ने अमेरिका के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमेरिकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया था। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। 211 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by V.C. Pramod. Senior BJP leader Hemanta Biswa Sarma will be sworn in as Chief Minister of Assam in Guwahati today. Assam Governor Lakshman Prasad Acharya will administer him the oath of office in secrecy at a ceremony to be held at the Veterinary College playground in Khanapada area of the city. 4 ministers, including 2 from the BJP and 1 each from AGP and BPF, will also take oath along with the Chief Minister. They are Rameshwar Teli, Atul Boda, Charan Bodo and Ajanta Niyog. In a social media post, Mr. Sarma said that former Minister Ranjit Kumar Das will be NDA's candidate for the Assam Assembly Speaker's position. This will be the 2nd consecutive term for Mr. Sarma as Chief Minister and 3rd term for an NDA government in Assam. The swearing-in ceremony will be attended by Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh and BJP President Nitin Nobin, among others. The NDA, comprising the BJP, Aham Gana Parishad, AGP and Bodoland People's Front, BPF, secured a sweeping mandate in the assembly polls, winning 102 seats in the 126-member house. The BJP bagged 82 seats, while AGP and BPF won 10 seats each. Mr. Sarma, who first became Chief Minister in 2021, is set to become the first non-Congress leader in Assam to serve 2 consecutive terms as CM. This will be the NDA's 3rd consecutive term in the state since the BJP-led alliance first came to power in 2016 under then-CM Sarbanand Sonowal. Enforcement Directorate ED has arrested former Fire and Emergency Services Minister of the Government of West Bengal, Sujit Basu, in Kolkata in connection with the South Dumdum Municipality recruitment scam. Officials at the ED said that Bose allegedly recommended around 150 candidates for various posts under the South Dumdum Municipality in exchange for pecuniary benefits during the former TMC regime. The officials noted that ED has traced direct proceeds of crime in the form of flats allegedly acquired by him in lieu of providing municipal jobs to various individuals. The probe agency have also identified substantial cash deposits in banks' accounts under his control. Mr. Bose will be produced before the special court today. Prime Minister Narendra Modi will be on a 6-day visit to the UAE, Netherlands, Sweden, Norway and Italy beginning Friday.

गरुड़ की जिज्ञासा शांत करने के उद्देश्य से काक भुशुंडी ने विस्तार से सतयुग, त्रेता और द्वापर में सद्गति प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले अनुष्ठानों की व्याख्या की। फिर अयोध्या के शूद्रकुल में कलयुग का अपना वो अनुभव सुनाया जब भीषण अकाल पड़ा था और जिससे त्रस्त होकर वो उज्जैन चले गए थे।

अभी आप सुन रहे थे मानस गान। गायक कलाकार थे लता मंगेशकर, अनुराधा पौडवाल और साथी संगीतकार सतीश भाटिया। एफएम शिमला पर आइए अब सुनते हैं देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देशगान 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप जुड़े हैं एफएम शिमला के साथ और अब आप सुनेंगे एफएम न्यूज़ हेडलाइंस। नमस्कार, एफएम न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं सरुपमा शर्मा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों व महाविद्यालयों में एंटी चिट्टा जागरूकता अभियान का दूसरा चरण 1 जून से 20 अगस्त तक चलाया जाएगा। शिमला में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल देश का पहला राज्य है जहां पंचायत स्तर पर भी चिट्टा के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक 107 कर्मचारी चिट्टे में संलिप्त पाए गए हैं और इन गतिविधियों में संलिप्त पाए गए इन कर्मचारियों को 31 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि शिमला में सब्जी मंडी, केंद्रीय व्यापारिक जिला परियोजना और हमीरपुर में प्रस्तावित सिटी सेंटर परियोजना के अंतर्गत राज्य सरकार विश्व स्तरीय व्यापारिक और आर्थिक केंद्र विकसित कर रही है। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में भीड़ भाड़ कम करने, संस्थागत अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण और आधुनिक व्यावसायिक स्थलों, स्मार्ट पार्किंग सुविधाओं व ग्रीन ब्लू सार्वजनिक क्षेत्रों के माध्यम से ये परियोजनाएँ स्थायी राजस्व सृजन की दिशा में

0: सहायक साबित होंगी। कर्नाटक के मैसूर में पीठासीन अधिकारियों की समिति की दो दिवसीय बैठक आज शुरू हो रही है। इस बैठक में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया भाग लेंगे। बैठक में राज्यसभा के उपसभापति डॉ. हरिवंश व लोकसभा के वरिष्ठ अधिकारी और 6 राज्यों के पीठासीन अधिकारी भाग ले रहे हैं। चंबा जिले के भटियात उपमंडल के तुनुहट्टू लाहड़ू मार्ग पर ककीरा के पास एक वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई है और 2 बच्चों सहित 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को टांडा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। मृतकों में गुजरात के 5 पर्यटक थे, जबकि चालक मंडी जिले का निवासी था। ये पर्यटक हिमाचल प्रदेश घूमने आए थे। FM न्यूज हेडलाइंस में अभी बस इतना ही। नमस्कार।
1: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: एक सौ 3.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप जुड़े हैं एफएम शिमला के साथ और 7 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली की।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकट में से एक बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया। वडोदरा में कल सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से 7 सूत्रीय अपील को अपनाने का आग्रह किया।
3: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टाले।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होने की संभावना है। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इस महीने की 19 तारीख से इटली की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे राज्य में ये उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन तथा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 30 विधायकों ने पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने इडप्पडी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। इस विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करना है। कृषि मंत्री

0: शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ कृषि बदलाव से स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस पहल से लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
1: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
0: खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया है। सुजीत बसु पर तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। ईडी गिरफ्तार पूर्व मंत्री को आज अदालत में पेश करेगी। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया है। 211 रन के लक्ष्य के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट पर 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। माधव तिवारी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आप जुड़े हैं FM शिमला के साथ 103.7 MHz पर और आइए सुनते हैं चिंतन।
3: योगी और त्यागी पुरुष अपने उपभोग के निमित्त किसी का भी दान ग्रहण नहीं करते, क्योंकि उससे मन की स्वाधीनता और पवित्रता को काफी नुकसान पहुंचता है। दान ग्रहण करने से बाध्य बाधकता पैदा होती है और दाता के पाप शरीर और मन को कलुषित करते हैं। मेरे लिए ये हो जाए, मेरे लिए वो हो जाए, मुझे ये चाहिए या वो चाहिए, इस प्रकार वासनाओं के अधीन होना और उनके लिए दान ग्रहण करने का नाम परिग्रह है। अपरिग्रह है कामना शून्य त्याग का भाव। केवल शरीर रक्षा के लिए कुछ ग्रहण करने को परिग्रह नहीं कहते। ज्ञानी लोग फिर उस सामान्य भोग में आसक्त नहीं होते, क्योंकि वे निश्चय पूर्वक जानते हैं कि भोग में सुख नहीं है और उन्हें सुख की इच्छा भी नहीं होती। पर उनमें से जो कोई लोग हितकर कार्यों में रत रहते हैं, वो उस कार्य को ठीक तरह से कर सकने के उद्देश्य से यदि दान स्वीकार करें तो उसमें दोष नहीं होता। एक राजा को तत्व ज्ञान हो गया। उसने दरबार में अपने मंत्रियों से पूछा कि किसी को कोई दुर्लभ वस्तु मिल जाए तो वो क्या करे। किसी मंत्री ने कहा उसको छिपाकर रखना चाहिए, किसी ने कहा उसको सुरक्षित रखना चाहिए और किसी ने कहा तिजोरी में बंद कर देना चाहिए। सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, लेकिन राजा को किसी भी मंत्री के उत्तर पर संतोष नहीं हुआ। उसने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि कोई जानता हो तो मेरी इस बात का उत्तर दे। राज्य के अनेक व्यक्ति आए और उन्होंने अपनी अपनी बात राजा के सामने रखी, पर राजा को संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। उसके राज्य में एक बनिया रहता था, उसको भी तत्व ज्ञान हो चुका था। उसने राजपुरुषों के द्वारा राजा को कहलवाया कि किसी को कोई दुर्लभ वस्तु मिल जाए तो वो हल्ला नहीं करे बल्कि चुप रहे। राजा ने यह बात सुनी तो उसको बड़ा संतोष हुआ कि बनिया बात तो ठीक कहता है। राजा ने कहा कि हम खुद उससे मिलने जाएंगे। बनिए के पास समाचार पहुंचा कि अमुक समय में राजा आपसे मिलने के लिए पधार रहे हैं। नियत समय पर राजा उस बनिए के घर पहुंचा। साधारण सा घर था। बनिए ने राजा के बैठने के लिए बोरा बिछा दिया। राजा ने बनिए से बातचीत की, फिर राजा ने बनिए से कहा कि तुम कुछ भी मांगो, मैं देने को तैयार हूं। बनिए ने कहा, अब आगे से बिना बुलाए आप मत आना और मिलने के लिए मुझे भी मत बुलाना। राजा ने सोचा था कि अधिक से अधिक ये राज्य मांग लेगा, इससे अधिक और क्या मांगेगा। पर जब बनिए के मुख से ये बात सुनी

तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा, आपकी बात का तात्पर्य मैं समझा नहीं। बनिए ने कहा, महाराज मैंने आपको मेरे से मिलने या मुझे बुलाने के लिए मना किया है, पर मैं आपसे नहीं मिलूंगा ऐसा नहीं कहा है। आपके लिए मना इसलिए किया है कि लोगों में प्रचार हो जाएगा कि इनकी राजा से जान पहचान है, इसलिए लोग मुझे तंग करेंगे। कोई कहेगा कि मेरा ये काम करवा दो, कोई कहेगा मेरा वो काम करवा दो, कोई कहेगा राजा से कहकर मेरी नौकरी लगवा दो, और कोई कहेगा कि मेरी सजा माफ करवा दो, तो एक नई आफत पैदा हो जाएगी। इसलिए आप ना तो आएं ना मुझे बुलाएं, पर मैं जब चाहूंगा आपसे मिल लूंगा। मेरे मिलने की मैंने मना नहीं की है। वास्तव में अब ना आपको मेरे से मिलने की जरूरत रही, ना मुझे आपसे मिलने की जरूरत रही।

7:10 इस वक्त हो चुके हैं हमारे स्टूडियो की घड़ी में और ये समय है आपको ये बताने का कि आज एफएम शिमला पर कौन कौन से कार्यक्रमों को आप किस समय पर सुन सकते हैं।

आपको बता दें, आज सुबह 8:45 पर आप सुनेंगे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर, जिसमें आज का विषय है बदलते मौसम में त्वचा में होने वाले रोग। अगर आप इस विषय से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं, अपने प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप हमें आज कॉल कर सकते हैं सुबह 8:45 से 9:15 के मध्य। और हमारे फ़ोन नंबर्स रहेंगे 2808034 2808152।

देश और दुनिया की जानकारी आपको मिलती है समाचारों के माध्यम से और ये समाचार आप सुनते हैं हिंदी और अंग्रेजी में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, जो कि आप सुनेंगे दिन में 12 बजे से 12 बजकर 10 मिनट के मध्य, 1 बजे से 1 बजकर 10 मिनट के मध्य, दिन में 2 बजकर 15 मिनट पर, सायं 7 बजकर 5 मिनट पर, रात 8 बजकर 45 मिनट से 9 बजकर 15 मिनट तक और 11 बजे से 11 बजकर 10 मिनट तक। इसके अलावा आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से सुबह 9:20 पर, 11 बजे, दिन में 3 बजे, 6:30 बजे और 7:45 पर, और एफएम शिमला से एफएम न्यूज हेडलाइंस सुन सकते हैं आप सुबह 7:57 पर, 8:30 पर और 9:57 पर।

कुछ नए और कुछ पुराने फिल्मी गीतों का आनंद आप ले सकते हैं फिल्म संगीत में, जो कि आप सुनेंगे दोपहर 12:10 पर, 3:10 पर और शाम 8:30 पर, और सुबह 8:32 पर आप सुनेंगे लोक संगीत कार्यक्रम। 11:30 का समय रहेगा पहाड़ी संगीत कार्यक्रम का। आज दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे ज्ञान विज्ञान कार्यक्रम, और 3:05 पर सुनेगा जिले की चिट्ठी।

कार्यक्रम आप सुन सकते हैं और आज सुबह 10 बजे से 11 बजे के मध्य आनंद लीजिए राग छाया कार्यक्रम का। दोपहर 12:20 पर महिला सम्मेलन प्रोग्राम सुन सकते हैं आप और 2 बजे का समय रहेगा सबरंग कार्यक्रम का।

दोपहर 3:30 पर युवा दोस्त सुनेंगे युववाणी कार्यक्रम। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रमों में 4:20 पर सिरमौरी कार्यक्रम, 4:50 का समय रहेगा महाश्वी कार्यक्रम का। 5:20 पर आप सुनेंगे स्पीति कार्यक्रम। कांगड़ी कार्यक्रम सुनेगा 6:06 पर और 6:35 पर आप सुनेंगे लाहौली कार्यक्रम। 7:10 पर कृषि जगत कार्यक्रम सुन सकते हैं आप। शाम 8:00 सुनेगा भूले बिसरे गीत एक फिल्म से। ये प्रोग्राम आप सुनेंगे रात 9:15 पर। 9:30 पर दिल की आवाज़ भी सुन कार्यक्रम। 10:00 आनंद लीजिए दिलकश गजलों का और 10:30 पर आप सुनेंगे सदाबहार नगमे कार्यक्रम।

तो ये है वो कार्यक्रम जो आज आप सुनेंगे FM शिमला 103.7 MHz पर। और इन सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी FM शिमला।

0: आकाशवाणी के साथ जुड़िए और अपने उत्पाद और सर्विसेज यानी सेवाओं से जुड़े अपने कारोबार के बारे में सस्ते दामों पर विज्ञापनों के माध्यम से प्रचार प्रसार कर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें।
1: शुभवाणी, लाभवाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
0: नियम और शर्तें लागू।

शिमला की वादियों में फैली ठंडी हवा, देवदार के पेड़ों से छनकर आती धूप और सुबह की वो सुकून भरी खामोशी जिसमें दिल खुद ब खुद कह उठता है, वाह क्या खूबसूरत सुबह है। और इस खूबसूरत सुबह को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए एफएम शिमला पर रोजाना की तरह आज भी हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ बातें और थोड़ा मनोरंजन। जी आज के सफर में डिंपल ठाकुर है आपके साथ और कार्यक्रम है आपका अपना गुड मॉर्निंग शिमला। वैसे देखा जाए तो हर एक इंसान अपनी जिंदगी में किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहा है। किसी को अपनी मंजिल तक पहुंचना है, किसी को अपनी पहचान बनानी है, किसी को पैसा चाहिए तो किसी को बस मन की शांति चाहिए। लेकिन इन सबसे अलग सबसे अच्छे पल वो होते हैं जहां हम बिना दिखावे के बस खुलकर जी रहे होते हैं। एक चाय का कप हाथ में हो, साथ में आपका फेवरेट सॉन्ग चल रहा हो, कुछ गॉसिप हो और थोड़ा सा समय आप अपने खुद के लिए। लेकिन सोचने वाली बात वाकई में ये है कि क्या आज के समय में जो अपने लिए वक्त है हम निकाल पाते हैं इस बिजी लाइफ में। इस बात पर ज़रा गौर ज़रूर कीजिएगा।

बिल्कुल जी, हम सभी को अपने दिल की बात पर गौर जरूर करना चाहिए। और जिंदगी की इन बातों और एहसासों का ये सिलसिला आगे भी चलता रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त है अभी थोड़ा सा अतीत के सफ़र पर निकलने का, क्योंकि इतिहास सिर्फ बीते हुए कल की कहानी नहीं होता, ये हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो चलिए अब जानते हैं आज की तारीख से जुड़ी खास घटनाएं, कुछ यादगार पल और दिलचस्प बातें इतिहास की। बारह मई ईयर 1459, इस साल हुई थी जोधपुर की स्थापना। जोधपुर जो कि ब्लू सिटी के नाम से प्रसिद्ध शहर है और राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इस शहर का इतिहास राठौड़ वंश के इर्द गिर्द घूमता है। राठौड़ वंश के प्रमुख राव जोधा ने इसकी स्थापना की थी। यहाँ पर ढेरों शानदार महल हैं, दुर्ग हैं और मंदिर हैं जो इसे एक खूबसूरत पर्यटन स्थल बनाते हैं। और आपको बता दें, इसे सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और जोधपुर की शान है मेहरानगढ़ किला, जो कि यहाँ पर जब कभी भी आप विजिट करेंगे तो आप यहाँ पर इस किले को देख सकते हैं। ईयर 1666 में पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी औरंगजेब से मिलने आगरा पहुंचे। 1999 में रूस के उप प्रधानमंत्री सर्गेई स्टेपनिश कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त हुए और अमेरिका वित्त मंत्री रॉबर्ट रूबिन ने अपने पद से इस्तीफा दिया। ईयर 1784 में पेरिस समझौता प्रभावी हुआ था। 1820 की अगर हम बात करें तो आज ही की तारीख को 1820 में आधुनिक नर्सिंग आंदोलन की जन्म

दाता एक नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था। 1847 में विलियम क्लेटन ने ओडोमीटर का आविष्कार किया था।

ये गाना भी आपने एंजॉय किया गुड मॉर्निंग शिमला प्रोग्राम में। और इस गाने की अगर हम बात करें, इस गाने की खासियत यही है कि जिंदगी चाहे कैसी भी हो, अगर दिल खुश हो तो हर दिन आसान लगने लगता है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इतने उलझ चुके हैं कि कई बार खुद के लिए मुस्कुराने का वक्त भी नहीं मिलता हमें। लेकिन सच मानिए, जिंदगी सिर्फ काम और जिम्मेदारियों का नाम नहीं है। थोड़ी हंसी, थोड़ा अपनापन और थोड़ा सा सुकून उतना ही ज़रूरी है। पहले लोग कम चीज़ों में भी ज़्यादा खुश रहते थे, रिश्तों में समय था, बातों में अपनापन था। और आज की अगर हम बात करें तो सुविधाएँ बढ़ गई है लेकिन वक्त कहीं कम पड़ गया है। तो कोशिश यही कि दिन में कुछ पल अपने लिए भी निकालिए, परिवार के साथ बैठिए, दिल खोलकर हंसिए, क्योंकि खुश रहने से बेहतर कोई दवा नहीं होती। और कहते भी है ना कि जो हमारी हेल्थ है वो कहीं ना कहीं अच्छी बनी रहती है अगर हमारे चारों तरफ से पॉजिटिविटी हो और अच्छा ही अच्छा हो रहा हो। और जब सेहत की बात चली है तो आपको याद दिला दें कि आज सुबह 8:45 से आप सुनेंगे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर, जिसमें विषय रखा गया है बदलते मौसम में त्वचा में होने वाले रोग। अगर आप इस विषय से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें आज सुबह 8:45 से 9:15 के मध्य कॉल कर सकते हैं। और हमारे जो नंबर्स रहेंगे वो रहेंगे 2808034 2808152। इन फ़ोन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए विषय विशेषज्ञ आकाशवाणी स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे।

0: किसान हो या युवा या कोई पंजीकृत महिला संगठन, आप अपने कारोबार को सशक्त बनाने हेतु आकाशवाणी पर सस्ते दामों पर विज्ञापनों का प्रसार करवाकर अपने सपने साकार कर सकते हैं।
1: शुभ वाणी, भाववाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
0: नियम और शर्तें लागू।

छोटी छोटी आदतों से बड़ा बदलाव आता है। जो देश और समाज के काम आए वही असली इंसान कहलाता है। अपनी जिम्मेदारियों को दिल से निभाइए, क्योंकि बेहतर कल सिर्फ बातों से नहीं बल्कि अच्छे कामों से बन पाता है। जी हाँ, जिम्मेदारियां जो न सिर्फ हमारी जिंदगी को बेहतर बनाती है बल्कि समाज, प्रकृति और आने वाले कल को भी खूबसूरत बना देती है। आज हम सब तेज रफ्तार जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन अगर इस भागदौड़ के बीच हम थोड़ी समझदारी, थोड़ी सादगी और थोड़ी जिम्मेदारी भी साथ लेकर चलें तो शायद जिंदगी और भी बेहतर बन जाए। कौन सी जिम्मेदारी, कौन सी समझदारी? बिल्कुल जी, जहां संभव हो कुछ काम घर से भी किए जा सकते हैं। इससे क्या होगा, समय भी बचेगा और सड़कों पर बढ़ता हुआ ट्रैफिक भी कम होगा, पॉल्यूशन कम होगा। जैसे छोटी दूरी के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी सेपरेट गाड़ी में जाएं, कभी कभी सार्वजनिक परिवहन या साथ मिलकर सफ़र करना भी एक अच्छी आदत बन सकती है। छोटी छोटी कोशिशें ही अक्सर बड़े बदलाव लाती हैं। और अच्छी ज़िंदगी का रास्ता अच्छी सेहत से होकर गुजरता है, तो खाने पीने में संतुलन और सादगी भी बहुत ज़रूरी है। हमारा हिमाचल तो वैसे भी प्रकृति की बेहद करीब है, तो क्यों ना हम मिट्टी, पानी और खेती को बचाने वाली सोच को भी मजबूत करें। और ख़ास करके अपने स्थानीय उत्पादों, अपने लोगों की मेहनत को अपनाना भी अपनेपन की एक खूबसूरत पहचान हो सकती है। और अगर घूमने की बात करें तो भाई, हमारा हिमाचल किसी बात में कम नहीं है। यहाँ की खूबसूरती यहाँ आने वालों को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो अगर घूमना फिरना अगर आप चाह रहे हो तो कभी अपने देश, अपने प्रदेश और अपने आसपास की खूबसूरती को भी करीब से महसूस कीजिए, क्योंकि असली जो सुकून है वो अक्सर वही मिलता है जहाँ अपनी मिट्टी की खुशबू हो। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसकी अगर हम जिसका ख्याल रखेंगे, तो अपनी जिम्मेदारी इसके लिए समझेंगे, तो कहीं ना कहीं समाज के लिए हम बड़ा बदलाव ला सकते हैं। क्योंकि जो ये छोटी छोटी बातें होती है, ये छोटी छोटी आदतें होती हैं, यही मिलकर एक बड़ा बदलाव लाती हैं।

गुड मॉर्निंग शिमला प्रोग्राम, इस वक्त आप एंजॉय कर रहे हैं FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोस्तों, आज मोबाइल इंटरनेट ने हमारी ज़िंदगी को आसान तो बनाया है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ एक नुकसान भी हमें झेलने पड़ सकते हैं, जैसे डिजिटल फ्रॉड के मामले। अक्सर आए दिन हमें जो है इस तरह के मामले हमारे नज़र में आते हैं। कभी हमें कॉल आता है कोई, कभी KYC अपडेट के नाम पर मैसेज आता है, तो कभी किसी लिंक पर क्लिक करवाकर लोगों की मेहनत की कमाई कुछ ही मिनटों में गायब कर दी जाती है। याद रखिए, कोई भी बैंक, सरकारी संस्था या कंपनी फ़ोन पर आपसे OTP, ATM पिन, CVV या पासवर्ड कभी नहीं मांगती। अगर कोई कहे अभी OTP बताइए वरना अकाउंट बंद हो जाएगा, तो समझ लीजिए कुछ गड़बड़ ज़रूर है। खास करके अनजान लिंक्स पर क्लिक करने से बचिए। QR कोड स्कैन करने से पहले सोचिए और किसी भी लालच भरे ऑफर पर तुरंत भरोसा मत करिए। कई बार जो है जो फ्रॉड करने वाले होते हैं वो मन में डर पैदा कर देते हैं, तो कई बार आपको लालच दे देंगे, लेकिन जो हमारी थोड़ी सी सतर्कता है कहीं ना कहीं वो हमें बड़े नुकसान से बचा

सकती है। अगर कभी किसी फ्रॉड का शक हो तो तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन पर शिकायत कीजिए। स्मार्टफोन का यूज़ करना बहुत आसान है और अच्छी बात भी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है एक स्मार्ट यूज़र बनना। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप जो है इस तरह के फ्रॉड से खुद को बचा सकते हैं।

गुड मॉर्निंग शिमला प्रोग्राम, इस वक्त आप सुन रहे हैं FM शिमला पर। और अगर बात करें मौसम की तो मौसम का जिक्र होते ही मई महीने में भी यूं लग रहा है मानो अभी ठंड ने जो है हमसे रुखसत नहीं हुई है बिल्कुल भी पूरी तरह से। सुबह शाम थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की ठंड है। और अगर मौसम की बात करें तो आने वाले दिनों में तेज़ आंधी और ओलावृष्टि की जो है चेतावनी मौसम विज्ञान केंद्र के द्वारा जताई गई है, तो ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। तो हम आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि अगर आप कहीं बाहर इन दिनों घूमने निकल रहे हैं तो अपने साथ छाता कैरी ज़रूर करें, और साथ ही साथ इस बदलते मौसम में अपनी सेहत का भी खासा ख्याल रखें।

0: गुड मॉर्निंग शिमला कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
1: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला।
0: एक सौ 3.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं FM शिमला के साथ, और आइए अब सुनते हैं FM न्यूज हेडलाइंस।
2: नमस्कार, FM न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं सरुपमा शर्मा। प्रदेश में 4 नगर निगमों सहित 47 शहरी निकायों के चुनाव को लेकर पंचायत प्रचार अभियान तेज हो गया है। भाजपा व कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार कर समर्थन जुटाने में लगे हैं। सोलन नगर निगम की कुर्सी को बचाने के लिए कांग्रेस पूरा जोर लगा रही है। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने कल सोलन में चुनाव प्रचार किया और रोड शो के माध्यम से वोट की अपील की। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने कहा है कि मौजूद राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण आम जनता त्रस्त है। पालमपुर नगर निगम चुनाव प्रचार के दौरान कल उन्होंने नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में विकास कार्य ठप पड़े हैं और महंगाई व अर्थव्यवस्था से लोग दुखी हैं। डॉक्टर सिकंदर कुमार ने कहा कि नगर निगम चुनाव में लोग भाजपा की नीतियों में अपना विश्वास व्यक्त कर रहे हैं और भाजपा इन चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। प्रदेश में 4 नगर निगमों के चुनाव को लेकर भाजपा आज अलग अलग संकल्प पत्र जारी करेगी। संकल्प पत्र जारी करने के दौरान आज प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल सोलन में, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मंडी में, भाजपा उपाध्यक्ष विपिन परमार पालमपुर में और प्रदेश उपाध्यक्ष पवन काजल धर्मशाला में संकल्प पत्र प्रस्तुत करेंगे। पार्टी ने दावा किया है कि ये संकल्प पत्र जनता की समस्याओं और अपेक्षाओं को ध्यान में रख कर तैयार किया गया है। प्रदेश में पंचायत चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने के कल अंतिम दिन बड़ी संख्या में प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। आज नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 14 और 15 मई को नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। 15 मई को ही उम्मीदवारों के चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। FM न्यूज हेडलाइंस में अभी बस इतना ही। नमस्कार।
1: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: एक सौ 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं एफएम शिमला के साथ और 8 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व सरमा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के 2 तथा असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट के 1-1 मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान के साथ युद्ध विराम सबसे कमजोर स्थिति में और लाइफ सपोर्ट पर है। और बांग्लादेश ने भारत में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
3: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टालें।
2: सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है।
4: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
2: रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में खरीफ सीजन के लिए 51% से अधिक उर्वरक भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का अतिरिक्त प्रबंधन किया गया है। संवाददाता सम्मेलन में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सभी भारतीय जहाज सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास समय से सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगातार हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया को बताया कि भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारत ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है। मंत्रालय ने बताया कि तेहरान में भारतीय दूतावास ने 2500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद

0: की है। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व सरमा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। वे राज्य में उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। एक रिपोर्ट।
1: डॉक्टर हेमंत बिस्व सरमा के साथ आज चार अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। जिन चार कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी उनमें रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नेउग शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान को शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरी तरह सजाया गया है। वहीं कामरूप मेट्रो जिला प्रशासन ने शहर के विभिन्न हिस्सों में यातायात सुचारू बनाए रखने और जाम से बचने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलु मणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक समूह ने इडपड्डी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
3: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती
2: है। NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। एक रिपोर्ट।
6: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ उद्योग जगत के प्रमुखों को संबोधित करेंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल कृषि बदलाव के स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत पहल का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
7: सदियों से कहा।

0: पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
1: इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि ये पहल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार की सक्रियता दर्शाती है।
2: हम जानते हैं कि हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस किया है, और जब हम ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हमने हेल्थ सिस्टम्स को भी काफी स्ट्रेंथन किया है। और हमारी कोशिश क्या है कि हम एक्सपैंड करें अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी के हेल्थ। और जो हमारा फोकस है वो फोकस है प्रिवेंशन पर, अर्ली डिटेक्शन पर और कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर पर।
1: सेहत पहल का उद्देश्य स्वस्थ भारत के लिए कृषि, पोषण और वैज्ञानिक नवाचार को मजबूत करना है। खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी की जाएगी। खान मंत्रालय ने इन खंडों को संयुक्त राष्ट्र संसाधन वर्गीकरण प्रणाली के 3 और 4 अन्वेषण चरणों के अंतर्गत रखा है। मंत्रालय ने कहा कि संसाधन सीमेंट, निर्माण और अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी। अमरीका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। अमरीका ने ईरान के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमरीकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हुर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। एक रिपोर्ट।
3: ईरान की मांगे मुख्य रूप से युद्धकालीन परिस्थितियों और आर्थिक दबावों पर केंद्रित रही है, न कि तत्काल परमाणु रियायतों पर। लेकिन फिलहाल अमेरिका इन मांगों को मानने के पक्ष में नहीं है। मध्यस्थ लगातार साझा समाधान खोजने की कोशिश में है, लेकिन युद्ध के दबाव और आर्थिक संकट के कारण स्थिति और जटिल होती जा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात बुनियादी ढांचों पर हुए हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया तय कर रहा है। उसने एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है जिसका उद्देश्य देश पर 2,800 से अधिक ड्रोन और मिसाइल हमलों से हुए नुकसान का दस्तावेजीकरण करना है। संयुक्त अरब अमीरात अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी जवाबदेह तय करने और अपने प्रमुख स्थलों तथा ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों के लिए मुआवजे की मांग करने की तैयारी कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: बांग्लादेश क्रिकेट टीम के भारत में आईसीसी T20 विश्व कप से हटने के कारणों की जाँच के लिए 3 सदस्यों की जाँच समिति गठित की गई है। एक रिपोर्ट।
4: इस साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुई T20 विश्व कप से बांग्लादेश ने अपना नाम वापस ले लिया था। यह फैसला तब लिया गया जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश के मैच भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग को ठुकरा दी। विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कथित तौर पर कट्टरपंथी समूहों से धमकियों के बाद बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को IPL से बाहर कर दिया। हालांकि ICC ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है, लेकिन इसके बाद अंतरिम सरकार ने BCB को टूर्नामेंट से हटने का निर्देश दिया। नवल सिंह परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
5: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी मुद्रा बचाने की सलाह सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, ऑनलाइन कक्षाओं और काम को प्राथमिकता दें, कोरोना महामारी की तरह इस संकट से भी बाहर निकल आएंगे। पत्र के अनुसार सरकार ने कहा, परेशान ना हो, देश में पर्याप्त पेट्रोल और डीजल उपलब्ध। जनसत्ता के अनुसार पोखरण परीक्षण की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कोरोना सदी का सबसे बड़ा संकट था, जंग दशक के बड़े संकटों में से एक। नवभारत टाइम्स इसी खबर पर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता शीर्षक से संपादकीय में लिखता है, PM नरेंद्र मोदी के बाद सोमवार को पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने भी लोगों से सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करने की अपील की ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम की जा सके। हालांकि सरकार ने यह भरोसा दिया है कि देश में ईंधन की कमी नहीं है। वीर अर्जुन का शीर्षक है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताकर खारिज किया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बंगाल सरकार का फैसला, सीमा पर बाढ़ के लिए 45

0: इनके भीतर देगी जमीन।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के दो तथा असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट के एक एक मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। और बांग्लादेश ने भारत में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges people to save fuel and reduce use of foreign products in a bid to save forex amid West Asia crisis. Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma to be sworn in as Chief Minister of Assam in Guwahati today. 4 ministers, 2 from BJP and 1 each from AGP and BPF to also take oath. EDRS former West Bengal Minister Sujit Basu in connection with South Damdam Municipality recruitment scam. Prime Minister Narendra Modi to be on a 6-day visit to UAE, Netherlands, Sweden and Norway and Italy beginning Friday. US President Donald Trump says ceasefire with Iran is at its weakest and on massive life support. And Bangladesh forms committee to probe reason behind national cricket team's withdrawal from ICC Men's T20 World Cup in India. Prime Minister Narendra Modi has urged people to save fuel and reduce the use of foreign products to save foreign exchange amid West Asia crisis. Addressing a function in Vadodara, Gujarat yesterday evening, Mr. Modi reiterated his earlier appeal to revive COVID-era methods such as work from home, online classes, virtual meetings and reduced consumption of petrol and diesel, stressing on the need for collective efforts to reduce imports and help the country navigate the crisis. Prime Minister said there is a need for all of us to come together and fulfill our responsibility to reduce the burden on the country's resources.
3: आज समय की मांग है कि हम वोकल फॉर लोकल को एक जन आंदोलन बनाएं, विदेशी सामान की जगह लोकल उत्पादों को अपनाएं, अपने गांव, अपने शहर, अपने देश के उद्यमियों को हम ताकत दें। विदेश में वेडिंग इनका फैशन खूब बढ़ रहा है और लेकिन इस पर भी बहुत विदेशी मुद्रा खर्च हो, जरूरी है कि भारत में ही अपनी वैकेशन मनाएं। और वेडिंग के लिए भी मैं नहीं मानता हूं कि भारत से अधिक कोई अच्छी पवित्र जगह हो सकती है।
2: Prime Minister said that India spends lakhs of crores of rupees in foreign exchange to import many products from abroad, and the crisis has led to steep rise in imported goods and severely disrupted global supply chains. Mr. Modi said that his government is working to ensure the impact of the crisis on Indians is minimal.
3: सरकार भी लगातार ये प्रयास कर रही है कि देश के सामान्य नागरिक पर इन सारी विपरीत परिस्थितियों का कम से कम असर हो, लेकिन ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता। मेरी देश के हर नागरिक से अपील है, जहां संभव हो पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें।
2: Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma will be sworn in as the Chief Minister of Assam in Guwahati today. Assam Governor Lakshman Prasad Acharya will administer him the oath of office and secrecy at a ceremony to be held at the Veterinary College playground in Khanapara area of the city. 4 ministers, including 2 from BJP and 1 each from AGP and BPF, will also take oath along with Chief Minister. We have more from a correspondent.
4: Along with Dr. Himanta Biswa Sarma as Chief Minister, 4 other members of the Council of Ministers will also be sworn in today. The 4 cabinet ministers are Rameshwar Teli, Atul Bora, Charan Boro and Ajanta Niyog. The swearing-in ceremony will be witnessed by Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amir

0: Now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi urges people to save fuel and reduce use of foreign products and bid to save forex amid West Asia crisis. Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma to be sworn in as Chief Minister of Assam in Guwahati today. Four ministers, two from BJP and one each from AGP and BPF to also take oath. EDRS former West Bengal Minister Sujit Basu in connection with South Domdom municipality recruitment scam. Prime Minister Narendra Modi to be on a six-day visit to UAE, Netherlands, Sweden, Norway and Italy beginning Friday. US President Donald Trump says ceasefire with Iran is at its weakest and on massive life support. And Bangladesh forms committee to probe reason behind national cricket team's withdrawal from ICC Men's T20 World Cup in India. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा
2: 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं एफएम शिमला के साथ और आइए अब सुनते हैं एफएम न्यूज हेडलाइंस।
3: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं सरुपमा शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करने और घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के दौरान उपाय अपनाने की अपील की है। प्रदेश में पंचायत चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने के कल अंतिम दिन बड़ी संख्या में प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। आज नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 14-15 मई को नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। 15 मई को ही उम्मीदवारों का चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। प्रदेश की 3,754 पंचायतों में 31,182 पदों के लिए 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में मतदान करवाया जाएगा। लाहौल स्पीति की यूरनाथ पंचायत में पंचायती राज चुनावों को लेकर तस्वीर अब काफ़ी हद तक साफ हो गई है। नामांकन के अंतिम दिन तक प्रधान और उप प्रधान पदों के लिए कुल 5 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। इनमें प्रधान पद के लिए 3 और उप प्रधान पद के लिए 2 प्रत्याशी मैदान में हैं। वहीं पंचायत के सभी वार्ड सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं, जिसके चलते इन सीटों पर मतदान नहीं किया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव इंदर ने नाहन के समीप कौलार गांव में अज्ञात हमलावरों द्वारा बाप बेटे पर हुए हमले को लेकर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था चरमराने के कारण ही लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। बिंदल ने कहा कि यदि 24 घंटे के भीतर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है, तो जनता सड़कों पर उतरेगी। एफएम न्यूज हेडलाइंस में अभी बस इतना ही। नमस्कार।
4: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।

अपने रेडियो सेट्स पर आपने ट्यून किया है एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर, और आइए अब सुनते हैं एफएम शिमला पर लोक संगीत कार्यक्रम। कार्यक्रम में सबसे पहले आइए सुनते हैं कृतिका तनवर की आवाज़ में ये लोकगीत।

लोक संगीत कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। 8:45 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो डॉक्टर।

0: नमस्कार। हालो डॉक्टर कार्यक्रम के आज के संग में आप सभी का स्वागत है। मौसम बदलते ही सर्दी, जुकाम, बुखार के साथ साथ त्वचा संबंधी समस्याएं तेजी से बढ़ने लगती हैं। आज इन समस्याओं पर विस्तार से बात करेंगे, तो पहले आपको बता देते हैं अपने फ़ोन नंबर्स, ताकि आप आज के विषय से संबंधित जानकारी हासिल कर सकें हमारे विशेषज्ञ से। तो हमारा आज के फ़ोन नंबर्स हमारे रहेंगे 2808034, और हमारा दूसरा नंबर रहता है 2808152। यदि आप शिमला से बाहर हैं और आज के कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं, यानी आज के विषय से संबंधित जानकारी चाहते हैं, आज का हमारा विषय है बदलते मौसम में त्वचा में होने वाले रोग, तो आपको एसटीडी कोड लगाना होगा 0177, और हमारे फ़ोन नंबर्स रहेंगे 2808034, और दूसरा नंबर हमारा रहता है 2808152। आज हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर घनश्याम वर्मा। आप इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में त्वचा रोग विभाग में प्रोफेसर और एचओडी हैं। डॉक्टर घनश्याम वर्मा, आकाशवाणी स्टूडियो में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद। धन्यवाद सपना।
0: डॉक्टर वर्मा, जैसे कि हमारा विषय है बदलते मौसम में त्वचा से संबंधित होने वाली बीमारियां, तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि धूप से होने वाली बीमारियां कौन कौन से हैं जिससे त्वचा प्रभावित होती है हमारी?
1: जी, जैसा कि सीज़न अब गर्मियों का आ गया है, तो गर्मियों में होने वाली जो प्रमुख बीमारियां स्किन में देखी जाती है, उनमें चाहे वो धूप की एलर्जी हो, जिसको जो सनबर्न भी हो सकता है, या धूप की एलर्जी जिसको हम फोटोडर्मेटाइटिस कहते हैं, वो भी हो सकती है। इसी तरह से आजकल जैसे घास, स्पेशली कांग्रेस घास, गाजर घास जिसको हम कहते हैं, उससे होने वाली एलर्जी भी कॉमनली देखी जाती है। फिर जब लोग पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं अपने बाग बगीचों में, सब्जियों में, उससे होने वाली त्वचा के रोग भी आजकल ज़्यादा देखे जाते हैं। उसी तरह से आपने देखा होगा कि जिन लोगों को कोई पिगमेंटेशन ज़्यादा है, जैसे मिलाज़मा है, छाइयाँ जिसको हम कहते हैं, वो हैं, वो भी धूप की वजह से बढ़ जाती है
0: जी।
1: और फिर आप आजकल मच्छर, कीट पतंगे भी ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक पीडरस डर्माटाइटिस करके कंडीशन होती है, वो ज़्यादा देखने को मिलती है। और पेपुलर अर्टिग्रिया की भी हम कहते हैं, फिर प्रिकली हीट जिसको कहते हैं, गर्मियों में घमोरियों का होना, वो थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर कुछ लोग जैसे पसीना ज़्यादा पड़ता है, तो उनमें फंगल इन्फेक्शन के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कोई वेट वर्क करता है, उनको भी फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कुछ लोग डिओड्रेंट्स या पसीने को कम करने के लिए कुछ एंटी परस्पिरेंट यूज़ करते हैं, उसकी एलर्जी के केसेस भी देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ वायरल इन्फेक्शंस, स्पेशली हैंड फुट माउथ डिजीज़ करके एक बच्चों में बीमारी होती है, जिसमें हाथ में, पाँव में और मुंह के अंदर छाले पड़ते हैं, वो ज़्यादा होती है
0: और पेरेंट्स को पता नहीं चलता इस बीमारी
1: का। जी जी, माइल्ड सा वायरल इन्फेक्शन होता है।
0: डॉक्टर घनश्याम वर्मा एक कॉलर हैं, कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं, और आज के

0: इससे संबंधित आपसे जानकारी चाहते हैं, तो पहले इनसे बात कर लेते हैं। हेलो
1: हेलो
0: जी, हेलो डॉक्टर, कार्यक्रम
1: सर,
0: में आपका
1: ये कोरोना
0: स्वागत
1: स्किन
0: है।
1: प्रॉब्लम है, मतलब ये जब तक दवाई खाते हैं तब तक ठीक होती है, उसके बाद ये फिर से शुरू हो जाती है। मतलब
0: आप अपना नाम बताएं, क्या कहना चाहते हैं
1: मेरा नाम लवली शर्मा है।
0: जी। लवली जी, अब बताइए क्या समस्या है स्किन की।
1: मतलब ये जो दाद वगैरह रहते हैं ना, ये जब तक तो दवाई ले रहे तब तक तो ठीक है, कुछ टाइम ठीक भी हो जाते हैं, फिर शुरू हो जाते हैं वापस।
2: और शरीर के किस भाग में आपको ज़्यादा होते हैं ये मतलब अगर इसमें रिंग जैसे बन रहे हैं तो फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, या
1: हाँ जी,

0: मतलब ये जो दाद वगैरह रहते हैं ना, ये जब तक तो दवाई ले रहे तब तक तो ठीक है, कुछ टाइम ठीक भी हो जाते हैं, फिर शुरू हो जाते हैं वापस।
1: और शरीर के किस भाग में आपको ज़्यादा होते हैं ये मतलब अगर इसमें रिंग जैसे बन रहे हैं तो फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, या सिर्फ लाल धब्बे पड़ रहे हैं उसमें थोड़ी सी सोजिश हो रही है, ओंठों में हो रहा है तो अर्टिकेरिया हो सकता है।
0: हाँ जी,
1: नहीं तो क्या आपको गोल गोल निशान पड़ते हैं?
0: हाँ जी, पहले छोटा सा होता है फिर बड़ा बढ़ता जाता है वो।
1: मुझे लगता है कि फंगल इन्फेक्शन की ये प्रॉब्लम हो सकती है। फंगल इन्फेक्शन में एक चीज़ हम बार बार पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि एक तो ओवर द काउंटर मेडिसिन ना लें। होता क्या है कि हमारे बड़े भोले भाले पेशेंट्स बेचारे वो सीधे केमिस्ट के पास जाके दवाई मांगना शुरू कर लेते हैं, और वो केमिस्ट उसको पर्टिकुलर एक एंटीफंगल ना देके कॉकटेल्स दे देते हैं जिसमें स्टीरॉयड एंटीफंगल और एंटीबायोटिक्स होती हैं, जिसमें स्टीरॉयड जो है शुरू में ऐसा दिखाता है कि वो आपका इन्फेक्शन ठीक हो गया है, फंगल इन्फेक्शन ठीक हो गया, सिर्फ लाली कम हो जाएगी, खारिश कम हो जाएगी, बट अंदर जो फंगस है वो नहीं मरता है। तो उससे उसको हम स्टीरॉयड मॉडिफाइड फंगल इन्फेक्शन भी कहते हैं, तो उससे बहुत लंबे टाइम तक ये फंगल इन्फेक्शन रहता है। तो इसमें एडवाइस हमारी पेशेंट्स को ये रहती है, एक तो स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाएं, और बिना स्किन स्पेशलिस्ट के कोई भी मेडिसिन ना यूज़ की जाए, और जब मेडिसिन आपका स्किन स्पेशलिस्ट बताता है तो वो उसमें एक रूल ऑफ टू होता है जिसमें कि एक तो जहाँ त्वचा पे वो दाग है गोला है उससे 2 सेंटीमीटर बाहर तक दवाई लगाएं, उस पे तो लगाएं ही लगाएं पर 2 सेंटीमीटर बाहर तक लगाएं, और जब आपको लगे कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ उसके 2 हफ्ते बाद तक आप ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखें ताकि जो सब क्लिनिकल इन्फेक्शन है वो भी ख़त्म हो जाए, और मतलब फंगस जो है जड़ से त्वचा से चला जाए, फिर वो रिकरेंस नहीं होती है। और प्रिवेंशन के लिए हम लोगों को ये जो एंटी फंगल डस्टिंग पाउडर्स आते हैं उनको बोलते हैं, और कपड़े थोड़े लूज पहने, टाइट ना पहने, पसीना ताकि कम आए और एब्जॉर्ब हो जाए, मतलब वो उस चीज़ का ध्यान रखें।
2: जी, और बदलते मौसम में तो फंगल इन्फेक्शन जो है तेज़ी से फैलता है।
1: जी,
2: तो क्या बचाव, यही बचाव रहेगा?
1: बचाव कि उस पर जैसा एक तो जिनको पसीना ज़्यादा पड़ता है या जो वेट वर्क ज़्यादा करते हैं घर पे, कपड़े बर्तन जो भी काम करते हैं, तो अगर ज़्यादा गीले रखेंगे हाथ उसमें फंगस ग्रो कर जाता है, और स्पेशली आजकल जैसे गर्मियाँ हो रही है तो फंगस को ग्रो करने के लिए एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, ह्यूमिडिटी भी मिलती है, गर्मी भी होती है, तो वो ग्रो ज़्यादा करता है। तो एक तो इमीडिएटली कोई भी वेट वर्क करते हैं अपनी पूरी स्किन स्पेशली हाथ और पांव अच्छी तरह से, और कुले बॉडी फोल्ड्स अच्छी तरह से ड्राई कर ले टावल से, उसके बाद उसमें प्रिवेंशन के लिए एंटी फंगल पाउडर डाल सकते हैं। अगर किसी को हो गया तो वो आके डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाए, और एडिक्वेट करेक्ट एंड एडिक्वेट जो ट्रीटमेंट है वो बहुत,
2: और अपने डॉक्टर खुद ना बने।
1: जी।
2: डॉक्टर घनश्याम, हमारी चर्चा जारी रहेगी, इस बीच एक कॉलर कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। हेलो
3: नमस्ते।
2: नमस्ते,
3: सपना बहन और डॉक्टर साहब का भगवान स्वास्थ्य ठीक रखे, इसी दुआ करता हूँ।
2: जी धन्यवाद जी, आपकी दुआएं हमारे साथ हैं। जी, क्या जानना चाहेंगे?
3: बिहार के वैशाली जिले से।
2: बिहार के वैशाली जिले से बात कर रहे हैं जी, क्या जानना चाहेंगे डॉक्टर घनश्याम वर्मा से आज त्वचा से संबंधित?
3: शाकाहारी और मांसाहारी दोनों आदमी को स्किन डिजीज होता है। शाकाहारी वाले का स्किन डिजीज छिपरा जाता है, तो कुछ उपाय बताया जाए।
1: वैसे डाइट का स्किन की बहुत कम बीमारियां हैं जिस पे कोई रोल होता है। आप जो भी चाहे शाकाहारी हैं या मांसाहारी है उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। थोड़ा सा ये देखा गया है कि जो लोग सिर्फ शाकाहारी है उनमें कई बार विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसमें मुंह के अंदर छाले पड़ सकते हैं, जीभ जो है बहुत लाल लाल हो सकती है, मुंह के अंदर बर्निंग हो सकती है। ये अदरवाइज डाइट का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। थोड़ा बहुत रोल जो बच्चे हैं उनमें अगर पिंपल्स हैं, एक्नी हैं, वो बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा खाते हैं, तो उनको एक्नी ज़्यादा हो जाती है, तो उसमें थोड़ा सा डाइट का रोल है। अदरवाइज डाइट का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। अच्छी बैलेंस डाइट खानी चाहिए, फ्रूट हरी सब्जियां ज़्यादा खानी चाहिए ताकि खून की कमी ना हो,
2: विटामिन
1: मिलती रहे।
2: इस बीच एक और कॉलर है। हेलो

0: हेलो,
1: हेलो मैम, नमस्ते। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार।
0: नमस्कार
1: मैं मध्य प्रदेश सागर से विपिन कटारे बात कर रहा हूँ मैम।
0: कटारे जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। क्या जानना चाहेंगे आज
1: मैम
0: त्वचा संबंधी समस्याओं पर?
1: जी, मैम मेरे दो सवाल थे मैम। पहला मैं जानना चाह रहा था कि जो स्किन और इन्फेक्शन होता है बहुत सारे लोगों को, कि अलग अलग प्रकार का, किसी को धूल मिट्टी से और मतलब पेड़ पौधों से भी होता है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि ऐसे स्किन पे बहुत सारे निशान आते हैं और फुंसी जैसी होती हैं, तो इसके लिए मैं ये जानना चाह रहा था कि कोई जांच होती है जिससे हमें ये पता पड़ सके कि मतलब एग्जैक्ट किस चीज से इन्फेक्शन हो रहा है, क्योंकि समझ में ही नहीं आता कि
0: जी
1: इन्फेक्शन
0: जी
1: आकर
0: जी
1: है
0: जी
1: किस
0: जी
1: चीज का। और
0: देखिए
1: दूसरा सवाल
0: देखिए
1: है
0: जी, इन जो आपने इन्फेक्शन की बात की, एक तो सबसे पहले आप स्किन स्पेशलिस्ट, आपके आसपास जो भी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं उनको दिखाएं। स्किन इन्फेक्शन 3 तरह के हो सकते हैं। वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, जिसमें कि फोड़े, फिंसी, जिसको फॉलिकुलाइटिस हम कहते हैं या फ्रंकल कहते हैं, वो हो सकते हैं। उसमें एंटीबायोटिक दे के वो ठीक हो जाते हैं। कुछ लोगों को वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं, जिसमें कि हर्पीज जो लिप्स पे यूजुअली देखने को मिलती है, धूप से बढ़ती है। और कुछ लोगों को चिकन पॉक्स हो सकता है वायरल इन्फेक्शन में। बुज़ुर्गों को हर्पीज जॉस्टर हो सकता है, वो एक वायरल इन्फेक्शन है। इसी तरह से फंगल इन्फेक्शन, जैसे कि हमने पहले भी एक कॉलर को बताया कि फंगल इन्फेक्शन भी आजकल ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि अगर आपको कोई भी अपने स्किन का इन्फेक्शन लगता है, तो बेस्ट एडवाइस तो यह है कि आपका जो नियरेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट है उसको दिखाएं, रादर देन
1: ऐसे
0: कि
1: सर? डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने ये बोला था कि आपको किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, लेकिन वो पता नहीं पड़ रहा है, ऐसा बोला था
0: नहीं। उसके
1: उन्होंने।
0: टेस्ट होते हैं, फंगल इन्फेक्शन के टेस्ट होते हैं, उनका फंगल कल्चर कर सकते हैं, उनको स्लाइड बना के देख सकते हैं, और वायरल के लिए भी ब्लड के टेस्ट होते हैं। वैसे तो क्लिनिकली पता चल जाता है, अगर अदरवाइज टेस्ट टेस्ट होते हैं इसके। आप उनके बोलें कि मुझे मुझे मेरे टेस्ट कराएं इन्फेक्शंस के लिए, तो वो पता चल जाएगा। और उसके अकॉर्डिंगली जो भी इन्फेक्शन है, चाहे फंगल है तो एंटी फंगल लेनी पड़ेगी, अगर वायरल है तो एंटीवायरल दवाइयाँ लेनी पड़ती है। इसी तरह से आपकी जो भी जिस भी तरह का इन्फेक्शन है वो ट्रीट हो जाता है। जी विपिन कटारे जी, बहुत बहुत धन्यवाद हेलो डॉक्टर कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। इस बीच एक और कॉलर है, इनसे बात कर लेते हैं। हेलो,
2: हेलो, नमस्कार जी।
0: नमस्ते।
2: सपना बहन जी को भी नमस्कार और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार
0: नमस्कार
2: जी।
0: नमस्कार जी।
2: सर, तहसील करसोग गांव तलहन से मैं बोधराज वर्मा बात कर रहा हूँ।
0: जी
2: जी
0: बोलो।
2: जी
0: जी कहिए।
2: अजी, जैसे त्वचा रोग की सावधानी के बारे में जो डॉक्टर साहब ने कहा वो तो हमने सुन लिया और जानकारी हासिल कर ली, लेकिन मैं इतना बताता हूँ कि जैसे हम लोगों ने टैंकों में कई बार पानी रखा होता, नहीं वो कई बार गंदा हो जाता टैंकों का पानी।
0: जी
2: हेलो,
0: जी
2: तो
0: जी
2: उसको हम
0: कहिए।
2: जब पीते हैं उस पानी को, तो क्या उससे भी त्वचा रोग हो जाता है? और जैसे हम नहाते हैं, कई बार हम टॉल नहीं लेते और क्या नाम, गिल्ले में कई बार जल्दीबाजी में कपड़े पहन लेते हैं, तो क्या उससे भी कितना खतरा है?
0: जी
2: कृपया आकाशवाणी शिमला के माध्यम से विस्तार से बताएं। धन्यवाद।
0: जी जैसे आपने पानी की बात की, तो उससे कोई ऐसा तो स्पेशली कोई त्वचा रोग नहीं होता है। और अगर बरसात है, ह्यूमिडिटी है और गीले कपड़े आप पहन रहे हो, अपने बॉडी फोल्ड्स को ड्राई नहीं कर रहे हो, तो फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, जो मैंने कल ही मैं सपना जी से डिस्कस कर रहा था कि आजकल क्या, सदियों से हमारे समाज में एक भ्रांति है कि अगर आपको त्वचा रोग है, कोई त्वचा का इन्फेक्शन है, तो उसको वो पानी नहीं डालते हैं, रादर वो धोते नहीं हैं। कि जब हम पूछते हैं कि इसको आपने वॉश किया, नहाए आप कि नहीं, डॉक्टर हमने सोचा कि इसको हम पानी डालेंगे तो फैल जाएगा, बढ़ जाएगा, तो वो एक भ्रांति है। अगर किसी को भी किसी भी तरह का त्वचा रोग है, इन्फेक्शन है, तो वो नहा सकते हैं, पर उसमें अच्छी तरह से उसको धो सकते हैं। पर ये एक चीज़ का ध्यान रखें कि मेडिकेटेड सोप्स, दो तीन बहुत कलरफुल सोप्स होते हैं, मैं नाम नहीं बता सकता, मतलब मेडिकेटेड सोप्स ना यूज़ करें, कम से कम साबुन यूज़ करें, पर ल्यूक वार्म वाटर से नहाएं, और हफ्ते में अल्टरनेट डेज पे सोप यूज़ करें, और ताकि आपकी त्वचा साफ़ सुथरी रहे। और बाद में त्वचा पे अच्छी तरह से इमोलियंट्स, चाहे कोकोनट ऑयल है या कोई बॉडी लोशन है, वो लगाएं, उससे त्वचा रोग ना होने के चांसेस रहते हैं। यानी हल्का सा अगर शरीर में कोई दाग भी है तो उसकी भी साफ सफाई रखें, जी जी ये जी कहने का जी आपका जी जी अभिप्राय है। इस बीच एक कॉलर है, इनसे बात कर लेते हैं। हेलो,
3: जी मैम, नमस्कार जी।
0: नमस्कार
3: जी मैम, मेरा नाम किशोरी लाल, ग्राम पंचायत कोटा सेरी, तहसील आनी से बोल रहा हूँ मैम।
0: जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में।

0: जानना चाहेंगे आप?
1: जी मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरे मैम फंगल इन्फेक्शन हुआ था अंगूठे में मैम, उसके रोकने के बारे में कुछ जानना चाहता था मैम।
2: आपके सिर्फ अंगूठे में है कि नाखून में भी हैं आपके?
1: नहीं, अंगूठे में हुआ था सर, वैसे उसका ऑपरेशन कर दिया ना सर, मेरे को दोबारा होने की डॉट है सर इसका।
2: फंगल इन्फेक्शन में वैसे ऑपरेशन नहीं करते हैं हम, खाने वाली दवाइयाँ देते हैं, एंटी फंगल देते हैं, और उसको थोड़े लंबे टाइम के लिए लेना होता है और लगाने वाली एंटी फंगल देते हैं। अगर आपको समस्या, आप यहीं हिमाचल के हैं तो आप अपने नियरेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट को, अगर IGMC आपने आना है तो हम IGMC में आके आप हमें दिखाएं और उसका प्रॉपर डायग्नोसिस जब बनेगा तो उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट कर सकते हैं। और कहीं मतलब आप खुद से ना ट्रीटमेंट ले, जैसे आपने कहा कि ऑपरेशन हुआ है, तो फंगल इन्फेक्शन में यूजुअली कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर डीप फंगल इन्फेक्शन होगा तो कई बार पड़ सकती है ज़रूरत, पर उसके साथ भी एंटी फंगल मेडिसिन लंबे टाइम के लिए लेनी होती है।
0: जी
1: जी सर, जी सर।
0: किशोरीलाल जी, धन्यवाद आपका कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। घनश्याम वर्मा जी, जैसे कि गमोरियाँ गर्मियों में काफ़ी हो जाती हैं, बच्चे काफ़ी परेशान होते हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो भी परेशान हो जाते हैं, तो इसके साथ एक और समस्या हो जाती है सनबर्न की
2: जी।
0: तो क्या क्या करना चाहिए, क्या हमारा बचाव रहना चाहिए, किस तरह का उपचार रहना चाहिए?
2: गमोरियों की जो बात है उसको हम प्रिकली हीट भी बोलते हैं, या उसको मिलेरिया हमारी लैंग्वेज में मिलेरिया कहते हैं। और एक्चुअली ये जो है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, पसीना ज़्यादा आता है, तो कई लोगों के बच्चों के, छोटे बच्चों में भी होता है और बड़ों में भी होता है,
0: जी जी,
2: जिन जो हमारे स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जिनसे पसीना निकलता है हमारे शरीर में, वो ब्लॉक हो जाते हैं, उसकी डक्ट्स ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से या वो उसके कारण ये रहते हैं कि या तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, या किसी को बुखार है, या बहुत ही ज़्यादा टाइट कपड़े कोई पहन रहा है। जैसे आपने देखा होगा छोटे बच्चों को कई बार बहुत ही ज़्यादा ढक के रखते हैं, उससे वो स्वेट डक्ट्स जो है, स्वेट ग्लैंड्स की जो डक्ट्स है वो रप्चर हो जाती है, टूट जाती है, और उसमें घमोरियाँ बन जाती है, वो लाल रंग की हो सकती है, सिंपल फोले जैसे हो सकते हैं। तो उसका एक तो इलाज है कि खुला रखे शरीर को, खुले कपड़े, लूज़ कपड़े पहने, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो पंखे का यूज़ या एसी का यूज़ अगर कर पाएँ तो वो करें, और अगर किसी को ज़्यादा है तो उसमें सिम्टम्स हैं तो उसके लिए हम एंटी एलर्जिक, चाहे सिट्रिजिन है वो दे सकते हैं, एंटी मतलब फंगल डस्टिंग पाउडर्स दे सकते हैं, तो उससे वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। और जहाँ तक आपने सनबर्न की बात की, सनबर्न बेसिकली अगर बहुत ज़्यादा आप मिड डे में सन एक्सपोज करते हैं और हायर एल्टीट्यूड पे, एक भ्रांति और है, जो जितनी गर्म जगह पे रहता है लोग सोचते हैं कि दिल्ली में ज़्यादा सनबर्न होगा, हिमाचल में नहीं होगा, वो उल्टा है। जैसे जैसे आप हायर एल्टीट्यूड पे जाएंगे, किन्नौर, लाहौल स्पीति, जितने हमारे हायर एल्टीट्यूड है वहाँ सनबर्न होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट बिल्कुल क्लीन है आपकी, वहाँ अल्ट्रावायलेट रेज की जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, तो सनबर्न होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो एक तो सनस्क्रीन्स अच्छी तरह से यूज़ करें, पर एक सनस्क्रीन के साथ भी मैं और ऐड करना चाहूँगा कि इसके ऊपर भी बहुत बड़ी भ्रांति है, कोई महंगे से महंगा सनस्क्रीन खरीद के लोग सोचते हैं कि मैं तो पूरी तरह प्रोटेक्ट हो गया, कि जो कि प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। तो बेस्ट सनस्क्रीन्स आर फिजिकल प्रोटेक्शन, वो छाता हो सकता है, हैट हो सकता है, टोपी हो सकती है, या शेड सीकिंग बिहेवियर हो सकता है कि आप बहुत तेज़ धूप में ना जाएं, और अगर किसी को जाना पड़ रहा है तो वो प्रोटेक्शन मतलब हैट का यूज़ करे बागीचों में।
0: एक सबसे बड़ी भ्रांति ये है कि सनस्क्रीन केवल गर्मियों में ही यूज़ करना चाहिए,
2: नहीं, ये सनस्क्रीन का बेसिकली जिन कुछ लोग उनको सपना जी हम परसिस्टेंट लाइट रिएक्टर्स बोलते हैं, वो उनको क्या होता है कि अल्ट्रावायलेट रेज तो डैमेज करती ही करती है, इवन ये जो फिजिकल जो विजिबल लाइट है
0: जी,
2: वो भी हार्म करती है। तो अगर वो सन से बच भी जाएं फिर भी उनको सन की एलर्जी के सिम्टम्स आते रहते हैं
0: जी।
2: तो आइडियली सनस्क्रीन्स वैसे तो बोलते हैं कि सन में जाने से आधे घंटा पहले यूज़ करनी चाहिए, बट अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो घर के अंदर भी सनस्क्रीन्स का यूज़ कर सकते हैं, बट एडिक्वेट अमाउंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं तो चाहूँगा कि सनस्क्रीन से ज़्यादा आप फिजिकल प्रोटेक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट
0: जी। इस बीच एक कॉलर है, काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। हेलो,
3: नमस्कार जी।
0: नमस्कार
3: डॉक्टर साहब को, नमस्कार।
2: नमस्कार जी,
3: मैं डॉक्टर साहब पूछना चाहता हूँ आपसे, मुझे ना जी,
0: जी कहिए,
3: कुछ 4 साल पहले ना जी हाथ में खारिश हुई थी बहुत,
0: हाँ हाँ,
3: हाथ

0: मैं जी अभी मेरे को दोबारा प्रॉब्लम हो रही है। मैं आईजीएमसी भी आया था,
1: एक एक हाथ में आपके, दोनों हाथों में?
0: दोनों हाथ में अच्छी रात को डॉक्टर साहब बहुत होती है जी खारिश है, फिर उसमें दरारें सी पड़ गई थी मेरे ना जी।
1: आपके पैर सोल ठीक हैं? उसमें दरारें तो नहीं पड़ती हैं?
0: नहीं पहले तो पड़ी थी जी, अब डॉक्टर साहब दोबारा हो रहा है मेरे को रात को ना, जैसे खारिश होती है बहुत जी।
1: जी
0: मेरे को
1: जी जी जी
0: इसमें
1: आपकी दो समस्याएं हो सकती है, या तो ये एक्जिमा हो सकता है जिसको हम हैंड एक्जिमा कहते हैं, अगर किसी की स्किन थोड़ी सेंसिटिव है, अटॉपिक है कोई, जिनको जिनकी त्वचा सर्दियों में बहुत ड्राई रहती है, तो उनको हाथ पाँव में एक तरह का एक्जिमा होता है जिसको इजीली ट्रीट हो जाता है, पर उसमें वो अंदर से भी एलर्जिक होते हैं वो ऐसे लोग, और कई उससे उन लोगों में बाहर की एलर्जी होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं, जिसमें अगर कई लोग बहुत ज़्यादा हैंड वॉश करते हैं तो उससे भी दरारें पड़ सकती है, हाथ में एलर्जी सी हो सकती है, अगर मेडिकेटेड हैंड वॉश या मेडिकेटेड सोप्स यूज़ किए जाएँ उससे भी हो सकती है, या फिर एक बीमारी होती है जिसको हम सोरियासिस कहते हैं, उसमें हाथ और पाँव दोनों में ही तकलीफ़ होती है, खारिश भी बहुत ज़्यादा हो सकती है, और उसमें अगर बहुत ज़्यादा सीवियरिटी है तो उसमें हम एक मेडिसिन जिसको हम फॉलीट्रेक्स कहते हैं, वो हफ्ते में एक ही बार लेनी होती है, वो देते हैं, और भी कई तरह की मेडिसिन होती है, तो बेस्ट तो ये रहेगा कि आप आके हमें दिखाएं, हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा, पहले डायग्नोज करना पड़ेगा कि ये एक्जिमा है या सोराइसिस है। एक्जिमा के लिए हम पैच टेस्ट भी करते हैं, एलर्जी टेस्ट करते हैं, उसमें पता चल जाता है कि आपको किसी चीज़ कौन कौन सी चीज़ कैसे, जैसे सीमेंट की एलर्जी हो सकती है, डिटर्जेंट की एलर्जी हो सकती है, और मेटल्स की एलर्जी हो सकती है, और अगर वो सोरियासिस है तो वो तो एक पेपुलोस्क्विमस ऑटोइम्यून डिजीज़ है, उसको उस तरह से ट्रीट करना पड़ेगा
2: जी।
1: और एक सुजेशन और देना चाहूँगा कि बार बार नारियल का तेल, घी, वैसलीन, जो भी घर में इमोलियंट्स हैं, सॉफ्ट रखने की चीज़ें हैं, वो यूज़ कर सकते हैं बार बार, और बार बार हाथ ना धोएं इसमें।
2: जी जी। इस बीच एक और कॉलर हैं, कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। हेलो।
3: हेलो सपना ठाकरे जी, नमस्कार।
2: नमस्कार
3: डॉक्टर वर्मा जी।
1: नमस्कार। नमस्कार सर।
3: तेजराम शर्मा सुन्नी से बोल रहा हूँ जी।
2: जी तेजराम जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
3: हाँ डॉक्टर साहब, मेरे कजन ब्रदर है, उनको मेरे ख्याल एक दो बार वो आईजीएमसी में भी एडमिट रहे, उनके नीचे पाँव में ना जी एंकल के पास एक घाव है, उसमें कई बार खाज जाती होती है, पानी जैसा निकल जाता है
1: जी।
3: और जब वो एडमिट रहते हैं ऊपर आईजीएमसी में तो थोड़ा आराम हो जाता है, उसके बाद घर में आके फिर वही हाल है।
1: उनको वेरिकोज वेंस तो नहीं है? उनकी टांगों की जो नसें हैं वो फूलती तो नहीं है?
3: नहीं फूलती नहीं है जी, फिर वो उसमें खाज होती है, पर वो कई बार कर भी देते हैं ज्यादा, फिर उसमें पानी
1: जी
3: जैसा जड़ता है।
1: दो इसमें दो चीजें हो सकती है, एक तो हम उसको लाइकन सिंप्लेक्स क्रॉनिकस करके एक मेडिकल टर्म है वो कहते हैं, वो हमारी बॉडी में जिनकी स्किन सेंसिटिव है बॉडी में उनके कुछ इची पॉइंट्स बन जाते हैं, जहाँ की खारिश करना इंसान पसंद करता है, कई लोग गर्दन में खारिश करते हैं, कई लोग बाजू में खारिश करते हैं, कई लोग लेग्स में खारिश करते हैं, कई लोग ग्रोइन में खारिश करते हैं, और
3: वो दो बार आपके आईजीएमसी में दाखिल भी हो चुके हैं तो वहाँ थोड़ा सा सूख जाता है घाव, और उसके बाद घर में आके
1: जी एक बार उनको फिर से भेजे मेरे ओपीडी में, और अगर अगर वो एक्जिमा है तो उसमें हम पेशेंट को, मैं तो हम यूजुअली ये कहते हैं कि इसका इलाज पेशेंट के हाथ में है, वो ऐसे है कि एक तो जब भी इचिंग स्क्रैचिंग का मन करे तो उसको स्क्रैच ना करे, उसमें मॉइस्चराइज़र चाहे नारियल का तेल है, वैसलीन है, कुछ कुछ भी सॉफ्ट रखने का आपके पास क्रीम घर में है वो बार बार यूज़ कर सकते हैं, और स्क्रैचिंग को अवॉइड करें। दूसरा, जब ज़्यादा है, अगर घाव पड़ा है तो उसमें हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, खाने वाली भी दे सकते हैं, लगाने वाली देते हैं, और अगर इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है तो उसमें लगाने वाले स्टेरॉइड्स हम देते हैं, अगर वेरिकोज वेंस की प्रॉब्लम है तो स्टॉकिंग्स, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स आती है, जुराब आते हैं जो कि घुटने से ऊपर तक के पहनने पड़ते हैं, जिससे कि नसें फूलना बंद हो जाती है और नसों के द्वारा जो ये डर्माटाइटिस जिसको हम स्टेसिस डर्माटाइटिस कहते हैं वो प्रिवेंट हो जाती है, और एक बार अगर अल्सर्स बन जाएं तो उनको ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इस एरिया की ब्लड सप्लाई काफ़ी लिमिटेड होती है, तो ठीक करना बड़ा मुश्किल होता है। तो एक बार पेशेंट दिखाएं उसके हिसाब से उनको डायग्नोसिस समझा दिया जाएगा और उनको उनका उपचार ठीक से समझाया जाएगा।
2: डॉक्टर घनश्याम वर्मा, त्वचा रोगों में खासकर ज़्यादा धैर्य रखने की आवश्यकता होती है क्योंकि इलाज

0: जरा लंबा चलता है
1: जी,
0: तो इसलिए अगर धैर्य रखें तो समस्या का समाधान भी जल्दी होता है। इस बीच एक कॉलर है, इनसे बात कर लेते हैं। हेलो,
2: हेलो,
0: नमस्कार।
2: नमस्कार सर्वजन जी,
0: कौन बात कर रहा है?
2: डॉक्टर साहब नमस्कार।
1: नमस्कार,
2: मैं
1: नमस्कार जी।
2: महारानी से बोल रहा हूँ सर।
0: अच्छा जी, कहिए क्या
2: सर। मेरे है एक पाँव में ना सोरायसिस टाइप है, 2 साल से अजीब से इलाज कर रहा हूँ
1: जी।
2: तो कोई जब लोशन वगैरह जब देते हैं तो उस टाइम तो थोड़ा फायदा हो जाता है, पर फिर बाद में वही प्रॉब्लम 2 साल होगी लगभग सर।
1: सर मैं एक तो आपको अगर ये सच में ही सोरायसिस है तो इसमें एक चीज़ बड़ी क्लियरली समझाना चाहूँगा कि जो भी हमारे सोरायसिस के पेशेंट होते हैं हम उनको डिज़ीज़ का कोर्स की डिज़ीज़ कैसे बिहेव करेगी उसके बारे में डिटेल में समझाते हैं, जिसमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस बीमारी के क्योर के बारे में ना सोचें, क्योंकि ये बीमारी 100% हम ट्रीट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, बट क्योर नहीं होती है। एक बार की ट्रीटमेंट से हमेशा के लिए ख़त्म नहीं होती, उसका कारण है ये बीमारी बेसिकली हमारी त्वचा जो है वो 1 महीने में नीचे से बन के आती है और ऊपर से पुरानी त्वचा निकल जाती है, पर इस बीमारी में त्वचा हमारी 4-5 दिन में ही बन जाती है, मतलब त्वचा जल्दी जल्दी बनती है और वो जल्दी बनने की वजह से उसमें लाली रहती है, ख़ारिश होती है, पपड़ी निकलती है, चीरे पड़ते हैं, मतलब ये डिफेक्ट जो है ना बेसिकली ऑटोइम्यून डिज़ीज़ है, तो ये डिफेक्ट उम्र भर रहता है। तो हमें इसकी जो प्रिकॉशंस हैं और इसकी जो ट्रीटमेंट है वो ठीक से लेनी चाहिए। प्रिकॉशंस में मैं बताना चाहूँगा कि अगर पैरों में है तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम सॉक्स लगा के रखें, मॉइस्चराइज़र, कोकोनट ऑयल बार बार अच्छी तरह से यूज़ करें, कूल तार की प्रिपरेशन आती है रात को वो लगाएं, और कई लोगों को तो हम ये भी बोलते हैं कि वो प्लास्टिक के लिफाफे दवाई लगा के प्लास्टिक का लिफाफा बाहर से बांध ले और दवाइयों का असर उसमें बेटर होता है। अगर किसी की लाइफ को बहुत डिस्टर्ब कर रहा है तो उसमें खाने वाली बहुत सारी मेडिसिन आती है वो भी हम देते हैं। और एक अच्छी चीज़ सोरायसिस के बारे में ये है कि ये अपने आप भी ठीक हो जाती है, बीच में स्पॉन्टेनियस रिकवरीज भी हो जाती है। और तो आके दिखाएं एक बार फिर से, हम चाहेंगे अगर कोई कन्फ्यूजन है तो हम इसकी स्किन बायोप्सी भी कर सकते हैं
0: जी। इस बीच एक और कॉलर है। हेलो,
3: हाँ जी नमस्कार जी, आकाशवाणी शिमला के मैडम जी को भी और डॉक्टर साहब
1: नमस्कार जी। नमस्कार
0: जी। नमस्कार,
3: राजेंद्र सिंह सपैया
0: जी,
3: अमीरपुर के गाँव खानसरा से बोल रहा हूँ
0: जी। सपैया जी क्या जानना चाहेंगे आप?
3: मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि जैसे हमारी उम्र है 66
1: जी,
3: हमारे जैसे रात को सोते हैं तो मुंह का अंदर का जबड़ा खुश्क हो जाता है, जीभ सुन्न हो जाती है, वो क्या कारण है?
1: देखिए उसमें कई बार ना हम जो सांस लेते हैं वो नाक से ना लेके मुंह से सांस लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि हमें ऐसा हो रहा है। तो हमारे क्योंकि बार बार जब हवा हमारे मुंह से जाएगी हमारे फेफड़ों में तो वो हमारी मुंह के अंदर जीभ को भी ड्राई कर लेती है, डेफिनेटली बहुत ड्राइनेस लगती है, एक कारण ये कॉमनली देखा गया है। दूसरा उसमें ये ऐसा पेशेंट इसलिए भी करते हैं कि नाक की कोई तकलीफ तो नहीं है, उनकी नाक की हड्डी टेढ़ी तो नहीं है, नाक से सांस लेने में कोई दिक्कत तो नहीं है, तो इसलिए ऐसा होता है। और कुछ लोगों में अगर एक फंगल इन्फेक्शन होता है, कैंडिडा हम उसको कहते हैं, वो जिनके दांत आर्टिफिशियल दांत लगाए हैं जिन्होंने, उनमें वो जीभ के ऊपर लालगी रहती है, सूखापन रह सकता है, जलन हो सकती है, तो वो उसमें हम लगाने वाली एंटीफंगल देते हैं या खाने वाली फ्लूकोनाजोल भी दे सकते हैं। और कई लोगों को मल्टीविटामिन की डेफिशिएंसी होती है तो उसकी वजह से भी इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं, तो आपको दिखाना पड़ेगा स्किन स्पेशलिस्ट को, वो आपको एग्जैक्टली डायग्नोज करके इसका उपचार बता सकेंगे।
0: क्योंकि एज, इस एज में आके तो वैसे भी स्किन जो है संवेदनशील हो जाती
1: जी,
0: है
1: जी, जी।
0: बच्चों और बुजुर्गों की जो स्किन एंड की समस्याएं भी अलग अलग होती हैं। डॉक्टर घनश्याम वर्मा, कई बार हम देखते हैं कि जो लोग सॉक्स डालते हैं, जुराबे डालते हैं, तो उनको उससे पसीना आता है, पसीना आने से भी समस्या हो जाती है पाँव में, तो कई बार घाव भी बन जाते हैं, तो क्या करना चाहिए ऐसे लोगों को?
1: फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस
0: जैसा ही होता है, नाखूनों में भी फैल जाती
1: जी,
0: है
1: फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसमें एक तो हम एडवाइस करते हैं कि सॉक्स जो है नायलॉन के ना पहने
0: जी,
1: सॉक्स जिसको हम टॉवल सॉक्स बोलते हैं, थोड़े मोटे वाले होते हैं, स्पोर्ट्स वाले जो सॉक्स होते हैं वो पहनने चाहिए, उससे स्वेट जो है वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। और उससे भी पहले जब भी नहाएं या पैर धोएं उसके बाद अपनी उंगलियों के बीच की त्वचा को अच्छी तरह से ड्राई कर लें। और अगर किसी को अभी बहुत ज़्यादा

0: फंगल इन्फेक्शन नहीं है तो एंटीफंगल पाउडर डाल सकते हैं। अगर एक बार फंगल इन्फेक्शन हो गया है, उसमें लालगी आ गई है, खारिश है, चीरे पड़ रहे हैं, दर्द हैं, तो उसमें एंटीफंगल खाने वाली भी 2-3 से 4 हफ्ते के लिए हम देते हैं, लगाने वाली एंटीफंगल देते हैं। बट ड्राइनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ड्राइनेस रखें। और शूज़ जो है, अगर आपको परमिशन मतलब स्कूल या ऐसी जॉब नहीं है जिसमें ओक्लूसिव शूज़ पहनने पड़ रहे हैं, तो चप्पल या स्लीपर्स पहने।
1: डॉक्टर घनश्याम वर्मा, आज हमने त्वचा से संबंधित समस्याओं के बारे में आपसे जाना। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका धन्यवाद। इसी के साथ हेलो डॉक्टर कार्यक्रम का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है। नमस्कार।

0: लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो डॉक्टर अभी आपने सुना। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: एक सौ 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हैं एफएम शिमला के साथ और एफएम शिमला पर अब समय हुआ है आपको ये बताने का कि आज आकाशवाणी शिमला के प्राइमरी चैनल से कौन से मुख्य मुख्य कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं। आज सुबह 9:30 पर आप सुनेंगे सुरबेला कार्यक्रम में संजीव अभ्यंकर से राग भैरव पर आधारित गायन। 10 बजे से 11 बजे के मध्य आनंद लीजिए रिमझिम कार्यक्रम का। 11:05 पर आप सुनेंगे लोक संगीत कार्यक्रम। 11:30 पर सुनिएगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। सैनिकों के लिए ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं दोपहर 1:10 पर। आज दोपहर 2 बजे सुनहरी किरणें कार्यक्रम में आप सुनेंगे शिमला मिर्च की खेती सुरक्षित खेती, इस विषय पर बातचीत। और सायं 7:10 पर कृषि जगत कार्यक्रम में सुनेगा ग्रीष्मकालीन मूंग उत्पादन, इस विषय पर बातचीत।

शाम 8 बजे धारा रे गीत कार्यक्रम में आज सुनेंगे आप बालकृष्ण, अभिलाषा शर्मा और अनिल शर्मा के गाए कुछ लोकगीत। दोपहर 12:20 पर आप सुनेंगे महिला सम्मेलन कार्यक्रम। फिल्मी गीतों का आनंद आप उठा सकते हैं दोपहर 12:10 पर और शाम 8:15 पर। आज दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान। 3:05 का समय रहेगा जिले की चिट्ठी कार्यक्रम का। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रमों में आज आप सुनेंगे सिरमौरी कार्यक्रम 4:20 पर। 4:50 का समय रहेगा महास्वी कार्यक्रम का। 5:20 पर सुनेगा स्पीति कार्यक्रम। कांगड़ी कार्यक्रम सुन पाएंगे आप 6:06 पर और 6:35 पर सुनेगा लाहौली कार्यक्रम। शाम 8:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत कार्यक्रम। 9:15 पर गुलदस्ता में आनंद लीजिए दिलकश गजलों का। रात 9:30 पर मनी टॉक और 9:45 पर मंथन सुनेगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात 10 बजे आप सुनेंगे नाटक बंद दरवाजे और 10:30 पर सुरबहार में कुछ पुराने फिल्मी गीत सुन सकते हैं आप। तो ये हैं वो मुख्य कार्यक्रम जो आज आप सुनने वाले हैं आकाशवाणी शिमला के प्राइमरी चैनल से। और इन सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी शिमला का प्रसारण। आप सुन रहे हैं FM

0: 103.7 मेगाहर्ट्ज पर अभी आप कीजिए हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा।
1: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी प्रसारित कर रहे हैं। प्रादेशिक समाचार प्रसार भारती की रेडियो डीटीएस सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध है।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में पंचायती राज चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी, 80,153 प्रत्याशियों ने भरे नामांकन। चिट्टे के खिलाफ राज्य सरकार ने अपनाया सख्त रुख, चिट्टा मुक्त अभियान के दूसरे चरण के साथ ही नशे के खिलाफ लिए कई अहम निर्णय। प्रदेश में 4 नगर निगम चुनावों को लेकर प्रचार तेज, भाजपा और कांग्रेस नगर निगमों के लिए अलग अलग जारी करेगी घोषणा पत्र। मंडी जिला में विभिन्न क्षेत्रों में नशे के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई जारी और लाहौल स्पीति में सुबह से रुक रुक कर बर्फबारी का क्रम जारी, मौसम विभाग ने 10 जिलों में वर्षा व तूफान की जताई संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पंचायत चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन कल 37,591 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। इन चुनावों के लिए कुल 80,153 प्रत्याशियों ने अपने पर्चे दाखिल किए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कांगड़ा जिला में सबसे अधिक 14,590 नामांकन दर्ज किए गए हैं, जबकि लाहौल स्पीति में सबसे कम 493 नामांकन प्राप्त हुए हैं। चुनाव प्रक्रिया में नामांकन पत्रों की जांच आज की जाएगी, जबकि 14 और 15 मई को नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। 15 मई को ही उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। प्रदेश की 3,754 पंचायतों में 31,182 पदों के लिए 26, 28 और 30 मई को 3 चरणों में मतदान करवाए जाने हैं। नगर पंचायत नारकंडा के सभी पदों पर एक एक ही नामांकन दर्ज किए गए हैं, जिससे नारकंडा प्रदेश का पहला निर्विरोध निर्वाचित शहरी निकाय बन सकता है। हिमाचल में चिट्टे के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अपनाया है और पहली जून से चिट्टा मुक्त अभियान के दूसरे चरण को आरंभ करने की घोषणा की है। शिमला में एक पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री ने बताया कि देश भर में पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई में हिमाचल पहले नंबर पर आया है। उन्होंने बताया कि इस एक्ट के तहत देश भर में दर्ज मामलों में 33% से अधिक कार्रवाई के मामले हिमाचल के हैं। नशे को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने के संकल्प को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश की 234 पंचायतों को नशे की संलिप्तता के आधार पर चिन्हित किया गया है, जहां विशेष नशा जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि चिट्टे में संलिप्त 123 कर्मचारियों में से 31 को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि 90 और सरकारी कर्मचारियों पर जल्द कार्रवाई होगी। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर मंडी की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। नगर निगम चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के लिए प्रचार के दौरान जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा है कि मंडी में विकास कार्यों को गति देने के बजाय पूर्व भाजपा सरकार द्वारा आवंटित 15 करोड़ रुपये को सरकार ने वापिस लेकर दूसरी जगहों पर खर्च किया है, जिससे स्पष्ट है कि सरकार की प्राथमिकता में विकास नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिशोध है।
3: मंडी में भारतीय जनता पार्टी पिछली बार भी नगर निगम बनाने में सफल हुई है और अब की बार भी सफल होगी बहुत बड़े बहुमत के साथ। कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार से मंडी को, पूरे हिमाचल प्रदेश को नजरअंदाज किया, विकास कार्य के दृष्टि से मंडी को एक बार नहीं अनेकों बार जलालत की है, तो लोग जो है बहुत गुस्से में है वर्तमान कांग्रेस सरकार के, और निश्चित रूप से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ जीते।
2: पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने शिमला जिला से कांग्रेस समर्थित पंचायत समिति और जिला परिषद प्रत्याशियों की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने क्षेत्र के विकास को हमेशा प्राथमिकता दी है, जिस वजह से इन चुनावों में कांग्रेस विकास के नाम पर वोट मांग रही है, जबकि भाजपा व इनके नेताओं ने विकास को नजरअंदाज किया है और विकास कार्यों में अड़चनें खड़ी की है।

0: हमेशा जो है कभी पार्टी सिंबल पे नहीं हुए हैं, हमेशा जो है इंडिपेंडेंट हुए हैं, परंतु इस बार भाजपा ने एज अ स्ट्रैटेजिक मूव बोल सकते हैं उन्होंने पूरे स्टेट में जो है अपने उम्मीदवार घोषित करे हैं। कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार जो है हर क्षेत्र में जो लोकल एमएलए हैं उनके लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे अपने अपने कैंडिडेट जो है उतारे हैं। पिछले 5 साल की भी अगर मैं बात करूंगा भाजपा की सरकार की, वो अगर 2-3 गांव भी गिनाते हैं बड़े क्षेत्र के, हमारे कसुमटी विधानसभा क्षेत्र में हर जगह जो है हम लोग अच्छे बहुमत से जो है जिला शिमला में बहुत अच्छी लीड से कांग्रेस के जिला परिषद भी बनाएंगे और बीडीसी चेयरमैन और सदस्य भी बनाएंगे।
1: ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में हो रहे 4 नगर निगमों के चुनाव को लेकर भाजपा आज अलग अलग संकल्प पत्र लाएगी। भाजपा ने स्पष्ट किया है कि ये केवल चुनावी घोषणा पत्र नहीं बल्कि सभी नगर निगमों के क्षेत्र में समग्र विकास के लिए विजन डॉक्यूमेंट होगा। संकल्प पत्र आज भाजपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान जारी किए जाएंगे, जिसमें प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल सोलन में, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मंडी में, भाजपा उपाध्यक्ष विपिन परमार पालमपुर में और प्रदेश उपाध्यक्ष पवन काजल धर्मशाला में संकल्प पत्र प्रस्तुत करेंगे। पार्टी ने दावा किया है कि नगर निगम चुनाव में जनता विकास, पारदर्शिता व जवाबदेही की राजनीति को चुनते हुए भाजपा को समर्थन देगी। नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी प्रचार अभियान तेज कर दिया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यसमिति की सदस्य व प्रदेश मामलों की प्रभारी रजनी पाटिल 4 नगर निगम के चुनाव के प्रचार के लिए आज से प्रदेश के दौरे पर रहेगी। रजनी पाटिल आज सोलन में पार्टी का मैनिफेस्टो जारी करेगी और रोड शो के माध्यम से मतदाताओं से कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील करेगी। कल 13 मई को रजनी पाटिल मंडी, 14 मई को पालमपुर और 15 मई को धर्मशाला नगर निगम चुनाव के लिए रोड शो और चुनाव प्रचार कार्यक्रमों में हिस्सा लेगी। मंडी जिला के विभिन्न क्षेत्रों में नशे के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने करीब 6000 अफीम के पौधे और 500 ग्राम से अधिक चरस बरामद की है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिला में नशे के विरुद्ध चल रहे जीरो टॉलरेंस अभियान को लेकर पेश है एक रिपोर्ट।
2: मंडी जिला के ओट, बल और सदर थाना क्षेत्रों में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध अफीम की खेती और चरस तस्करी मामलों का खुलासा किया है। कार्रवाई के दौरान कुल 5971 अफीम के पौधों और 529 ग्राम चरस बरामद की गई, जबकि 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस थाना ओट के तहत गाँव धलोट के दुर्गम क्षेत्र में करीब 10 बीसवा भूमि पर अवैध रूप से उगाई जा रही अफीम की खेती पकड़ी गई, जहां से 3220 पौधे बरामद किए गए। वहीं दूसरी कार्रवाई में इसी गांव में करीब 9 बीसवा भूमि में 2791 अफीम के पौधे बरामद हुए। पुलिस ने दोनों जगह पौधों को कब्जे में लेकर नियम अनुसार नष्ट कर दिया और NDPS एक्ट के तहत मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि सभी मामलों में नियम अनुसार जांच जारी है और नशे के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद।
1: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने नाहन के समीप कोलार गांव में अज्ञात हमलावरों द्वारा 2 लोगों पर हुए हमले को लेकर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था चरमराने के कारण ही लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। बिंदल ने कहा कि कालंब और पांवटा साहिब क्षेत्रों में टिप्परों की आवाजाही अनियंत्रित है, जिससे आए दिन टिप्पर चालकों और आम लोगों में ऐसी झड़प हो रही है। उन्होंने सरकार से 24 घंटे के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में आज दिन की शुरुआत हल्के बादलों के साथ हुई है, जबकि लाहौल स्पीति में सुबह से रुक रुक कर बर्फबारी का क्रम जारी है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों में ऑरेंज अलर्ट, जबकि ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा और सोलन जिलों के लिए वर्षा व ओलावृष्टि के साथ तूफान आने का येलो अलर्ट जारी किया है। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। मुख्यमंत्री के हवाले से अमर उजाला ने सुर्खी दी है, हिमाचल में सरकारी नौकरी के लिए अब एंटी चिट्टा टेस्ट होगा अनिवार्य। दैनिक जागरण का शीर्षक है, कॉलेजों में प्रवेश व सरकारी नौकरी से पहले अनिवार्य होगा डोप टेस्ट। हिमाचल दस्तक की एक खबर है, चिट्टे को लेकर 234 पंचायतें रेड जोन में। 6 महीने बाद फिर शुरू हुई दिल्ली शिमला धर्मशाला सस्ती हवाई सेवा शीर्षक से दैनिक भास्कर लिखता है, सप्ताह में 6 दिन चलेगी सेवाएं। दिव्य हिमाचल व हिमाचल दस्तक की एक खबर है, चंबा

0: के ककीरा में गिरी गुजरात के पर्यटकों की गाड़ी, 6 की मौत, 4 घायल। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में पंचायती राज चुनावों के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी, 80,153 प्रत्याशियों ने भरे नामांकन। चिट्टे के खिलाफ राज्य सरकार ने अपनाया सख्त रुख, चिट्टा मुक्त अभियान के दूसरे चरण के साथ ही नशे के खिलाफ लिए कई अहम निर्णय। प्रदेश में 4 नगर निगम चुनाव को लेकर प्रचार तेज, भाजपा और कांग्रेस नगर निगमों के लिए अलग अलग जारी करेगी घोषणा पत्र। मंडी जिला में विभिन्न क्षेत्रों में नशे के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई जारी। और लाहौल स्पीति में सुबह से रुक रुक कर बर्फबारी का क्रम जारी, मौसम विभाग ने 10 जिलों में वर्षा व तूफान की जताई संभावना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार अभी आपने सुने। इसे FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज के साथ साथ आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर भी प्रसारित किया गया। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।
2: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज FM शिमला। हंसने हंसाने, आपको गुदगुदाने और कुछ गुनगुनाने के लिए
3: हम तो मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा, चाहे जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तो मोहब्बत करेगा।
2: FM

अपने रेडियो सेट्स पर आपने ट्यून किया है एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। और अब एफएम शिमला पर समय है आपके अपने कार्यक्रम का। जी हाँ, कार्यक्रम है आपका अपना कुदरत के रंग। तो इस मीठी सी धुन के साथ करते हैं आगाज आज के इस प्रोग्राम का। फिल्म का नाम है तुमसे अच्छा कौन है।

कुदरत के रंग कार्यक्रम में इस वक्त आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। कुदरत सिर्फ पहाड़, नदियां, जंगल और बारिश का नाम नहीं है दोस्तों। कुदरत वो एहसास है जो ठंडी हवा बनकर चेहरे को छूता है, जो बारिश की बूंदों में मिट्टी की खुशबू बनकर दिल में उतर जाता है, जो पक्षियों की आवाज बनकर हर सुबह को नया एहसास दे जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जिस प्रकृति से हमें इतना कुछ मिलता है, हम उसे बदले में क्या दे रहे हैं? आज मौसम बदल रहे हैं, कभी तेज़ गर्मी हो जाती है, बेमौसमी बारिश हो जाती है, तो कभी अचानक से सूखा पड़ जाता है, तो कभी अचानक बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है। पहाड़ों में लैंडस्लाइड बढ़ रहे हैं, नदियों का पानी कम होता जा रहा है और जंगलों की हरियाली धीरे धीरे घट रही है। एक तरह से हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि ये सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं है, बल्कि ये हमारी आदतों का कहीं ना कहीं नतीजा है जो आज हम सभी के सामने आ रहा है। पहले क्या होता था कि लोग जो है पेड़ों को अपने परिवार की तरह रखते थे, परिवार का एक हिस्सा मानते थे। एक पेड़ कटता था तो कई पौधे लगाए जाते थे, लेकिन आज विकास की दौड़ में जंगल कम होते जा रहे हैं और जब पेड़ कम होंगे तो बारिश का संतुलन भी बिगड़ेगा और बेमौसमी बारिश, बेमौसमी सूखा भी होगा। तो ऐसे में ज़रूरत है कि हम अपने आसपास जो है ख्याल रखें, ख़ास करके पेड़ पौधों का जब भी जिक्र होता है तो पेड़ों को ना काटें और नया पौधा ज़रूर लगाएं। खासकर जैसे हमारे घर में किसी का जन्मदिन है तो अपने जन्मदिन के मौके पर आप एक पौधा ज़रूर लगाएं।

एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुदरत के रंग। हम अपने घरों के आसपास, खेतों में, स्कूलों में या फिर खाली जगह पर पौधे लगा सकते हैं, जिससे हमारे पर्यावरण को सुरक्षित किया जा सकता है। खास करके देवदार, बान, पीपल, नीम, बरगद, आंवला जैसे पेड़ जो है हमारे पर्यावरण के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। लेकिन सिर्फ पौधे लगाना ही काफ़ी नहीं है, उनकी देखभाल करना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि एक पौधा जब बड़ा पेड़ बन जाता है तभी वो आने वाली पीढ़ियों को छांव और जीवन दे पाता है। इसके अलावा हमारे आसपास के वातावरण को

आंवला जैसे पेड़ जो है हमारे पर्यावरण के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं, लेकिन सिर्फ पौधे लगाना ही काफ़ी नहीं है, उनकी देखभाल करना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि एक पौधा जब बड़ा पेड़ बन जाता है तभी वो आने वाली पीढ़ियों को छांव और जीवन दे पाता है। इसके अलावा हमारे आसपास के वातावरण को और हमारी प्रकृति को सुंदर रखने का एक और आसान तरीका है, जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं तो क्या होता है कि कई लोग प्लास्टिक की बोतलें, चिप्स के पैकेट्स, कचरा वहीं छोड़ देते हैं। ज़रा सोचिए, जिस वादी में हम सुकून ढूंढने जाते हैं उसी जगह को गंदा करके लौट आते हैं। अगर हर इंसान सिर्फ इतना तय कर लें कि वो कचरा इधर उधर नहीं फेंकेगा तो हमारी धरती बहुत हद तक साफ रह सकती है। इसके साथ साथ प्लास्टिक का यूज़ जो है हमें कम से कम करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि प्लास्टिक मिट्टी और पानी दोनों को नुकसान पहुंचाता है। हमारे कपड़े हो तो उसके लिए जूट के बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं हम, और स्टील या कांच की बोतलों को अपना सकते हैं। इसके अलावा जो छोटे छोटे और भी कदम रहते हैं जिनको अगर हम अपनाएंगे तो कहीं ना कहीं हम अपनी प्रकृति को सुरक्षित कर पाएंगे। और एक आज की जो है हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत बन गई है वो है पानी बचाना। कई जगहों पर लोग पानी की कमी से जूझ रहे हैं, इसलिए जितना ज़रूरी हो उतना ही पानी यूज़ करें, नल को खुला ना छोड़ें, बारिश के पानी को इकट्ठा करने की आदत डालें। हमारे प्राकृतिक स्रोत जैसे नदियाँ, झरने, जंगल और पहाड़, ये सिर्फ प्रकृति की खूबसूरती नहीं बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों की धरोहर है। अगर आज हमने इन्हें नहीं बचाया तो आने वाले समय में सिर्फ तस्वीरों में हरियाली रह जाएगी। इसलिए ज़रूरत है आज कि हम सब मिलकर एक छोटा सा संकल्प ज़रूर लें, जितना हो सके एक पेड़ ज़रूर लगाएं, पानी की बचत करें, प्लास्टिक का यूज़ कम करें और अपनी कुदरत को साफ और सुरक्षित रखने में अपना योगदान दें।

और जब हम अपनी प्रकृति को खूबसूरत, स्वच्छ और सुंदर रखेंगे, तभी हम इन पंछियों की आवाज़ों को भी सुन पाएंगे, भंवरे की गुनगुन को महसूस कर पाएंगे। और आनंद ले पाएंगे ठंडी ठंडी हवा का।

0: कुदरत के रंग कार्यक्रम में आज बस इतना ही। एफएम शिमला आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। और आइए सुनते हैं एफएम न्यूज हेडलाइंस।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं सरूपमा शर्मा। प्रदेश में पंचायत चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन कल 37,591 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। इन चुनावों के लिए कुल 80,153 प्रत्याशियों ने अपने पर्चे दाखिल किए हैं। चुनाव प्रक्रिया में नामांकन पत्रों की जांच आज की जाएगी, जबकि 14 और 15 मई को नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। 15 मई को ही उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। प्रदेश की 3,754 पंचायतों में 31,182 पदों के लिए 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में मतदान होगा। प्रदेश में हो रहे चार नगर निगमों के चुनाव को लेकर भाजपा आज अलग अलग संकल्प पत्र लाएगी। भाजपा ने स्पष्ट की है, ये केवल चुनावी घोषणा पत्र नहीं बल्कि सभी नगर निगमों के क्षेत्र के समग्र विकास के लिए विजन डॉक्यूमेंट होगा। संकल्प पत्र आज भाजपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान जारी किए जाएंगे। नगर निगम चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी प्रचार अभियान तेज कर दिया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य व प्रदेश मामलों की प्रभारी रजनी पाटिल चार नगर निगमों के चुनाव प्रचार के लिए कल आज से प्रदेश दौरे पर रहेंगी। रजनी पाटिल आज सोलन में पार्टी का मैनिफेस्टो जारी करेगी और रोड शो के माध्यम से मतदाताओं से कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील करेंगी। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर मंडी की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। नगर निगम चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के लिए प्रचार के दौरान जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा है कि मंडी में विकास कार्यों को गति देने की बजाय पूर्व भाजपा सरकार द्वारा आवंटित 15 करोड़ रुपये को सरकार ने वापस लेकर दूसरी जगहों पर खर्च किया है, जिससे स्पष्ट है कि सरकार की प्राथमिकता में विकास नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिरोध है। राजधानी शिमला से सुबह 6:57 पर फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार।
2: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।

ट्यून इन है आप एफएम शिमला के साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर और एफएम शिमला पर अब कार्यक्रम राग छाया।

कविता कृष्णमूर्ति और सुखविंदर सिंह की आवाज़ों में ताल फिल्म का ये गीत अभी आपने एंजॉय किया। आपको बता दें ये गाना राग भैरवी और राग मिश्र शिवरंजनी पर जो है आधारित था। इस वक्त FM शिमला पर राग छाया कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, जिसमें हम आपको सुनाते हैं कुछ गीत रागों पर आधारित।

दिल्ली सिक्स फिल्म का ये सॉन्ग भी आपने एंजॉय किया। जावेद अली और कैलाश खेर की आवाज़ों में इस गीत की धुन बनाई थी AR रहमान ने। इस वक्त आप सुन रहे हैं FM शिमला पर राग।

और रागछाया कार्यक्रम का ये रहा आखिरी सॉन्ग आपके लिए, हम दिल दे चुके सनम फिल्म से। आप बस यूं ही एफएम शिमला के साथ बने रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

अभी आप सुन रहे थे राग छाया कार्यक्रम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप जुड़े हैं एफएम शिमला के साथ। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। 11 बजने को हैं, अब प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी की डीटीएच सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर भी सुने जा सकते हैं।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में पंचायत चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन कल 37,591 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। इन चुनावों के लिए कुल 80,153 प्रत्याशियों ने अपने पर्चे दाखिल किए।

0: राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कांगड़ा जिला में सबसे अधिक 14,590 नामांकन दर्ज किए गए हैं, जबकि लाहौल स्पीति में सबसे कम 493 नामांकन प्राप्त हुए हैं। चुनाव प्रक्रिया में नामांकन पत्रों की जांच आज की जाएगी, जबकि 14 और 15 मई को नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। 15 मई को ही उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। प्रदेश की 3,754 पंचायतों में 31,182 पदों के लिए 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में मतदान करवाए जाने हैं। नगर पंचायत नारकंडा के सभी पदों पर एक एक ही नामांकन दर्ज किए गए हैं, जिससे नारकंडा प्रदेश का पहला निर्विरोध निर्वाचित शहरी निकाय बन सकता है। हिमाचल में चिट्टे के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अपनाया है और पहली जून से चिट्टा मुक्त अभियान के दूसरे चरण को आरंभ करने की घोषणा की है। शिमला में एक पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री ने बताया कि देश भर में PIT NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई में हिमाचल पहले नंबर पर आया है। उन्होंने बताया है कि इस एक्ट के तहत देश भर में दर्ज मामलों में 33% से अधिक कार्रवाई के मामले हिमाचल के हैं। नशे को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने के संकल्प को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि चिट्टे में संलिप्त 123 कर्मचारियों में से 31 को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि 90 और सरकारी कर्मचारियों पर जल्द कार्रवाई होगी। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर मंडी की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। नगर निगम चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के लिए प्रचार के दौरान जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि मंडी में विकास कार्यों को गति देने के बजाय पूर्व भाजपा सरकार द्वारा आवंटित 15 करोड़ रुपये को सरकार ने वापिस लेकर दूसरी जगहों पर खर्च किया है, जिससे स्पष्ट है कि सरकार की प्राथमिकता में विकास नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिरोध है।
1: मंडी में भारतीय जनता पार्टी पिछली बार भी नगर निगम बनाने में सफल हुई है और अब की बार भी सफल होगी बहुत बड़े बहुमत के साथ। कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार से मंडी को पूरे हिमाचल प्रदेश को नज़रअंदाज किया, विकास कार्य के दृष्टि से मंडी को एक बार नहीं अनेकों बार जलालत की है, तो लोग जो है बहुत गुस्से में है वर्तमान कांग्रेस सरकार के, और निश्चित रूप से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ जीते।
0: पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने शिमला जिला से कांग्रेस समर्थित पंचायत समिति और जिला परिषद प्रत्याशियों की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने क्षेत्र के विकास को हमेशा प्राथमिकता दी है, जिस वजह से इन चुनाव में कांग्रेस विकास के नाम पर वोट मांग रही है, जबकि भाजपा व इसके नेता विकास को नजरअंदाज किया है और विकास कार्यों में अड़चने खड़ी की है।
2: इलेक्शंस हमेशा जो है कभी पार्टी सिंबल पे नहीं हुए हैं, हमेशा जो है इंडिपेंडेंट हुए हैं, परंतु इस बारी भाजपा ने एज अ स्ट्रैटेजिक मूव बोल सकते हैं उन्होंने पूरे स्टेट में जो है अपने उम्मीदवार घोषित करे हैं। कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार जो है हर क्षेत्र में जो लोकल MLA हैं उनके लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे अपने अपने कैंडिडेट जो है उतारे हैं। पिछले 5 साल की भी अगर मैं बात करूंगा भाजपा की सरकार की, वो अगर 2-3 गांव भी गिनाते हैं बड़े क्षेत्र के, हमारे कसुमटी विधानसभा क्षेत्र में हर जगह जो है हम लोग अच्छे बहुमत से जो है जिला शिमला में बहुत अच्छी लीड से कांग्रेस के जिला परिषद भी बनाएंगे और BDC चेयरमैन और सदस्य भी बनाएंगे।
0: प्रदेश में हो रहे 4 नगर निगमों के चुनावों को लेकर भाजपा आज अलग अलग संकल्प पत्र लाएगी। भाजपा ने स्पष्ट किया है कि ये केवल चुनावी घोषणा पत्र नहीं है बल्कि सभी नगर निगमों के क्षेत्र के समग्र विकास के लिए विजन डॉक्यूमेंट होगा। संकल्प पत्र आज भाजपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा चुनाव प्रचार के दौरान जारी किए जाएंगे, जिसमें प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल सोलन में, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर मंडी में, भाजपा उपाध्यक्ष विपिन परमार पालमपुर में और प्रदेश उपाध्यक्ष पवन काजल धर्मशाला में संकल्प पत्र प्रस्तुत करेंगे। नगर निगम चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी प्रचार अभियान तेज कर दिया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यसमिति की सदस्य व प्रदेश मामलों की प्रभारी रजनी पाटिल 4 नगर निगमों के चुनाव प्रचार के लिए आज प्रदेश के दौरे पर रहेगी। रजनी पाटिल आज सोलन में पार्टी का मैनिफेस्टो जारी करेगी और रोड शो के माध्यम से मतदाताओं से कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील करेगी। कल 13 मई को रजनी पाटिल मंडी, 14 मई को पालमपुर और 15 मई को धर्मशाला नगर निगम चुनाव के लिए रोड शो और चुनाव प्रचार कार्यक्रमों में हिस्सा लेगी। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में आज दिन की शुरुआत हल्के बादलों के साथ हुई है, जबकि लाहौल स्पीति में सुबह से रुक रुक कर बर्फबारी का क्रम जारी है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों में ऑरेंज अलर्ट, जबकि ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा और कांगड़ा और सोलन जिलों के लिए वर्षा व ओलावृष्टि के साथ तूफान आने का येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन

0: समाप्त हुआ हमारा अगला बुलेटिन, आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।
1: मीडियम वेव और FM शिमला, हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
0: आप ट्यून इन है 103.7 MHz आकाशवाणी FM शिमला पर।
2: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 MHz FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 MHz FM शिमला।

तुझे नमस्कार आदा, वेरी गुड मॉर्निंग। इस प्यारी सी सुबह और बादलों के बीच हल्की हल्की धूप के साथ आप सभी का स्वागत 103.7 MHz आकाशवाणी FM शिमला पर। आप ट्यून इन है 103.7 MHz आकाशवाणी FM शिमला पर। लीजिए, सुबह के 11:07 हो चुके हैं। एक बार फिर आज संगीत में सफ़र का करते हैं आगाज़, और इस सफ़र में मैं निभाऊंगी आपका साथ, आपकी रेडियो हम सफ़र रीटा पामा। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये वायदा है हमारा आपसे कि हम आपको बोर बिल्कुल भी नहीं होने देंगे अब से लेकर ठीक शाम 4:20 तक। तो आगाज़ हम करेंगे पुराने फिल्मी गानों के साथ। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ। और ये रहा प्रोग्राम का पहला नगमा।

तो इस वक्त आप पुराने फिल्मी गानों का आनंद ले रहे हैं एफएम शिमला पर। देखिए, संगीत वो जादू है जो बिना शब्दों के ही दिल की हर बात कह देता है, और अगर संगीत के साथ खूबसूरत शब्दों का मिलन हो तो क्या ही बात है। सुर और शब्द दोनों ही खूबसूरती के साथ एक बेहतरीन गीत को जन्म देते हैं। तो चलिए जी, बेहतरीन गीतों का आनंद आप ले रहे हैं एफएम शिमला पर, लीजिए कार्यक्रम का अगला नगमा, एंजॉय कीजिए।

तो जी, इस वक्त आप पुराने फिल्मी गानों का आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत में। देखिए, जब अपना एहसास हमें दूसरों तक पहुंचाने के लिए शब्द कब पड़ जाए, तब इंसान संगीत का सहारा लेता है और वो सहारा इतनी गहराई से सहारा देता है कि रिश्तों का एहसास जागने लगता है। हर एक गीत अपने साथ एक याद, एक एहसास और एक मुस्कान को बिखेरता है। तो चलिए जी, आपकी मुस्कान को भी हम बरकरार रखते हैं FM शिमला के ज़रिए एक से बढ़कर एक नगमे, बेहतरीन नगमे हम रोज़ाना सुनवाते हैं आपको। कार्यक्रम का अगला नगमा एंजॉय कीजिए।

तो चलिए जी, शोले फिल्म के इसी नगमे के साथ अभी के लिए पुराने फिल्मी गानों को देते हैं यहीं पर विराम। अब 11:30 होने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप बने रहिए एफएम शिमला के साथ, क्योंकि समय हो चला है जी पहाड़ी संगीत कार्यक्रम का, लेकर हाजिर होते हैं बस कुछ ही पलों में, सुनते रहिए एफएम शिमला।

तुझे एक बार फिर आप सभी सुनने वालों का स्वागत। लीजिए, हमारे स्टूडियो की घड़ी में एग्जैक्टली 11:30 हो चुके हैं। ये समय है पहाड़ी संगीत कार्यक्रम का। खूबसूरत समय के खास पलों का खास अंदाज के साथ अपने स्वरों में लोगों तक गांव की घटनाओं और कथाओं को सुनाना ही हमारे पहाड़ी लोक संगीत की खासियत है। और हिमाचली लोकगीतों की तो क्या बात कहें, जब भी ये हमारे कानों में पड़ते हैं हमें हमारी संस्कृति की ओर खींच ले जाते हैं। हम कहीं पर भी हों, हम कहीं पर भी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हों या फिर हम अपना जो है घर चला रहे हों, हम जीविका कमा रहे हों, लेकिन जब कहीं पर भी रहते हुए ये गाने हमारे कानों में पड़ते हैं तो हमें अपनी मिट्टी की याद ज़रूर दिलाते हैं। तो चलिए

तो जी इस वक्त हिमाचली लोकगीतों का आनंद ले रहे हैं आप पहाड़ी संगीत कार्यक्रम में।

हिमाचली लोकगीतों के एक एक शब्द में जैसे यहाँ की संस्कृति छुपी हुई है, एक एक शब्द एक एक दृश्य को प्रस्तुत करते हैं। मधुर संगीत के साथ इन गीतों की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है और अपने आप में ही ये कुछ गीत कुछ ना कुछ हमें कहकर जाते हैं और हमें एहसास दिलवाते हैं कि हम मिट्टी की जड़ों से जुड़े हुए हैं। तो चलिए कार्यक्रम का अगला नगमा भूप सिंह और जियालाल ठाकुर की आवाज़ में सुनवाते हैं आपको।

इस वक्त आप लोग गीतों का आनंद ले रहे हैं एफएम शिमला पर। तो देखिए, हर लोकगीत हमें सुनाता है एक कहानी जो रिश्तों के प्यार, प्रकृति की सुंदरता और हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा को प्रदर्शित करते हैं। ये शब्द और धुनें वो होती है जो दिल को अपने रंग में ही रंग देती हैं। इन सुरों में छिपी है पहाड़ों की सादगी और जीवन की सच्चाई। वादियों की ठंडी हवा के साथ बहुत ही खूबसूरत लगते हैं ये गीत। तो चलिए, मन को शांति देने वाले ऐसे ही गीत इस प्रोग्राम में हम सुनवाते हैं आपको। कार्यक्रम का अगला लोकगीत पूनम शर्मा और कुमारी संतोष तरवर की आवाज़ में।

देखिए, पहाड़ों की वादियों से गूंजती सुरों की मीठी आवाज़, यही है हिमाचली लोकगीतों की पहचान, जो देवभूमि हिमाचल की मिट्टी और उसकी खुशबू जो हमें हर गीत में सुनने को मिलती है और हमें जीवंत कर देती है, जहाँ हर धुन में बसी है परंपरा और हर गीतों में छलकता है पहाड़ों का प्यार। ऐसे ही लोकगीत हैं हमारी पहचान। अंजना भारद्वाज की आवाज़ में कार्यक्रम का अगला लोकगीत सुनिए।

तो चलिए जी, इसी नगमे के साथ अभी के लिए हम पहाड़ी संगीत कार्यक्रम को देते हैं यहीं पर विराम। वन जीरो थ्री पॉइंट सेवन मेगा हर्ट्ज आकाशवाणी एफएम शिमला ट्यून किया है आपने। इस वक्त दोपहर के 12 बजने वाले हैं। अब हिंदी और अंग्रेजी समाचारों के लिए हम आपको ले चलते हैं आकाशवाणी की दिल्ली स्टूडियो। कीजिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंता बिस्व सरमा ने आज असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
1: मैं श्री हिमंत बिस्व शर्मा ईश्वर नाम शपथ लौ जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण कर।
0: श्री शर्मा के साथ चार मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें से दो भाजपा के और एक एक सहयोगी दल असम गण परिषद तथा बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के हैं। यह असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की तीसरी बार सरकार है। श्री शर्मा ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। वे राज्य में ये उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन तथा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री भी उपस्थित हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी डॉ मनसुख मांडविया,

0: तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 30 विधायकों द्वारा पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा के साथ राज्य की राजनीतिक स्थिति में उलटफेर हुआ है। इन विधायकों ने अस्थाई अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। इस विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। इससे पहले कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगरपालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Senior BJP leader Hemanta Biswa Sarma has taken oaths as the Chief Minister of Assam for a second consecutive term. Governor Lakshman Prasad Acharya administered him the oath of office and secrecy at a ceremony held at the Veterinary College ground in Kanapara, Guwahati.
2: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বরের নামত শপথ লও যে বিধির দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি মই প্রকৃত বিশ্বাস আর আনুগত্য পোষণ করিম।
1: Along with Dr. Sarma, four MLAs, Rameshwar Teli, Atul Bora, Charan Boro and Ajanta Niyog were also sworn in as cabinet ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, several union ministers and chief ministers from BJP-ruled states attended the ceremony. With this, Dr. Sarma has become the first non-Congress leader in Assam to serve consecutive terms as chief minister. Prime Minister Narendra Modi has urged people to save fuel and reduce the use of foreign products to save foreign exchange amid the West Asia crisis. Addressing a function in Vadodara,

लीजिए, हमारे स्टूडियो की घड़ी में एग्जैक्टली 12:10 हो गए हैं। समय है फिल्म संगीत का, तो चलिए और इंतज़ार ना करवाते हुए आपको कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं कुमार शानू अलका याग्निक के गाए इस गाने के साथ।

तो चलिए जी, अभी इसी नगमे के साथ हम फिल्म संगीत प्रोग्राम को देते हैं यहीं पर विराम। अब हमारी स्टूडियो की घड़ी में कुछ ही पलों में 12:20 होने को हैं। आप हमारी कृपया अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलो हर्ट्स और FM 103.7 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। 12:20 हुए हैं, लीजिए पेश है कार्यक्रम महिला सम्मेलन।

0: कार्यक्रम महिला सम्मेलन सुनने वाली सभी बहनों को गरिमा और
1: दयावती का नमस्कार। कहते हैं बहनों, किसी भी व्यक्ति का प्रथम परिचय उसका खूबसूरत चेहरा हो सकता है, लेकिन उसका वास्तविक परिचय उसके व्यवहार से ही होता है। और ऐसा ही व्यवहार जब हम कहीं किसी अस्पताल में जाते हैं ना बहनों, तो हमें वो व्यवहार नर्स के रूप में मिलता है।
0: बिल्कुल, वो खूबसूरत चेहरा सेवा, ममता और त्याग की पहचान है नर्सें
1: जी।
0: नर्सें मरीजों के चेहरे पर उम्मीद की मुस्कान लाती हैं। नर्सें सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि हौसला भी देती है
1: जी।
0: सफ़ेद पोशाक में सेवा और करुणा की मिसाल है नर्सें
1: जी।
0: देखिए दयावती, हमारी बहनें सोच रही होंगी कि आज कार्यक्रम

0: कि शुरुआत में ही हम नर्सों के बारे में क्यों बात करने लग गए?
1: जी तो बहनों, हर वर्ष 12 मई को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। ये दिन उन नर्सों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है जो दिन रात मरीजों की सेवा में लगी रहती हैं।
0: बिल्कुल, आप देखिए ना, किसी भी अस्पताल में, स्वास्थ्य केंद्र में या फिर क्लिनिक की ही बात क्यों ना कर ले, उन सभी की रीढ़ होती है नर्सें।
1: जी
0: डॉक्टर हमें इलाज बता देते हैं, लेकिन मरीज की देखभाल, समय पर उनको दवा देना, उनकी परेशानियों को समझना और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ना कि कभी मुश्किल के समय पर उन्हें हिम्मत देना, ये सब काम जो नर्सें होती हैं वो बड़ी ही जिम्मेदारी से करती हैं।
1: बिल्कुल सही कहा गरिमा, क्योंकि 12 मई को ये दिवस इसलिए मनाया जाता है बहनों, क्योंकि इस दिन आधुनिक नर्सिंग की जनक मानी जाने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था।
0: जी
1: उन्होंने बीमार और घायल लोगों की सेवा को अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनके काम से प्रेरित होकर आज दुनिया भर में नर्सिंग सेवा को बहुत सम्मान दिया जाता है।
0: बिल्कुल, और देखिए जिस तरह के जो हम ये खास दिन मनाते हैं ना,
1: जी
0: इन्हें एक तो इन्हें मनाने के पीछे का मकसद यही होता है कि हम कुछ समय रुकें और जो ये दिन है, जो इसका बनाने का मकसद है,
1: जी
0: इसका जो थीम है, उसके बारे में सोचें।
1: जी
0: तो इस तरह के दिवस जो है ये हमेशा किसी थीम के साथ मनाए जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: बात करें हम इस वर्ष के थीम की तो वो है हमारी नर्सें हमारा भविष्य, सशक्त नर्सें जीवन को बचाती हैं।
1: जी
0: ये विषय इस बात पर जोर देता है कि स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों में सुधार और जीवन बचाने के लिए नर्सों को सशक्त बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है।
1: बिल्कुल आवश्यक है। नर्सें केवल अस्पताल में काम करने वाली कर्मचारी नहीं होती बहनों,
0: जी,
1: बल्कि वे मरीजों के लिए एक सहारा और उम्मीद बन जाती हैं।
0: बिल्कुल,
1: जब कोई व्यक्ति बीमार या फिर दर्द में होता है ना बहनों, तब नर्सें उसका मनोबल बढ़ाती हैं, उसे विश्वास दिलाती हैं कि वे जल्दी ही ठीक हो जाएंगे।
0: बिल्कुल, और देखिए कई बार नर्सें जो हैं वो अपने परिवार से कितने कितने घंटे दूर रहती हैं।
1: जी
0: आप नाइट ड्यूटी उनकी देख लीजिए, डे ड्यूटी देख लीजिए, वो दूर रहकर भी लोगों की सेवा उसी भाव से करती रहती है।
1: जी
0: और अगर बात करें, हम जरा याद करें वो कोरोना महामारी का समय, तो उसमें भी हमने देखा कि नर्सों ने कैसे अपने जान की परवाह किए बिना लाखों लोगों की मदद की थी।
1: जी और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हमें ये संदेश देता है बहनों कि हमें नर्सों के योगदान को समझना और उनका सम्मान करना चाहिए। उनका काम केवल नौकरी नहीं बल्कि मानव सेवा का एक महान उदाहरण है बहनों।
0: बिल्कुल,
1: देखिए ना बहनों, समाज में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने में नर्सों की बहुत बड़ी भूमिका होती है।
0: बिल्कुल, और देखिए इसी भूमिका को अप्रिशिएट करने के लिए, इसी भूमिका को सराहने के लिए आज के दिन स्कूलों, अस्पतालों और विभिन्न संस्थाओं में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाता है और नर्सों हैं उनके जो ये उत्कृष्ट कार्य हैं उनके लिए सम्मानित भी किया जाता है।
1: जी तो आइए इस अवसर पर हम सभी नर्सों के प्रति आभार व्यक्त करें और उनके समर्पण को सलाम करें। इसलिए सच ही कहा गया है बहनों कि जहां सेवा और ममता होती हैं, वहां एक नर्स का रूप दिखाई देता है।
0: बिल्कुल।

0: बहनों, घर सिर्फ ईंट और दीवारों का नाम नहीं होता है। ये वो जगह होती है जहाँ दिन भर की थकान उतरती है,
1: जी
0: जहाँ छोटी छोटी चीज़ें भी यादों का हिस्सा बन जाती हैं।
1: बिल्कुल बन जाती हैं। कभी दादी की पुरानी दीवार घड़ी, कभी माँ का पसंदीदा स्टील का जो बर्तन होता है, तो कभी लकड़ी की वो अलमारी जो सालों बाद भी घर को वही अपनापन देती हैं। आज के दौर में जहाँ हर चीज़ तेज़ी से बदल रही है ना बहनों, वहीं कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो समय से परे होती हैं,
0: बिल्कुल,
1: जो सिर्फ सजावट नहीं बल्कि पीढ़ियों तक साथ निभाने वाली यादें बन जाती हैं।
0: बिल्कुल। तो आइए आज बात करते हैं ऐसे ही कुछ टाइमलेस चीज़ों की, यानी ऐसी चीज़ों की जो घर की खूबसूरती तो बढ़ाती ही है, साथ ही साथ लंबे समय तक उपयोगी भी रहती है।
1: जी बहनों, आजकल बाजार में हर दिन नया ट्रेंड आता ही रहता है ना।
0: बिल्कुल।
1: कभी किसी खास रंग का फैशन,
0: जी
1: कभी किसी नए डिज़ाइन का फर्नीचर, तो कभी सजावट के लिए ऐसे सामान जो कुछ समय बाद ही पुराने भी लगने लगते हैं।
0: बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। और देखिए, हम ना अक्सर ऐसे लालच आ जाता है, उनका आकर्षण ही ऐसा होता है कि हम लालच में आकर ऐसी चीज़ें खरीद भी लेते हैं।

0: जी
1: और कुछ समय बाद वो जो चीजें हैं वो अपना आकर्षण फिर खो देती है। लेकिन कुछ चीजें ना देखिए दयावती ऐसी भी होती हैं जो
0: जी
1: समय के साथ और भी ज्यादा सुंदर लगने लगती है। इन्हीं को कहा जाता है टाइमलेस इन्वेस्टमेंट।
0: बिल्कुल। और ऐसे ही टाइमलेस इन्वेस्टमेंट हमारी फर्नीचर भी हो सकता है। वैसे भी घर की पहचान उसके फर्नीचर से भी होती है ना।
1: बिल्कुल
0: जैसे कि लकड़ी से बना मजबूत फर्नीचर हमेशा से लोगों को पसंद रहा है, तो सागौन और शीशम जैसी लकड़ियों का फर्नीचर जो है ना बहनों, सिर्फ मजबूत ही नहीं होता बल्कि समय के साथ उसकी चमक और सुंदरता भी बनी रहती है।
1: बिल्कुल। और देखिए ऐसे ही सागौन या शीशम का एक मजबूत डाइनिंग टेबल हो अगर आपके घर पे है जहाँ पूरा परिवार साथ में बैठता है, एक कोई ऐसा आरामदायक सोफा हो जहाँ शाम की चाय हो और ढेर सारी बातें होती हो, ये जो चीज़ें होती है ना ये सिर्फ फर्नीचर ही नहीं रह जाती,
0: जी
1: फिर ये हमारे घर की यादों का हिस्सा भी बन जाती है, क्योंकि हम जब बाद में उसके बारे में सोचेंगे ना तो वो फर्नीचर और वो सोफा भी कहीं ना कहीं हमारी यादों में का हिस्सा बन जाता है।
0: जी वहीं गरिमा देखो ना, हम सबकी रसोई में स्टील के बर्तन तो होते ही हैं और
1: बिल्कुल
0: इनका खास महत्व भी रहता है। स्टेनलेस स्टील के बर्तन मजबूत भी होते हैं और लंबे समय तक चलते भी हैं, और
1: जी
0: आज भी कई घरों में वर्षों पुराने बर्तन संभाल कर रखे जाते हैं, क्योंकि उनमें सिर्फ उपयोगिता नहीं बल्कि भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। और
1: बिल्कुल
0: इसी तरह जो है ना, कास्ट आयरन के बर्तन भी धीरे धीरे फिर से लोकप्रिय हो रहे हैं, है ना।
1: हाँ बिल्कुल
0: इनमें बना खाना स्वादिष्ट भी होता है और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा माना जाता है।
1: जी। और देख मतलब ये हुआ कि जो चीज़ें टिकाऊ है, सुरक्षित है
0: जी
1: और रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसान बनाती हैं, वही तो हुआ ना हमारा असली निवेश। मतलब
0: बिल्कुल
1: ऐसी चीज़ों पर ही असली निवेश करना चाहिए। और
0: जी
1: वैसे भी आज की जो डिजिटल युग है उसमें भी देखिए इसी तरह से अगर हम देखें, जैसे अभी तो हम किचन
0: जी
1: की बात कर रहे थे,
0: जी
1: अब हम बढ़ते हैं थोड़ा ड्राइंग रूम की ओर, और आज के जो हमारा डिजिटल युग है उसमें दीवार घड़ी का जो आकर्षण है ना वो अभी तक कम नहीं हुआ है। आप चाहे कितनी मर्जी फैंसी घड़ी हाथ में पहन लीजिए, लेकिन दीवार पर जो एक घड़ी ना वो जो आपके घर की शोभा बढ़ाती है वो पहले के समय में भी वैसे ही बढ़ाती थी और आज भी वैसे ही बढ़ाती है।
0: बिल्कुल। इसके अलावा जो देखिए बहनों, जो घर की दीवार पर लगी एक सुंदर प्लास्टिक घड़ी सिर्फ समय ही नहीं बताती बल्कि घर की सजावट में भी अलग पहचान जोड़ती है।
1: बिल्कुल
0: साथ ही क्या है, घर के वातावरण को बदलने में जो है लाइटिंग की भूमिका को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है बहनों।
1: बिल्कुल जो सिंपल छोटी छोटी एलिगेंट लाइटिंग होती है ना वो हमेशा सुंदर लगती है।
0: जी
1: तो अगर आप घर के लिए अपने लाइटिंग को चुन रहे हैं तो उसका ध्यान रखें कि फैशन के चलते ही नहीं आप उसको ले लें कि आजकल फैशन में ये वाली लाइट चली है तो हम ये ले लें,
0: जी
1: बल्कि लंबे समय तक आरामदायक और आकर्षक जो लगे आप ऐसी किसी लाइटिंग को चूज़ करें।
0: जी तो बहनों, टाइमलेस चीज़ों की सबसे बड़ी खासियत तो यही है कि वो बदलते समय के बावजूद अपनी उपयोगिता बनाए रखती हैं। ये सिर्फ दिखावे की चीज़ें नहीं होती हैं बहनों, बल्कि जीवन को सरल और सुंदर बनाती हैं।
1: बिल्कुल वैसे भी घर की जो असली खूबसूरती होती है ना वो महंगे सामानों से तो होती नहीं है
0: जी
1: बल्कि उन चीज़ों से बनती है जो समय के साथ भी अपना अपनापन बनाए रखती हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। तो अगली बार जब बहनों आप घर के लिए कुछ खरीदे ना, तो केवल फैशन नहीं बल्कि अपनी उपयोगिता, मजबूती और लंबे समय तक साथ निभाने की खूबसूरती को भी जरूर सोचें।
1: जी

0: गरिमा कहते हैं कि वो रिश्ते ही क्या जिनमें अपनापन ना हो, वो घर ही क्या जिसमें संस्कारों का आंगन ना हो। परंपराएं केवल रस्में नहीं होती, ये तो पीढ़ियों की धड़कनों का संगम होती हैं।
1: बिल्कुल, देखिए बहनों, आज हम जिस विषय पर आपसे चर्चा करने वाले हैं वो हमारे जीवन, हमारे परिवार और समाज से गहराई से जुड़ा है।
0: जी,
1: तो आज हम आपसे बात करेंगे हमारी परंपराओं की, उनकी खुशबू की।
0: जी, यानी कि आज का समय तेज बदलाव का समय है। नई तकनीक, आधुनिक जीवन शैली और तेज रफ्तार जिंदगी ने हमारे जीवन को बहुत बदल दिया है।
1: बिल्कुल, नई पीढ़ी जो है वो आगे बढ़ रही है, नए अवसरों को अपना रही है, और बहुत अच्छी बात है ये। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि वो आगे बढ़ रहे हैं, नए नए अवसरों को अपना रहे हैं, आगे अपने लिए कुछ बढ़िया कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी जो ये तेज़ रफ्तार ज़िंदगी है ना, इसमें ये कहीं ना कहीं हमें अपनी जड़ों से दूर कर देती है।
0: बिल्कुल, यानी कि व्यस्तता इतनी बढ़ गई है ना गरिमा, कि परिवार के साथ बैठने का समय कम होता जा रहा है, और धीरे धीरे वे परंपराएं जो कभी हमारे जीवन का हिस्सा थी वो कहीं जो है ना वो पीछे छूटती जा रही हैं।
1: बिल्कुल, देखिए परंपराएं जो है ना वो सिर्फ त्योहार मनाने या फिर कुछ रीति रिवाज निभाने भर का नाम नहीं है।
0: जी,
1: ये हमारे जीवन

0: के अनुभवों और मूल्यों का संग्रह होती है।
1: जब बच्चे दादी नानी की कहानियां सुनते हैं ना, जब परिवार एक साथ बैठकर त्योहार मनाता है, जब घर में संस्कारों की बात होती है, तभी तो एक मजबूत और संवेदनशील समाज बनता है।
0: बिल्कुल,
1: दरअसल परंपराएं हमें यही तो सिखाती है बहनों कि रिश्तों की अहमियत क्या होती है।
0: बिल्कुल, देखिए आज के समय में जिस चीज की हमें सबसे ज्यादा जरूरत है ना, वो है संतुलन। ना तो हमें आधुनिकता से दूर जाना है, क्योंकि उससे दूर जाके तो काम बनेगा ही नहीं
1: जी,
0: और ना ही अपनी परंपराओं को छोड़ना है।
1: जी दरअसल ये बदलाव का दौर है। एक तरफ नई सोच, एक और एक तरफ जो है नई तकनीक और आधुनिक जीवन शैली है, वहीं दूसरी तरफ हमारी सदियों पुरानी संस्कृति और पारिवारिक मूल्य हैं बहनों।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए जरूरी है कि हम कल और आज के बीच संतुलन जो है वो उसको बनाए रखें।
0: बिल्कुल वही ना, देखिए जो पुरानी पीढ़ी है उनके पास अनुभवों का कितना बड़ा खजाना है,
1: जी
0: और जो नई पीढ़ी है उसके पास ऊर्जा का बहुत बड़ा खजाना है,
1: बिल्कुल,
0: उनके पास नई सोच है और बहुत अलग अलग काम करने का जो जोश होता है ना, वो
1: जी
0: नई पीढ़ी के पास है। तो अगर ये दोनों मिल जाएं तो समाज कितना सुंदर और संतुलित बन सकता है ना।
1: बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि परंपराएं केवल बाहरी रूप नहीं होती हैं बहनों, इनका संबंध दिल से होता है। जब परिवार में प्रेम, सम्मान और संवाद होता है तो बहनों तभी परंपराएं जो हैं वो जीवित रहती हैं।
0: बिल्कुल, देखिए अगर हम बच्चों को अपने त्योहारों के बारे में, अपने संस्कारों और परंपराओं का महत्व समझाएंगे, तभी तो वो उन्हें आगे बढ़ाने में हमारी मदद करेंगे और गर्व भी महसूस करेंगे। जब तक हम उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में बताएंगे ही नहीं, तो उन्हें पता कैसे चलेगा और वो कैसे गर्व महसूस करेंगे।
1: जी हाँ, और वहीं परंपराएं हमें केवल अतीत से नहीं जोड़ती, बल्कि हमें ये भी सिखाती हैं कि जीवन में रिश्तों का महत्व क्या है। जब बच्चे अपने घर की परंपराओं को समझते हैं, उन्हें देखते हैं, तो अपने उनमें अपने परिवार और संस्कृति के प्रति सम्मान भी विकसित होता है। जब ये सही बात है, क्योंकि हम अपने बच्चों को अगर अपने परंपराओं के बीच में, अपने घर वातावरण के बीच में नहीं लेके जाएंगे, जब तक बच्चे उन परंपराओं को नहीं देखेंगे, उन्हें कैसे समझ आएगा अपनी संस्कृति के बारे में, वो कैसे समझेंगे या कैसे वो विकसित हो सकती है हमारी संस्कृति।
0: बिल्कुल तय होती है। देखिए एकदम छोटी छोटी बातें हैं ना, कि देखिए दिवाली का जब त्योहार आता है तो हर घर में उसे मनाने का अपना अपना तरीका होता है।
1: जी,
0: सबका मनाने का मकसद वही होता है कि हम खुशियाँ बांटें और ये दीपों के त्योहार को मनाएं, लेकिन सबके घर में ना कुछ एक रस्म ऐसी होती है जो सिर्फ उन्हीं के घर में मनाई जाती है। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, इस विरासत को आगे बढ़ा सकती है। इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम बच्चों को सिखा दें, उन्हें त्योहारों का महत्व बताएं, परिवार के साथ समय बिताने का और बुजुर्गों के अनुभवों का सम्मान करने का और घर के जो संस्कार हैं उन्हें आगे बढ़ाने का महत्व बताएं, तो ऐसा नहीं है, आज की जो पीढ़ी है वो काफ़ी समझदार है, वो इसे समझने की कोशिश ज़रूर करेंगे और इसे आगे ले जाने की कोशिश भी करेंगे।
1: जी हाँ, पर वो तभी संभव है अगर हम खुद भी उनमें सम्मिलित होंगे और बच्चों को भी परिवार में लेके आएंगे। देखिए बहनों, जब परिवार में बातचीत यानी कि संवाद बना रहता है ना, आपस में बातचीत बनी रहती है, जब पीढ़ियों के बीच प्रेम और समझ होती हैं, तभी तो परंपराएं भी जीवित होती हैं। और सही बात है ये भी, क्योंकि हम लोग आजकल देखा ना, कहा ना, जैसे कि हमने कि आजकल किसी के पास समय ही नहीं है बातचीत करने का भी, तो ये चीज़ यानी कि आपस में बातचीत होती रहनी चाहिए।
0: हमें याद रखना है कि जो ये परंपराओं की हम बात कर रहे हैं, ये कोई बोझ नहीं है, बल्कि ये एक धरोहर है जो हमें हमारी पहचान देती है।
1: जी
0: तो बहनों, हम तो बस यही कहेंगे कि हम आधुनिक भी बनेंगे लेकिन अपनी जड़ों से भी जुड़े रहेंगे।
1: जी,
0: क्योंकि जिस समाज की जड़ें मजबूत होती हैं ना, उसका भविष्य भी उतना ही उज्जवल होता है।
1: जी, इसीलिए कहते हैं कि समय बदले दुनिया बदले, ये प्रकृति का नियम है, पर अपनी पहचान बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। संस्कृति की ये ज्योति यूं ही जलती रहे, हर दिल में परंपराओं की खुशबू बसती रहे।

0: देखिए दयावती, गीत से पहले हम बात कर रहे थे हमारी व्यस्तता भरी जिंदगी की, कि
1: जी
0: हमारे पास इतना भी समय नहीं रह गया कि हम अपने परिवार के पास बैठकर उनसे कुछ बात कर सकें। और इसी जो हमारी भागदौड़ भरी ये जिंदगी है ना, उसमें एक चीज़ है जो लगातार लोगों से दूर होती जा रही है, और वो है सुकून भरी नींद।
1: बिल्कुल गरिमा, क्योंकि देर रात तक मोबाइल चलाना, कभी काम की टेंशन, कभी बिना वजह दिमाग में चलने वाले विचार, इन सब की वजह से करवटों में ही जो है हमारी रात पूरी रात गुजर जाती है।
0: बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि अच्छी नींद सिर्फ आराम ही नहीं देती, बल्कि अगले दिन को बेहतर बनाने की ताकत भी देती है।
1: जी
0: तो बहनों, ये ताकत आप में हमेशा

0: नहीं रहे, इसके लिए हम लाए हैं आपके लिए कुछ आसान घरेलू रोजमर्रा के ऐसे छोटे छोटे तरीके जो आपकी नींद को थोड़ा बेहतर बना सकते
1: जी,
0: हैं।
1: तो बहनों बचपन में हमने अक्सर ये सुना है कि सोने से पहले दूध पी लो तो नींद अच्छी आती है, तो इस बात में शायद कुछ सच्चाई तो ज़रूर है बहनों, क्योंकि रात को सोने से पहले हल्का गुनगुना हल्दी वाला दूध पीने से हमारा शरीर काफ़ी रिलैक्स महसूस करता है।
0: बिल्कुल, हमने भी देखा है कि कभी अगर नींद ना आ रही हो या फिर किसी और वजह से गुनगुना दूध पी लिया जाए तो नींद काफ़ी जल्दी आ जाती है।
1: जी
0: इसके अलावा एक तरीका है आपका मोबाइल स्क्रीन से दूरी बनाना।
1: जी
0: अब देखिए

0: हमारा शरीर काफी रिलैक्स महसूस करता है।
1: बिल्कुल, हमने भी देखा है कि कभी अगर नींद ना आ रही हो या फिर किसी और वजह से गुनगुना दूध पी लिया जाए तो नींद काफ़ी जल्दी आ जाती है।
0: जी
1: इसके अलावा एक तरीका है आपका मोबाइल स्क्रीन से दूरी बनाना।
0: जी
1: अब देखिए, ये बात सुनकर शायद हमारी बहनें भी मुस्कुरा रही होंगी, आप भी मुस्कुरा रही
0: जी
1: हैं,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि आजकल का जो समय है उसमें तो बस 5 मिनट और 5 मिनट और करते करते ना, ये सिर्फ बच्चों का ही हाल नहीं है बल्कि बड़ों का भी हो गया है कि इस 5 मिनट और 5 मिनट और करते करते पूरी रात ही निकल जाती है, और बाद में पता चलता है कि ये लो जी आधी रात हो गई है, 12 बज गए हैं और अभी तक हम 5 मिनट और ही करते जा रहे हैं। तो
0: जी
1: बहनों, कोशिश करें कि सोने से कम आधा घंटा पहले मोबाइल, टीवी, लैपटॉप या किसी भी तरह की जो स्क्रीन है उससे आप दूरी बना लें। आप चाहें तो इसकी जगह कोई अच्छी सी किताब भी पढ़ सकते हैं।
0: बिल्कुल, और ऐसे ही सोने से पहले आप हल्की हर्बल चाय भी आप ले सकती हैं, जैसे जो लेवेंडर या फिर कैमोमाइल जैसी हल्की सुगंध वाली चाय। इसकी खुशबू और गर्माहट कई लोगों को रिलैक्स महसूस कराती हैं।
1: जी
0: बस ध्यान रखिए बहनों कि चाय बहुत ज़्यादा स्ट्रांग या फिर कैफीन वाली ना हो, वरना क्या होगा कि नींद तो दूर ही भाग सकती है।
1: बिल्कुल। और देखिए देवती, कभी आपने ध्यान दिया है कि जब कमरे में बहुत तेज रोशनी हो या फिर बहुत शोर हो रहा हो तो
0: जी
1: नींद आने में थोड़ी सी दिक्कत होती है,
0: जी
1: तो बहनों सोने से पहले कमरे का माहौल शांत करना बहुत ज़रूरी है।
0: जी
1: साथ ही दिन भर की जो चिंता होती है ना, उसे भी बिस्तर तक ना लेकर जाएं।
0: जी हाँ, और ये शायद सबसे मुश्किल लेकिन सबसे ज़रूरी बात है। कई बार शरीर थका होता है मगर क्या है, दिमाग भागता रहता है,
1: बिल्कुल
0: जैसे कि कल क्या होगा, वो काम पूरा हुआ या नहीं, उसने ऐसा क्यों कहा, यानी कि इस तरह की जो बातें हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं, ये हमारे दिमाग में आ जाती हैं और हम इन्हीं बातों के घेराव में आ जाते हैं। फिर क्या हुआ, नींद तो आपकी दूर चलेगी बहनों।
1: बिल्कुल
0: ऐसे में एक छोटा सा तरीका आप जो है अपना सकती हैं कि सोने से पहले अपनी चिंताएं या अगले दिन के काम एक कागज़ पर आप लिखते हैं, इससे जो है दिमाग को थोड़ा आराम मिल सकता है बहनों।
1: बिल्कुल। और इसके अलावा देखिए, कहा जाता है कि अगर आप वॉक या स्ट्रेचिंग या फिर एक अपना शेड्यूल बना लें कि हर रोज़ एक तय समय पर ही सोना है, या इसके अलावा कई लोग रात को सोने से पहले कुछ प्रार्थना करते हैं, उस जो दिन जैसा गुजरा
0: जी
1: है उसके बारे में किसी से बात करना पसंद करते हैं, ये कुछ छोटे छोटे आसान और घरेलू तरीके हैं जो आपकी रातों को थोड़ा और सुकून भरा बना सकते हैं।
0: जी
1: और इसके अलावा देखिए देवती, गीत संगीत भी जो आपकी नींद लाने में ना काफ़ी मदद कर सकता है,
0: बिल्कुल,
1: तो बहनों को भी गीत की दुनिया में ले चलते हैं।
0: और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: बहनों, कभी हम सोचते हैं ना ऐसा कि काश कि वो बचपन कभी जाता ही नहीं। ये अपना है, ये पराया है, ये कभी मन में आता ही नहीं।
1: बिल्कुल दयावती, देखिए बचपन की जो मासूमियत है, बचपन की जो खुशी है, वो हमारे जीवन में हमेशा बनी रहे, यही कामना हम अपने लिए और अपनी बहनों के लिए करते हैं। और
0: जी,
1: इसी के साथ अब आज का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की अनुमति लेते हैं।
0: नमस्कार।

महिला सम्मेलन, ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के शिमला केंद्र से। 1 बजने को है अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार रिले होंगे।

0: के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने चिकित्सकीय शिक्षा में दाखिले के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा है कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली पर टिके विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे तथा पुनः परीक्षा में उपयोग किए जाएंगे। एजेंसी ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और इसके लिए कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉ शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: मैं श्री हिमंत बिस्व शर्मा ईश्वर नाम शपथ लौं जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण करिम।
0: डॉक्टर शर्मा के साथ चार विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो

0: शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी गई है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज सुबह विशेष अदालत में पेश किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइफ, सहायक नर्स मिडवाइफ और महिला स्वास्थ्य आगंतुकों को प्रदान किए गए। प्रत्येक पुरस्कार में एक प्रमाण पत्र, 1,00,000 रूपये नकद और पदक शामिल है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.3% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1041 अंक लुढ़ककर 74,975 पर, जबकि निफ्टी 297 अंक की गिरावट के साथ 23,519 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Valsa Williams. Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma today took oath as the Chief Minister of Assam for a second consecutive term. Governor Lakshman Prasad Acharya administered the oath of office in secrecy to Dr. Sarma at a ceremony held at the Veterinary College ground in Khanapara, Guwahati.
2: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বরৰ নামত শপথ লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম।
1: Along with Dr. Sarma, four MLAs were also sworn in as cabinet ministers. They include Rameshwar Teli and Ajanta Niyog from the BJP, Atul Bora from Ahom Gana Parishad, and Charan Boro from Bodoland People's Front. Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, several union ministers and chief ministers of NDA-ruled states attended the ceremony. With this, Dr. Sarma has become the first non-Congress leader in Assam to serve consecutive terms as Chief Minister. The National Democratic Alliance NDA returned to power for a third consecutive term in the state, securing 102 seats in the 126-member Assam Legislative Assembly. The Bharatiya Janata Party emerged as the dominant force with 82 seats, while its allies, the Ahom Gana Parishad and the Bodoland People's Front, won 10 seats each. The National Testing Agency, NTA, has decided to cancel the NEET UG 2026 examination conducted on the 3rd of this month for admission to undergraduate.

देखिए, अगर आप ज़िंदगी में प्यार चाहते हैं तो किसी की ज़िंदगी में प्यार के रंग भर दीजिए, तो आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद रंगीन हो जाएगी। तो हमेशा दूसरों की ज़िंदगी में खुशियों के रंग भर दीजिए, आपकी ज़िंदगी भी खुशियों से भर जाएगी। क्योंकि नेचर का रूल है कि जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे, इसलिए हमेशा खुशियाँ बोएं, प्यार बोएं और वही आप वापस लें। 103.7 MHz आकाशवाणी FM शिमला ट्यून किया है आपने, और इस वक्त एग्जैक्टली हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:11 समय है फिल्म संगीत का। तो चलिए एक बार फिर ले चलते हैं आपको फिल्म संगीत के सुहाने सफर पर, और ये सफर आप तय कर रहे हैं मेरे साथ। मैं हूँ आपकी रेडियो हम सफर रीटा पामा, बने रहिए हमारे साथ। और अब से लेकर शाम 4:20 तक कार्यक्रम का आगाज इस डांसिंग नंबर के साथ।

0: जाना। नो नो सॉरी जी, नो नो सॉरी जी।
1: आप इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं फिल्म संगीत एफएम शिमला पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में एग्जैक्टली 1:15। तो देखिए जी, अगर आप शिमला में रह रहे हैं तो एक बार फिर कुछ कारणों के कारण आपको ट्रैफिक जैम का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में थोड़ा सा पेशेंस से काम कीजिए, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट बनाइए अपने लाइफ के, ताकि आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकें। अगर आप घर से निकलना चाहते हैं, आप स्कूल जाना चाहते हैं, कॉलेज या फिर आप ऑफिस जा रहे हैं, तो थोड़ा टाइम से पहले मैनेजमेंट कीजिए, टाइम से पहले निकलिए, ताकि आपने जहाँ पर भी जाना है आप टाइम से पहुँच सकें। और देखिए, हमें प्रॉब्लम पर फोकस नहीं करना है, हमें सॉल्यूशन पर फोकस करना है। तो सॉल्यूशन यही है, टाइम से पहले निकलिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कीजिए। अपना व्हीकल अगर ज़रूरत हो तभी बाहर निकालें, अदरवाइज़ क्या है कि आप सभी अपना व्हीकल निकालेंगे तो ट्रैफिक जाम तो लगना लाजमी है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, ताकि हम जो है अपनी जो हमारी प्रदेश की सरकार है उसके लिए भी हम जो है योगदान दे सकें, एक अच्छे नागरिक हम बन सकें। बहरहाल FM शिमला पर फिल्म संगीत एंजॉय कर रहे हैं, तो गाना तो लाजमी है। चलिए कार्यक्रम का अगला गाना एंजॉय करते हैं।

थोड़ा सा बस हौसला चाहिए। अरे बोल भोले बोल।

तो जी इस वक्त हम संगीत का आनंद ले रहे हैं आप एफएम शिमला पर। देखिए ज़िंदगी में समय बहुत कीमती है और समय की बहुत कीमत होती है, इसलिए अगर आप कोई भी अपने ज़िंदगी में डिसीज़न लेते हैं तो सोच समझ कर लीजिए, क्योंकि एक गलत डिसीज़न आपके समय को बहुत पीछे ले जाता है और अगर आपका डिसीज़न सही हो तो वो आपको बहुत आगे तक भी ले जा सकता है। इसलिए ज़िंदगी में कोई भी डिसीज़न ले सोच समझ कर ले, हो सके तो अपने बड़ों से या किसी समझदार व्यक्ति से भी आप अपने ज़िंदगी को डिस्कस कर सकते हैं, उनसे सलाह ले सकते हैं, ताकि जो है आपका जो समय है वो पीछे ना जाए, बल्कि आप अपने सही को सदुपयोग कर आप ज़िंदगी में आगे ही बढ़ते रहें। 103.7 MHz पर फिल्म संगीत का आनंद ले रहे हैं आप।

तो चलिए जी, इसी नगमे के साथ फिल्म संगीत प्रोग्राम को देते हैं यहीं पर विराम। आपने ट्यून किया है और इस वक्त दोपहर के 2 बजने वाले हैं। समय हो चला है सबरंग प्रोग्राम का। जी हाँ, सबरंग कार्यक्रम जिसमें हर तरह के गाने हम सुनवाते हैं आपको। गाने भी सुनवाते हैं, गजल्स भी सुनवाते हैं और रॉक म्यूजिक भी सुनवाते हैं। तो चलिए जी, कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं बहुत ही बेहतरीन गाने के साथ। आवाज़ है दिलेर मेहंदी की।

देखिए, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है जो दुनिया में हर इंसान को सिर्फ और सिर्फ एक ही बार मिलती है। तो ज़िंदगी को खूबसूरती से जिए, ज़िंदगी में हमेशा खुश रहें, हर तरह का संगीत सुनिए, घूमिए फिरिए और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत ही रंगीन है, इसे बेरंग बिल्कुल ना होने दें। बहरहाल, इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं आप सप्रंग प्रोग्राम।

0: तो चलिए जी, इसी ट्रैक के साथ अभी के लिए सबरंग कार्यक्रम को देने वाले हैं यहीं पर विराम। आकाशवाणी एफ एम जुमला ट्यून किया है आपने। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। अब दोपहर हिंदी समाचारों के लिए आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो। कीजिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
2: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉक्टर शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
3: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বরৰ নামত শপথ লওঁ যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম।
1: डॉक्टर शर्मा के साथ 4 विधायकों ने भी मंत्रीपद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री

राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर डॉ हिमंता बिस्व शर्मा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम में नवगठित मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। श्री नवीन ने आशा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा के नेतृत्व में एनडीए सरकार विकसित असम और विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ काम करती रहेगी। असम विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करते हुए 126 सदस्य विधानसभा में 102 सीटें हासिल की हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। इस बीच सीबीआई ने जांच करने के लिए डीआईजी पंकज सिंह के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। तमिलनाडु विधायक जेसीडी प्रभाकर को आज सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। कार्यवाहक अध्यक्ष एमवी करुपैया ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय द्वारा प्रस्तावित प्रभाकर के नाम की घोषणा की, जिसका सदन में पार्टी के नेता के सेंगोतयान ने समर्थन किया। थोरायूर निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु के विधायक रविशंकर को भी सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया। टीवीके सरकार को कल विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस स्टैंड के पास स्थित खुदरा शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि 4,675 खुदरा शराब की दुकानें चल रही हैं। इनमें से स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस टर्मिनलों से 500 मीटर के दायरे में 717 दुकानों को 2 सप्ताह के भीतर बंद करने का आदेश दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइव्स, सहायक नर्स मिडवाइव्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि अवसर उन नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि है, जो करुणा और संपूर्ण निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट

0: के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं तथा वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 36,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया है। श्री पुरी ने नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि जहां कई देशों को पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत घरेलू कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में कामयाब रहा है।
2: किचन में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू एलपीजी उत्पादन क्षमता लगभग 35,000 या 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36,000 से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
0: श्री पुरी ने उद्योग जगत के नेताओं और अपने हितधारकों से एलपीजी से एलएनजी की ओर रुख करने और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान ने हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष के दौरान ईरानी सैन्य विमानों को गुप्त रूप से अपने एयरबेस पर ठहरने की अनुमति दी, जबकि वो ईरान तथा अमेरिका के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के मध्यस्थ की भूमिका निभाने का दावा करता है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ ईरानी विमान रावलपिंडी के निकट नूर खान वायुसेना अड्डे पर खड़े किए गए थे। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका की पूरी तरह से पुनः समीक्षा करने की मांग की है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने कुछ यात्री विमानों को पड़ोसी देश अफगानिस्तान भेज दिया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने 2017 में नीदरलैंड्स की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री रॉब जेटन से भी उनकी बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली नॉर्वे यात्रा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मित्रोला से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी उनकी व्यापक बातचीत होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज चिली गणराज्य के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैकेना और चिली प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की।

0: सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत चिली व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते सीईपीए की वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। चेन्नई से अबुधाबी जाने वाली इत्तेहाद एयरवेज की उड़ान संख्या EY0343 आज सुबह तकनीकी खराबी और बाएं पंख में आग लगने की घटना के बाद रद्द कर दी गई। लगभग 280 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। चेन्नई हवाई अड्डे ने सोशल मीडिया पोस्ट में यात्रियों से आगे की जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क करने का अनुरोध किया है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तेज बारिश हो सकती है। बिहार और उत्तराखंड में भी कल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आंधी आने की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1048 अंक लुढ़क कर 74,967 पर, जबकि निफ्टी 305 अंक की गिरावट के साथ 23,511 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: इस समय आप ट्यून इन है 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला पर।
2: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला।

तो जी इस समय ट्यूनिन है आप 103.7 MHz आकाशवाणी FM शिमला पर। इस वक्त दोपहर के 2:31 हुए हैं। ये समय है प्रोग्राम ज्ञान विज्ञान का, तो आइए सुनते हैं प्रोग्राम ज्ञान विज्ञान।

श्रोताओं नमस्कार, ज्ञान विज्ञान कार्यक्रम के साथ मैं हूं सरोज ठाकुर। और आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा महत्वपूर्ण और रोचक विषय जो हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक संपदा आधारित औद्योगिक समृद्धि के अवसर और संभावनाएं प्रदान करता है। हिमालय की गोद में बसा हिमाचल प्रदेश सिर्फ अपनी सुंदर वादियों, बर्फ से ढके पहाड़ों और शांत वातावरण के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि ये प्राकृतिक संसाधनों से भी अत्यंत समृद्ध राज्य है। यहाँ की उपजाऊ भूमि, बहती नदियाँ, घने जंगल, औषधीय पौधे, फल उत्पादन, जल विद्युत क्षमता और पर्यटन की अपार संभावनाएं राज्य की आर्थिक प्रगति का मजबूत आधार बन सकती हैं। आज जब पूरा देश आत्मनिर्भर भारत और स्थानीय संसाधनों को बेहतर उपयोग की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तब हिमाचल प्रदेश के लिए प्राकृतिक संपदा आधारित उद्योग विकास का एक ऐसा सुनहरा अवसर बनकर सामने आ रहा है। छोटे छोटे और मध्यम उद्योगों के माध्यम से न सिर्फ रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो सकते हैं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास

0: युवाओं का सशक्तिकरण और राज्य की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो सकती है। तो श्रोताओं, आज हम आपको इसी विषय पर सुनवाने जा रहे हैं वार्ता। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक संपदा आधारित औद्योगिक समृद्धि के अवसर और संभावनाएं विषय पर, और वार्ताकार हैं डॉक्टर मुरारी ठाकुर।
1: हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक संपदा के सतत उपयोग से औद्योगिक समृद्धि के बहुत सारे अवसर और संभावनाएं हैं। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक संपदा प्रचुर मात्रा में है। इसका कारण यह है कि हिमाचल का जो एलिवेशन है, ऊंचाई है, वो लगभग 300 मीटर से शुरू होकर 6000 मीटर से भी ऊंचाई तक के क्षेत्र यहाँ हिमाचल में पाए जाते हैं। इस वजह से जो है यहाँ अलग अलग तापमान के क्षेत्र हैं, जिससे क्या है कि अलग अलग टाइप के फॉरेस्ट हैं यहाँ, अलग अलग टाइप के जानवर हैं, अलग अलग टाइप की फसलें जो हैं अलग अलग एरियाज में उगाई जाती हैं। इसी वजह से जो है हमारे यहाँ जो जंगल है हमारे यहाँ, या जड़ी बूटियाँ हैं, वो अलग अलग इलाकों में अलग अलग टाइप की जड़ी बूटियाँ और जंगल होते हैं, और जिनका की उपयोग अलग अलग है। और जो लोअर एरियाज में जो जड़ी बूटियाँ मिलती हैं वो मिडल वाले एरियाज में नहीं मिलती हैं, और जो मिडल वाले एरियाज में मिलती हैं वो हाई एल्टीट्यूड में नहीं मिलती हैं। और जो हाई एल्टीट्यूड में जो जड़ी बूटियाँ हैं या जो जैविक संसाधन है वो देश के अन्य हिस्सों में नहीं मिलते हैं। इसलिए जो है हिमाचल के जैव संसाधन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसीलिए जो है ये जो हम जिन चार क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं, जिसमें कृषि और बागवानी है, औषधीय पौधे और वन है, जिसमें कि जल है, जिसमें कि पर्यटन है, ये जो चार सेक्टर्स हैं हिमाचल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जिसमें कि औद्योगिक समृद्धि के बहुत सारे अवसर और संभावनाएं दिखती हैं। ये प्राकृतिक संपदा जिसमें कि हमारे जंगल, हमारे जल, भूमि, पर्वत, जैव विविधता और खनिज इत्यादि आते हैं। हिमाचल प्रदेश की विशेषता यह है कि यहाँ प्राकृतिक संसाधनों की विविधता बहुत अधिक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राज्य का लगभग 27 से 28% भाग घने वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और इसके अलावा लगभग 66% जो क्षेत्र है वो हरित आवरण में आता है। साथ ही यहाँ 3000 से अधिक पौधों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से कई औषधीय महत्व की हैं। यही संसाधन आगे चलकर पर्यटन, उद्योग और आजीविका का आधार बनते हैं। हमारे प्रदेश में चार बड़े सेक्टर्स हैं जो कि प्राकृतिक संपदा का आधार हैं बेसिकली, जिनमें से कि कृषि और बागवानी एक है, औषधीय पौधे और वन एक है, जल तीसरा है, और पर्यटन जो है एक बड़ा महत्वपूर्ण प्राकृतिक संपदा आधारित सेक्टर है। ये जो प्राकृतिक संसाधन है ये उद्योगों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं। जैसे कि हम जानते हैं हिमाचल में लगभग 50 से 60% की आबादी कृषि और बागवानी से जुड़ी है, इसलिए कृषि और बागवानी जो सेक्टर है ये हिमाचल में बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर है। अगर इस क्षेत्र को अगर आगे बढ़ाना है, इस सेक्टर को अगर आगे बढ़ाना है, तो हमें कच्चे उत्पाद जैसे कि फल, जड़ी बूटियाँ वगैरह हैं, उनकी प्रोसेसिंग को अगर बढ़ावा दें तो इसमें जो है एक आर्थिक समृद्धि की तरफ हम जा सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ कृषि और बागवानी में पैदा हो रही है अगर उसकी प्रोसेसिंग यहाँ की जाए तो उससे क्या होगा कि परिवहन की लागत कम होगी, उत्पादन का मूल्य भी बढ़ेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजित होगा। अगर कृषि और बागवानी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ बहुत सारे अवसर उपलब्ध हैं। हिमाचल प्रदेश को फल उत्पादन के लिए जाना जाता है। राज्य में प्रतिवर्ष लगभग 10 से 12 लाख टन फल उत्पादन होता है, जिसमें से सेब का उत्पादन लगभग 6 से 8 लाख टन के करीब है। इसके अतिरिक्त यहाँ नाशपाती, आड़ू, प्लम, खुरमानी जैसी फसलें भी महत्वपूर्ण हैं। इन फसलों में मूल्यवर्धन की अत्यधिक संभावना है। मूल्यवर्धन जैसे कि यदि जूस, जैम, पल्प, वाइन और सूखे उत्पादों का निर्माण किया जाए तो इनकी बाजार कीमत कच्चे उत्पादों की तुलना में कई गुना बढ़ जाती है। साथ ही अगर हम इस क्षेत्र में, इस सेक्टर में प्रमुख चुनौतियों की बात करें तो एक पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो है एक बहुत बड़ा चुनौती है प्रदेश में। हम जानते हैं कि लगभग 20 से 30% जो है पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो है बागवानी और कृषि क्षेत्र में होता है हिमाचल में, और इसका मुख्य कारण जो है कोल्ड स्टोरेज की सुविधाओं की थोड़ी कमी होना, आधुनिक पैकेजिंग का अभाव भी है, तथा थोड़ा परिवहन तंत्र की सीमाएँ भी हैं। इसके अतिरिक्त छोटे और बिखरे हुए लैंड होल्डिंग्स वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण है। आधुनिक तकनीकी

कमी और बाजार तक सीधी पहुंच का अभाव भी विकास में बाधा उत्पन्न करता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण सेक्टर है वो है औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों वाला क्षेत्र या सेक्टर। हम जानते हैं कि हिमाचल में 300 से अधिक औषधीय पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं और इनका उपयोग आयुर्वेदिक और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में लंबे समय से किया जा रहा है। और आज के दौर में जो प्लांट बेस्ड जो दवाइयां हैं उनकी बड़ी बड़ी विश्व स्तर पर डिमांड है और देश का जो हर्बल सेक्टर है 1.5 से 2 लाख करोड़ से अधिक का टर्नओवर वाला सेक्टर हो चुका है। और यदि औषधीय पौधों की वैज्ञानिक खेती, नियंत्रित संग्रह और प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जाए तो यह क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक मजबूती प्रदान कर सकता है। औषधीय पौधों से आधुनिक दवा निर्माण और उद्योग विकास की बहुत सारी संभावनाएं हैं। आज के समय में औषधीय पौधों का उपयोग केवल पारंपरिक चिकित्सा तक सीमित नहीं है बल्कि आधुनिक फार्मास्यूटिकल उद्योग भी इनका उपयोग करता है। यदि हिमाचल में अनुसंधान, गुणवत्ता नियंत्रण और औद्योगिक स्तर पर प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जाए तो यहाँ से उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयाँ, हर्बल उत्पाद और न्यूट्रास्यूटिकल तैयार किए जा सकते हैं। इससे कच्ची जड़ी बूटियों के निर्यात के बजाय तैयार उत्पादों का उत्पादन होगा जिससे मूल्यवर्धन और आय में वृद्धि होगी। औषधीय और जो सुगंधित पौधों में एक्सट्रैक्ट और वैल्यू एडिशन भी आजकल किया जाता है। इसमें पौधों के सक्रिय तत्व को निकालकर इसेंशियल ऑयल्स, ओलियोरिजिन्स और अन्य उत्पाद बनाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिनके ये एक्सट्रैक्ट बनाए जा सकते हैं या बनाए जा रहे हैं और इन एक्सट्रैक्ट्स की बाजार में मांग अधिक होती है। इसका मूल्य जो है इससे जो है मूल्य कच्चे उत्पादों की तुलना में कई गुना ज़्यादा होता है। अगला जो सेक्टर है वो है जल और वन संसाधनों पर आधारित उद्योगों की संभावनाएं। हिमाचल में लगभग 23,000 मेगावाट विद्युत जल विद्युत उत्पादन की क्षमता है और ये क्षेत्र जो है हिमाचल में बड़े निवेश के अवसर प्रदान करता है। इसके अलावा ट्राउट मछली उत्पादन एक उभरता हुआ क्षेत्र है जिसका उत्पादन 1500 से 2000 टन प्रति वर्ष तक पहुंच चुका है। हिमाचल में वन संसाधनों से हमें शहद, बांस, रेजिन और अन्य लघु उपज प्राप्त होती है जिनसे छोटे और मध्यम उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। साथ ही पर्यटन एक बहुत बड़ा सेक्टर है हिमाचल में। हम जानते हैं कि हिमाचल में 1.5 से 2 करोड़ पर्यटक हर साल आते हैं और पर्यटन जो है राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यदि ग्रामीण पर्यटन जिसमें कि इको टूरिज्म और होम स्टे इत्यादि शामिल है अगर इसको बढ़ावा दिया जाए तो स्थानीय समुदायों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। इससे न केवल आर्थिक विकास होगा बल्कि सांस्कृतिक संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। इन सेक्टर्स में हिमाचल में युवाओं के लिए बहुत सारे अवसर हैं। देश में एग्री स्टार्टअप पे बहुत काम हो रहा है और हिमाचल में भी ऑर्गेनिक खेती, ई कॉमर्स जिसमें कि ऑनलाइन बिक्री शामिल है, फूड प्रोसेसिंग, एग्रीटेक, ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें कि कम पूंजी में भी शुरुआत कर सकते हैं युवा। जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसका असर इन सेक्टर्स पे हिमाचल में भी हो रहा है। हमें दिख रहा है कि सेब की खेती जो है ऊंचाई की ओर शिफ्ट हो रही है, तापमान में वृद्धि हो रही है, पर इससे क्या हो रहा है कि प्रदेश में नए अवसर भी मिल रहे हैं जैसे कि कीवी, अनार, चेरी जैसी नई फसलें आ रही हैं और इसका मतलब है कि चुनौती के साथ साथ जो है क्लाइमेट चेंज हमारे लिए अवसर लेके भी आ रहा है। अगर हम सफल उदाहरणों की बात करें तो हिमाचल में ट्राउट मछली के पालन से लोग 3 से 5 लाख प्रतिवर्ष कमा रहे हैं, होम स्टे से लगभग 3 लाख रुपए के आसपास अतिरिक्त आय कमा रहे हैं लोग, कुछ किसानों ने प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाकर अपनी आय को बढ़ाया है। ये उदाहरण बताते हैं कि सही दिशा में अगर काम किया जाए तो हिमाचल में स्कोप्स बहुत ज़्यादा हैं। हिमाचल में प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित ग्रीन इंडस्ट्री का जो है एक मॉडल बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। ये जो ग्रीन इंडस्ट्री है, ये सस्टेनेबल इंडस्ट्रीज को हम कहेंगे क्योंकि ये हमारे जो हमारे संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका सस्टेनेबल यूज़ करती है और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती है। जो स्थानीय संसाधन है उनका संतुलित उपयोग करती है और स्थानीय स्तर पर रोजगार के साधन भी मुहैया करती है। इसलिए जो है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ चलने का एक बहुत बड़ा आधार बन सकती है। अगर इन सेक्टर्स को

0: कि अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करनी है तो भविष्य में रणनीति होनी चाहिए कि हम प्राकृतिक संपदा आधारित औद्योगिक विकास के लिए एक संतुलित और दीर्घकालिक रणनीति बनाएं। सबसे पहले कृषि और बागवानी उत्पादों के प्रसंस्करण स्तर को 10% से बढ़ाकर 25 से 30% तक ले जाएं। इसके साथ ही औषधीय तथा सुगंधित पौधों की खेती को प्रोत्साहित करें, कोल्ड स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को मजबूत करें तथा ग्रामीण पर्यटन को भी बढ़ावा दें। साथ ही अनुसंधान, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता के माध्यम से युवाओं और किसानों को सशक्त बनाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विकास के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी जाए। प्राकृतिक संसाधनों का सतत और संतुलित उपयोग ही दीर्घकालिक समृद्धि का आधार बन सकता है। हिमाचल प्रदेश के लिए यही मॉडल सबसे बेस्ट दिखता है, जिसमें कि प्रकृति का संरक्षण और आर्थिक विकास दोनों साथ साथ आगे चल सकते हैं। इन सेक्टर्स में हिमाचल सरकार की तरफ से तथा केंद्र सरकार की तरफ से इन सेक्टर्स को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी स्कीमें चल रही हैं, जिनमें कि सब्सिडी और वित्तीय सहायता जो है भी मिलती है, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग भी दी जाती है, कोल्ड स्टोरेज और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी सरकार सहयोग करती है, और मार्केट लिंकिंग जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं अगर कोई लोग, तो उसके लिए मार्केट लिंकिंग के लिए भी सरकार जो है सहायता करती है, और एक पूरा इकोसिस्टम पे सरकारें कार्य कर रही हैं कि लोग जो है अपने लोकल रिसोर्सेज को यूज़ करके अपनी आजीविका को कमाएं, और जो आजीविका कमा रहे हैं उस उनका जो है रिटर्न्स बढ़े। इन स्कीमों के बारे में संबंधित विभागों के पास या संबंधित विभागों के जो वेबसाइट्स हैं उनके थ्रू जो है लोग फायदा उठा सकते हैं। तो इसलिए सरल शब्दों में अगर हम कहें तो प्रकृति को बचाते हुए हमें उसी से कमाई करनी पड़ेगी, और यदि हिमाचल अपने प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित और वैज्ञानिक उपयोग करे तो यह राज्य न केवल आत्मनिर्भर बन सकता है बल्कि पूरे देश के लिए एक आदर्श मॉडल भी बन सकता है। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, ये तो सुनी आपने वार्ता और जाना कि हिमाचल प्रदेश की प्राकृतिक संपदा सिर्फ प्रकृति की सुंदरता की देन नहीं है, बल्कि आर्थिक प्रगति और औद्योगिक विकास का मजबूत आधार भी है। फल उत्पादन, औषधीय पौधे, वन संपदा, जल विद्युत और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में अपार संभावनाएं मौजूद हैं। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग संतुलित, वैज्ञानिक और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से किया जाए, ताकि विकास के साथ साथ प्रकृति का संरक्षण भी बना रहे। जब स्थानीय संसाधनों का सही दिशा में उपयोग होगा, तभी हिमाचल प्रदेश सतत विकास और समृद्धि की ओर तेजी से बढ़ेगा। तो श्रोताओं, अब हम भी बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं विज्ञान से जुड़ी कुछ रोचक बातों के बारे में, और अब बात करते हैं नैनो रसायन क्या है। नैनो केमिस्ट्री रसायन विज्ञान और नैनो साइंस का संयोजन है। नैनो केमिस्ट्री बिल्डिंग ब्लॉक्स के संश्लेषण से जुड़ी है, जो आकार, सतह, आकार और दोष गुणों पर निर्भर है। इस तकनीक का उपयोग रासायनिक सामग्री और भौतिक विज्ञान के साथ साथ इंजीनियरिंग और जैविक चिकित्सा अनुप्रयोगों में किया जा रहा है। नैनो केमिस्ट्री और अन्य नैनो साइंस क्षेत्रों में समान मूल अवधारणाएं हैं, लेकिन उन अवधारणाओं का उपयोग अलग अलग है। नैनो केमिस्ट्री को पहली बार 1992 में ओजेन द्वारा संक्षेपित किया गया था, क्योंकि परमाणु अप से नैनो मटेरियल को पुनः उत्पन्न करने के लिए रसायन विज्ञान संश्लेषण के उपयोग के रूप में नैनो इंजीनियरिंग और नैनो फिजिक्स दृष्टिकोण के विपरीत, जो थोक डाउन से संचालित होता है, नैनो उपसर्ग नैनो केमिस्ट्री को दिया गया था। जब वैज्ञानिकों ने नैनोमीटर स्केल आकार में सामग्री के अजीब परिवर्तन देखे थे, तो नैनोमीटर स्केल्ड संरचनाओं पर कई रासायनिक संशोधन आकार पर निर्भर होने के प्रभावों को मंजूरी देते हैं। नैनो केमिस्ट्री के आकार और जैव नैनो की अवधारणाओं द्वारा चित्रित किया जा सकता है, जो किसी भी नए नैनो निर्माण का संश्लेषण इन सभी अवधारणाओं से जुड़ा हुआ है। नैनो निर्माण संश्लेषण इस बात पर निर्भर करता है कि कैसे सतह, आकार और आकार बिल्डिंग ब्लॉक्स के कार्यात्मक संरचनाओं में स्वसंयोजन की ओर ले जाएगा। उनमें शायद कार्यात्मक दोष है और इलेक्ट्रॉनिक, फोटोनिक चिकित्सा या बायो एनालिटिकल

समस्याओं के लिए उपयोगी हो सकते हैं। सिलिका, सोना, पॉलीडी मिथाइल, सिलोक्सेन, कैडमियम, सेलेनाइट, आयरन ऑक्साइड और कार्बन ऐसे पदार्थ हैं जो नैनो केमिस्ट्री की परिवर्तनकारी शक्ति दिखाते हैं। आयरन ऑक्साइड MRI का सबसे प्रभावी कंट्रास्ट एजेंट बना सकती है, जो कैंसर का पता लगा सकता है और उन्हें उनके शुरुआती चरणों में मार सकते हैं। उनके ट्रैक में रोशनी को मोड़ने या रोकने के लिए सिलिका का उपयोग किया जा सकता है। विकासशील देश भी विकसित दुनिया की रोगजनक पहचान क्षमताओं को प्राप्त करने के लिए तरल पदार्थ के लिए सर्किट बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। कार्बन का उपयोग कई आकृतियों और रूपों में किया जा सकता है। ये इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के लिए एक बेहतर विकल्प बन सकता है। कुल मिलाकर नैनो केमिस्ट्री यौगिकों की परमाणु संरचना से संबंधित नहीं है, बल्कि ये समस्याओं को हल करने के लिए सामग्री को समाधान में बदलने के विभिन्न तरीकों के बारे में है। रसायन विज्ञान मुख्य रूप से आवर्त सारणी में परमाणुओं की स्वतंत्रता की डिग्री से संबंधित है, हालांकि नैनो केमिस्ट्री स्वतंत्रता की अन्य डिग्री लेकर आई है जो सामग्री के व्यवहार को नियंत्रित करती है। कार्बन नैनो ट्यूब, ग्रेफेन और फुलरीन जैसे कार्बन नैनो मटेरियल्स बनाने के लिए भी नैनो रासायनिक विधियों का उपयोग किया जाता है, जिन्होंने हाल के वर्षों में उनके उल्लेखनीय यांत्रिक और विद्युत गुणों के कारण ध्यान आकर्षित किया है। नैनो टोपोग्राफी विशिष्ट सतह सुविधाओं को संदर्भित करती है जो नैनो स्केल पर दिखाई देती है, और उद्योगों में नैनो टोपोग्राफी के अनुप्रयोगों में आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और कृत्रिम रूप से उत्पादित सतह की विशेषताएं शामिल होती हैं। हालांकि इस परिभाषा में प्राकृतिक सतह की विशेषताओं को भी शामिल किया गया है, जैसे कि आणविक स्तरीय सेल इंट्रैक्शन और जानवरों और पौधों के बनावट वाले अंग। प्रकृति में नैनो टोपोग्राफिक विशेषताएं विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं जो जैविक जीवों के नियमन और कार्य में सहायक होती हैं, क्योंकि नैनो टोपोग्राफिक विशेषताएं कोशिकाओं में अत्यंत संवेदनशील होती हैं। नैनो लिथियोग्राफी वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा सतह पर कृत्रिम रूप से नैनो टोपोग्राफिक नक्काशी का उत्पादन किया जाता है। कई व्यावहारिक अनुप्रयोगों, कंप्यूटर में सेमीकंडक्टर चिप्स सहित नैनो लिथोग्राफी का उपयोग करते हैं, और नैनो लिथोग्राफी के कई प्रकार हैं जिनमें फोटोलिथोग्राफी, इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी और एक्सरे लिथोग्राफी, अत्यधिक पराबैंगनी लिथोग्राफी, प्रकाश युग्मक नैनो लिथोग्राफी, स्कैनिंग जांच माइक्रोस्कोप, नैनो इम्प्रिंट लिथोग्राफी। नैनो लिथोग्राफी तकनीक में संकल्प, समय की खपत और लागत के अलग अलग कारक होते हैं। नैनो लिथोग्राफी द्वारा उपयोग की जाने वाली तीन बुनियादी विधियां हैं। एक में एक प्रतिरोधी सामग्री का उपयोग करना शामिल है जो सतह के उन क्षेत्रों को कवर करने और उनकी रक्षा करने के लिए मास्क के रूप में कार्य करता है, जो चिकनी होने का इरादा रखते हैं। एक स्टेंसिल के रूप में कार्य करने वाली सुरक्षात्मक सामग्री के साथ अब खुला भागों को दूर किया जा सकता है। दूसरी विधि में वांछित पर्यटन को सीधे तराशना शामिल है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन या प्रकाश का रासायनिक तरीके जैसे ऑक्सीकरण या स्व इकट्ठे मैनोलेयर। तीसरी विधि वांछित पैटर्न को सीधी सतह पर रखती है, एक अंतिम उत्पाद का निर्माण करती है जो अंततः मूल सतह से कुछ नैनोमीटर मोटा होता है। गढ़ी जाने वाली सतह की कल्पना करने के लिए सतह को एक नैनो रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जाना चाहिए, जिसमें स्कैनिंग जांच माइक्रोस्कोपी और परमाणु बल माइक्रोस्कोप शामिल होते हैं। नैनो लिथियोग्राफी के तरीके में से एक स्व इकट्ठे मैनोलेयर्स का उपयोग है जो नरम कार्यकारिणी विकसित करता है। स्व इकट्ठे मैनोलेयर्स लंबी श्रृंखला वाले अल्केन थियोलेट्स होते हैं जो सोने की सतहों पर स्व इकट्ठे होते हैं, जो अच्छी तरह से ऑर्डर की गई मैनोलेयर फिल्में बनाते हैं, और इस पद्धति का लाभ 5 nm से 500 nm के पार्श्व आयनों के साथ उच्च गुणवत्ता वाली संरचना बनाता है। इस पद्धति में आमतौर पर मास्क के रूप में पॉलीडी मिथाइल सिलोक्सेन से बने एक पैटर्न वाले इलास्टोमेर का उपयोग किया जाता है,

नैनो केमिस्ट्री का एक अत्यधिक शोधित अनुप्रयोग दवा है। नैनो केमिस्ट्री की तकनीक का उपयोग करने वाला एक साधारण त्वचा देखभाल उत्पाद सनस्क्रीन है। सनस्क्रीन में जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम डाइऑक्साइड के नैनोकण होते हैं। ये रसायन प्रकाश को अवशोषित या परावर्तित करके हानिकारक यूवी प्रकाश से त्वचा की रक्षा करते हैं। नैनो पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉनों के प्रकाश उत्तेजना द्वारा त्वचा को पूर्ण क्षति को बनाए रखने से रोकते हैं। प्रभावी रूप से कण की उत्तेजना त्वचा की कोशिकाओं को डीएनए क्षति से रोकती है।

त्वचा की रक्षा करते हैं। नैनो पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉनों के प्रकाश उत्तेजना द्वारा त्वचा को पूर्ण क्षति को बनाए रखने से रोकते हैं। प्रभावी रूप से कण की उत्तेजना त्वचा की कोशिकाओं को डीएनए क्षति से रोकती है। आदर्श सामग्री शरीर में ड्रग कार्गो ले जाने के लिए एक नियंत्रित संक्रियण नैनो मटेरियल का उपयोग करती है। मेसोपोरस सिलिका नैनो पार्टिकल्स अपने बड़े सतह क्षेत्र और इमेजिंग तकनीकों के तहत उच्च रेजोल्यूशन प्रदर्शन या प्रदर्शन करते हुए विभिन्न व्यक्तिगत संशोधनों के लिए लचीलेपन के कारण अनुसंधान लोकप्रियता में बढ़ रहे हैं। सक्रियण विधियां नैनो स्केल दवा वितरण अणुओं में बहुत भिन्न होती हैं, लेकिन सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली सक्रियण विधियां कार्गो को मुक्त करने के लिए प्रकाश की विशिष्ट तरंगदैर्ध्य का उपयोग करती हैं। नैनो बल्ब नियंत्रित कार्गो रिलीज कम तीव्रता वाले प्रकाश और प्लास्मोनिक हीटिंग का उपयोग करते हैं ताकि कार्गो को सोने के अणुओं वाले MSN की विविधता में जोड़ा जा सके। दो फोटोन सक्रिय फोटो ट्रांस्ट यूजर कार्गो को छोड़ने के लिए एक डाई सल्फाइड बंधन को तोड़ने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के पास का उपयोग करता है। हाल ही में नैनो डायमंड्स में गैर विषाक्तता त्वचा के माध्यम से सहज अवशोषण और रक्त मस्तिष्क बाधा में प्रवेश करने की क्षमता के कारण दवा वितरण में दक्षता का प्रदर्शन किया गया है। क्योंकि कोशिकाएं नैनो टोपोग्राफिकल विशेषताओं के प्रति बहुत संवेदनशील होती हैं, उतक इंजीनियरिंग के सतहों के अनुकूलन ने सीमाओं को आरोपण की ओर धकेल दिया है। उपयुक्त परिस्थितियों में कृत्रिम अंग विकास की ओर कोशिकाएं बीजों को निर्देशित करने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किए गए 3 आयामी मचान का उपयोग किया जाता है। 3D मचान में विभिन्न नैनोस्केल कारक शामिल हैं जो इष्टतम और उपयुक्त कार्यक्षमता के लिए पर्यावरण को नियंत्रित करते हैं। मचान इन विट्रो में विवो वाया मैट्रिक्स का एक एनालॉग है जो इन विट्रो में आवश्यक जटिल जैविक कारक प्रदान करके सफल कृत्रिम अंग विकास की अनुमति देता है। अतिरिक्त लाभों में सेल अभिव्यक्ति हेर फेर असंजन और दवा वितरण की संभावनाएं शामिल होती हैं। अगर घाव की बात की जाए तो घर्षण और घावों के लिए नैनो केमिस्ट्री ने उपचार प्रक्रिया में सुधार के लिए अनुप्रयोगों का प्रदर्शन किया है। इलेक्ट्रो स्पिनिंग उतक इंजीनियरिंग में जैविक रूप से उपयोग की जाने वाली एक पॉली मराल इंजेक्शन विधि है, लेकिन इसे घाव भरने के साथ साथ दवा वितरण के लिए भी क्रियाशील किया जा सकता है। ये नैनो फाइबर पैदा करता है जो सेल प्रसार जीवाणुरोधी गुणों और नियंत्रित वातावरण को प्रोत्साहित करता है। ये गुण मैक्रो स्केल पर बनाए गए हैं, हालांकि नैनो स्केल संस्करण नैनो टोपोग्राफिकल विशेषताओं के कारण बेहतर दक्षता दिखा सकते हैं। नैनो फाइबर और घावों के बीच लक्षित इंटरफेस में सतह क्षेत्र की बातचीत अधिक होती है और विवो में फायदेमंद होती है। शोध बताते हैं कि चांदी के कुछ नैनोकण कुछ विषाणुओं और जीवाणुओं को रोकने के लिए उपयोगी होते हैं। नैनो केमिस्ट्री में नए विकास महत्वपूर्ण गुणों के साथ विभिन्न प्रकार के नैनो स्ट्रक्चर सामग्री प्रदान करते हैं जो अत्यधिक नियंत्रित होते हैं। इन नैनो स्ट्रक्चर सामग्रियों के कुछ अनुप्रयोगों में स्व इकट्ठे नैनो लेयर्स और लिथोग्राफी सेंसर में नैनो वायर का उपयोग और नैनो एंजाइम्स शामिल होते हैं। वैज्ञानिकों ने वाष्प और समाधान चरण रणनीतियों का उपयोग करके नियंत्रित लंबाई व्यास डोम्पिंग और सतह संरचना के साथ बड़ी संख्या में नैनो वायर रचनाएं भी तैयार की हैं। इन उन्मुख एकल क्रिस्टल का उपयोग करके अर्थचालक नैनो वायर उपकरणों जैसे डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक सर्किट लेजर और सेंसर में किया जा सकता है। क्योंकि नैनो वायरों में एक आयामी संरचना होती है जिसका अर्थ है कि सतह में आयतन का बड़ा अनुपात प्रसार प्रतिरोध कम हो जाता है। इसके अलावा क्वांटम कारावास प्रभाव के कारण
इलेक्ट्रॉन

0: ट्रॉन परिवहन में उनकी दक्षता उनके विद्युत गुणों की मामूली गड़बड़ी से प्रभावित होती है। इसलिए नैनो सेंसर तत्वों में इन नैनो वायरों के उपयोग से इलेक्ट्रोड प्रतिक्रिया में संवेदनशीलता बढ़ जाती है। अर्धचालक नैनो वायरों की एक आयामिता और रासायनिक लचीलापन उन्हें नैनो लाइजर में लागू करते हैं। नैनो पार्टिकल आधारित एंजाइमों में मुख्य रूप से उपयोग की जाने वाली नैनो स्ट्रक्चर सामग्री ने उनके द्वारा दिखाए गए विशिष्ट गुणों के कारण आकर्षण खींच लिया है। नैनो एंजाइमों के बहुत बड़े आकार ने उन्हें अद्वितीय ऑप्टिकल चुंबकीय इलेक्ट्रॉनिक और उत्प्रेरक गुण प्रदान किए हैं। इसके अलावा नैनो कणों की सतह की कार्यक्षमता के नियंत्रण और इन छोटे आकार के एंजाइमों की अनुमानित नैनो स्ट्रक्चर ने उन्हें अपनी सतह पर एक जटिल संरचना बना दी है, जो बदले में विशिष्ट अनुप्रयोगों की जरूरतों को पूरा करती है। तो श्रोताओं, ये तो हमने जाना नैनो रसायन क्या है, और इसी के साथ घड़ी की सुइयां भी इशारा कर रही हैं कि कार्यक्रम का समय हो चला है। तो कार्यक्रम के अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।
1: ज्ञान जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी रिले करेंगे, ये समाचार आकाशवाणी की डीटीएच सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर भी सुने जा सकते हैं।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ने पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करने और घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं व वर्चुअल बैठक जैसे उपाय अपनाने की अपील भी दोहराई। आयात कम करने और इस संकट से उबरने में देश की मदद के सामूहिक प्रयास पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समय लोगों को एकजुट होने और देश के संसाधनों पर बोझ कम करने का दायित्व निभाने की जरूरत है।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सेब उत्पादकों के लंबित बिलों के भुगतान के लिए मंडी मध्यस्थता योजना के तहत 20 करोड़ रुपए जारी करने के निर्देश दिए हैं। वे आज शिमला में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस वर्ष 15 अप्रैल को की गई घोषणा के अनुसार सभी विभागों के चतुर्थ श्रेणी पेंशनरों के बकाया एरियर का भुगतान करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त और सेवा में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के चिकित्सा पूर्ति दावों का भी शीघ्र निपटान किया जाए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार पर मंडी की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। नगर निगम चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के लिए प्रचार के दौरान जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि मंडी में विकास कार्यों को गति देने के बजाय पूर्व भाजपा सरकार द्वारा आवंटित 15 करोड़ रुपए को सरकार ने वापिस लेकर दूसरी जगहों पर खर्च किया है, जिससे स्पष्ट है कि सरकार की प्राथमिकता में विकास नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिशोध है।
2: मंडी में भारतीय जनता पार्टी पिछली बार भी नगर निगम बनाने में सफल हुई है और अब की बार भी सफल होगी बहुत बड़े बहुमत के साथ। कांग्रेस की सरकार ने जिस प्रकार से मंडी को, पूरे हिमाचल प्रदेश को नज़रअंदाज किया, विकास कार्य के दृष्टि से मंडी को एक बार नहीं अनेकों बार जलालत की है, तो लोग जो है बहुत गुस्से में है वर्तमान कांग्रेस सरकार के, और निश्चित रूप से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत के साथ जीती।
0: चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधु ने आज शिमला के समीप राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शोघी में मतदान केंद्र का निरीक्षण किया।

0: किया। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। सुखवीर सिंह संधू ने अधिकारियों को मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए सभी तैयारियां समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने चिकित्सकीय शिक्षा में दाखिले के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा है कि ये फैसला विद्यार्थियों के हित व राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली पर टिके विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि वो सीबीआई के साथ पूरा सहयोग करेगी और जांच के लिए जरूरी सभी सामग्री, रिकॉर्ड और सहायता उपलब्ध कराएगी। एनटीए ने कहा कि परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। प्रदेश के अधिकांश भागों में आज हल्के बादल छाए हुए हैं, जबकि जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों पर आज सुबह हल्की बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के कारण क्षेत्र में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश और ओलावृष्टि के कारण राज्य में अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया जा रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश, ओलावृष्टि और अंधड़ चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा और ऊना जिले में कहीं कहीं 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचारों के बाद आइए अब सुनते हैं चंबा जिला की चिट्ठी। लेखक हैं विकास ठाकुर और वाचिका हैं प्रभा शर्मा।
2: प्रदेश में पंचायती राज चुनावों की घोषणा के बाद जिला चंबा में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वहीं पंचायत चुनावों को शांतिपूर्ण संपन्न करवाने के लिए जिला प्रशासन की तैयारियां भी जोरों पर हैं। नामांकन प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है और प्रत्याशियों ने फील्ड में जाकर अपना चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। जिला चंबा में नगर निकाय चुनाव के लिए प्रचार अभियान चरम पर पहुंचने लगा है। 17 मई को मतदान होगा। जिला में 3 नगर निकाय हैं, जिसमें चंबा नगर परिषद, डलहौजी और नगर पंचायत चुवाड़ी शामिल हैं। इस बार महिलाएं काफी संख्या में चुनाव मैदान में हैं, वहीं युवा उम्मीदवार भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। 15 मई को उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह दिए जाएंगे। मतदान 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को संपन्न होगा। उपायुक्त मुकेश रेपसवाल के अनुसार जिला चंबा में कुल 319 ग्राम पंचायतें हैं। पहले चरण में 118 पंचायतों में चुनाव होगा और 676 वार्डों के लिए मतदान होगा। चरण 2 में 115 पंचायतें कवर होंगी और 650 वार्ड में मतदान होगा। तीसरे चरण में 86 पंचायतों के 467 वार्डों में चुनाव संपन्न होगा। भरमौर और पांगी में 2 चरणों में मतदान होगा। उन्होंने कहा कि कुल 1019 पोलिंग स्टेशन इसके लिए स्थापित किए गए हैं, जिसमें 3,99,358 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। क्रिकेट प्रेमियों को स्टेडियम जैसा अनुभव देने के लिए गत दिनों जिला चंबा के ऐतिहासिक चौगान में आईपीएल फैन पार्क का आयोजन किया गया। चंबा वासियों ने 3 मैचों का सीधा रोमांच चंबा की वादियों में बड़ी एलईडी स्क्रीन पर लाइव देखा और फैन पार्क में पहुंचकर विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया। मैच के प्रसारण के साथ साथ यहां आने वाले दर्शकों के लिए स्वयं सहायता समूहों की ओर से विभिन्न प्रकार के फूड स्टॉल भी लगाए गए थे, जहां लोगों ने स्थानीय व्यंजनों का आनंद भी लिया। इसके अलावा युवाओं और बच्चों के लिए कई तरह की मज़ेदार गेम्स और म्यूजिक का भी प्रबंध किया गया था। इस 2 दिवसीय क्रिकेट महाकुंभ को लेकर चंबा के लोगों में खासा उत्साह देखा गया। जिला चंबा के भटियात उपमंडल के ककीरा लाहड़ू मार्ग पर पर्यटकों से भरे इनोवा वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से इसमें सवार 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल थे। घायलों में 2 बच्चे, 1 महिला व 1 पुरुष शामिल हैं। मृतकों में 5 पर्यटक गुजरात के रहने वाले थे, जबकि दुर्घटना में मंडी निवासी चालक की भी मौत हुई है। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज टांडा

0: रेफर कर दिया गया है। उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल ने दुर्घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। जिला चंबा में नशा विरोधी अभियान को प्रभावी बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने चिट्टा व अन्य मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए आवश्यक पग उठाए हैं, जिसके सार्थक परिणाम भी सामने आए हैं। जिले में नशीली दवाओं, मादक द्रव्यों की रोकथाम और उनकी धरपकड़ के लिए कार्यतंत्र को और अधिक प्रभावी बनाने के संबंध में विभिन्न विभागों के अधिकारियों में जागरूकता लाई जा रही है, ताकि वे अपने संस्थानों में इसकी रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाएं। वहीं विशेष रूप से स्कूलों और कॉलेजों में चिट्टा व अन्य मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। नशे के खिलाफ चलाए गए पुलिस विभाग के विशेष अभियान के तहत जिला चंबा में एनडीपीएस मामलों में संलिप्त 5 सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। बाढ़ व बादल फटने जैसी संभावित आपदाओं से निपटने की तैयारियों के उद्देश्य से एनएचपीसी करियां स्थित चमेरा विद्युत परियोजना 2 व 3 में एक मेगा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मेगा मॉक ड्रिल के दौरान अचानक बाढ़ व बादल फटने की स्थिति को आधार मानते हुए रावी नदी के किनारे जलस्तर में अचानक वृद्धि, राष्ट्रीय राजमार्ग 154A पर भारी भूस्खलन तथा विद्युत केंद्र में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने जैसी संभावित परिस्थितियों में राहत और बचाव कार्यों का पूर्वाभ्यास किया गया। चंबा सदर से भाजपा के पूर्व विधायक पवन नैयर ने वर्तमान कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। चंबा में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि चंबा में कांग्रेस राज के दौरान एक गिरोह सक्रिय है, जिसने भ्रष्टाचार की हदें पार कर दी हैं। पवन नैयर ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हर वर्ग दुखी है।
1: मीडियम वेव और एफएम शिमला, हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर आप सुन रहे थे चंबा जिला की चिट्ठी। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: आप ट्यूनिंग है 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला पर। तो लीजिए, हमारी स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त 3:10 हो चुके हैं एग्जैक्टली, और ये समय है ओल्ड हिट्स कार्यक्रम का। ओल्ड हिट्स कार्यक्रम जो पुराने फिल्मी गानों पर रहता है आधारित। जी हाँ, संगीत का ये सफ़र आप तय कर रहे हैं एफएम शिमला पर। संगीत जो सिर्फ सुना ही नहीं जाता बल्कि इसे महसूस किया जाता है। तो चलिए आज फिर इस संगीत में इस सफ़र को महसूस करते हैं एफएम शिमला पर। चलिए, अब बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे और गुजरे जमाने के सुपरहिट सॉन्ग इस प्रोग्राम में हम सुनवाएंगे आपको। तो चलिए, आगाज किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में इस गीत के साथ।

तुझे गुजरे ज़मानों की धुनों का आनंद ले रहे हैं आप FM शिमला पर। गुजरे ज़माने की धुनें आज भी हमारे दिलों में बसती हैं, आज भी अगर हम सुन लें तो हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ऐसे ही खास धुनें हैं पुराने फिल्मी गानों की खासियत। समय के साथ साथ ये धुनें पुरानी तो नहीं हुई, लेकिन दिलों में आज भी बसती जाती है। चलिए अगला गाना एक बार फिर किशोर कुमार की आवाज़ में सुनवाते हैं आपको। किशोर कुमार का साथ इस गाने में दिया है आशा भोंसले ने।

बिल्कुल जी, हम भी यहीं पर हैं और आप ही के साथ हैं ताकि आपका मनोरंजन पूरा हो सके एफएम शिमला पर। चलिए प्रोग्राम का अगला नगमा एंजॉय करते हैं।

तो चलिए जी, इसी नगमे के साथ ओल्ड हिट्स प्रोग्राम को देते हैं यहीं पर विराम। वन जीरो थ्री पॉइंट सेवन मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला ट्यून किया है आपने। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3:30 होने वाले हैं कुछ ही पलों में। अब हाजिर है युवाओं का मनपसंद कार्यक्रम युववाणी।

सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी शिमला के साथ आप सुन रहे हैं युवानी कार्यक्रम। मैं हूं आपकी होस्ट पूनम ठाकुर, आपका स्वागत करती हूं आज के इस कार्यक्रम में। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई व्यस्त है। किसी को ऑफिस की चिंता है, किसी को पढ़ाई की, तो कोई घर और काम दोनों संभाल रहा है। इन सब कामों को संभालते हुए सबसे ज़्यादा हम जिसे नज़रअंदाज करते हैं वो है हमारी सेहत। हम अक्सर कहते हैं समय नहीं मिलता, लेकिन क्या सच में स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़्यादा समय चाहिए? इसी सवाल के जवाब को लेकर आज हम बात करेंगे व्यस्त लोगों के लिए स्वस्थ जीवन शैली पर। तो चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं एक प्यारे से गीत के साथ।

दोस्तों, स्वस्थ जीवन शैली का मतलब केवल जिम जाना या डाइटिंग करना नहीं है, बल्कि छोटी छोटी आदतों को अपना कर भी हम अपने शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है सही दिनचर्या। कहते हैं अगर सुबह अच्छी हो

ओ तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है। सुबह जल्दी उठना सबके लिए संभव नहीं होता, खासकर यदि आप एक मॉर्निंग पर्सन ना हो तो। सुबह जल्दी उठने के लिए ज़रूरी है कि आप रात को समय से सो जाएं, तभी सुबह जल्दी उठा जा सकता है। कोशिश करें कि आप पर्याप्त नींद लें, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद शरीर के लिए आवश्यक है। सुबह उठकर एक गिलास पानी, गुनगुना पानी पिएं, हल्का स्ट्रेचिंग करें और 10 से 15 मिनट योग या प्राणायाम ज़रूर करें। दिन के ये 10 मिनट भी आपकी ऊर्जा और मानसिक शांति को बढ़ा सकते हैं।

साथियों, अब बात करते हैं खाने की। आजकल लोग जल्दी जल्दी में नाश्ता छोड़ देते हैं, फास्ट फूड खा लेते हैं या फिर डाइट के नाम पर घंटों भूखे रहते हैं, और यही आदतें आगे चलकर कमजोरी, मोटापा और भी कई बीमारियों का कारण बनती है। इसलिए सुबह का नाश्ता कभी ना छोड़ें। ज़्यादा तला हुआ कम खाएं, फल, सलाद और हरी सब्जियों को भोजन में शामिल करें, और इसके साथ साथ दिन में भरपूर पानी पिए। यदि आप ऑफिस या कॉलेज जाते हैं तो कोशिश करें कि घर से ही हेल्दी खाना लेकर जाए। बाहर के खाने से बेहतर है कि आप घर से ही कुछ स्नैक ले जाएं। यूं तो ये छोटी छोटी आदतें हैं, पर इनके खराब होने से कब ये बड़े बड़े नुकसान देंगी हमें पता भी नहीं चलता।

0: ಬಿಲಿ ಬಿಲಿ ಗಿಲಿ ಗಿಲಿ.
1: आज की तेज़ भागती ज़िंदगी में तनाव यानी स्ट्रेस का होना तो बहुत आम बात है. काम का दबाव, मोबाइल और सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग और भविष्य की चिंता, ये सब मानसिक थकान को बढ़ाते हैं. मानसिक थकान शारीरिक थकान से कहीं ज़्यादा बदतर होती है. स्ट्रेस को कम करने के लिए अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं, अपनी पसंद का संगीत सुनिए, किताबें पढ़िए और दिन में कुछ समय खुद के लिए और अपनी हॉबीज़ को पूरा करने के लिए ज़रूर निकालें. याद रखिए, स्वस्थ मन होगा तभी शरीर स्वस्थ रहेगा. आजकल हम घंटों मोबाइल और लैपटॉप के सामने बैठे रहते हैं. लगातार बैठने से कमर दर्द, आंखों की परेशानी और थकान बढ़ सकती है. यदि आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते तो कम से कम इन बातों का ध्यान रखें. हर एक घंटे बाद 5 मिनट के लिए टहलें, आंखों को आराम दे और शरीर को स्ट्रेच करें. लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का उपयोग करें.

दोस्तों, एक अच्छी जीवन शैली एक दिन में नहीं बनती। इसके लिए छोटी छोटी आदतें लगती है। हमें याद रखना चाहिए कि यदि सेहत अच्छी ना रहे तो हम जीवन में कोई भी मुकाम हासिल कर ले या कितना भी पैसा कमा ले, वो सब किसी काम का नहीं है। हेल्थ इज़ द बिगेस्ट वेल्थ इन लाइफ। एक अच्छी जीवन शैली छोटी छोटी आदतों का परिणाम है। समय पर सोना, समय पर खाना, सकारात्मक सोच रखना और खुद को महत्व देना। याद रखिए, अगर आप स्वस्थ हैं तभी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। हम अक्सर ये कहते हैं कि जब सही समय आएगा तो ध्यान रखेंगे, या फिर जब अच्छा कमाएंगे तो ध्यान देंगे। पर सही समय कब आएगा? क्या हुआ अगर उस समय तक आते आते देर हो जाए? इसलिए आज से ही शुरू कीजिए।

से ज़रूर व्यायाम करेंगे। एक नहीं 100 बहाने हैं, नए नहीं ये सब बहुत पुराने हैं। काश का कोई फल नहीं होता, जो आज ना हो पाया वो कल भी नहीं होता। तो श्रोताओं, आज हमने जाना कि व्यस्त होते हुए भी जीवन को स्वस्थ कैसे बनाया जा सकता है। काम ज़रूरी है, लेकिन स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। इसी संदेश के साथ मैं पूनम आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नए विषय और जानकारी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए 103.7 MHz आकाशवाणी शिमला के साथ। नमस्कार।

काश ये होता तो अच्छा होता, काश वो होता तो अच्छा होता, क्या होता जो आपके पास है अगर वो भी ना होता। समय होगा तो ध्यान रखेंगे, धन होगा तो खुद पर काम करेंगे। आज तो सोते रह गए हैं,

देखिए, जीवन में आशाएं होना बहुत ज़रूरी है। जब भी उदास हैं आप जीवन में, तो आप आसमां को नहीं बल्कि ज़मीन को देखिए, क्योंकि ज़मीन को देखने वालों की कभी भी हार नहीं होती और वो कभी असफल भी नहीं होते। 103.7 MHz पर आप फिल्म संगीत सुन रहे हैं। शाम के 4 बज गए हैं, समय है जी फिल्म संगीत का, तो बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं करवाते आपको। चलिए आगाज़ इस नगमे के साथ।

तो जी फिल्म संगीत का आनंद ले रहे हैं आप एफएम शिमला पर। देखिए गर्मियों का आगाज़ हो गया है बिल्कुल, तो गर्मियों के सुहावने मौसम के साथ बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी हमें करना पड़ता है, ख़ासकर पानी को लेकर। तो पानी का इस्तेमाल अच्छे तरीके से करें, हो सके तो पानी को बर्बाद बिल्कुल भी ना करें, अपने घर की टंकियों को ओवरफ्लो बिल्कुल भी ना होने दें। जिस पानी से सब्जियों को धोते हैं आप घर पर, वही पानी नाली में ना फेंकते हुए उन्हें आप पौधों में डालिए, पानी का सदुपयोग कीजिए क्योंकि बहुत कीमती है पानी। तो चलिए एक और गाना सुनवाते हैं आपको।

जी हाँ, इश्क करना भी ज़रूरी है, क्योंकि इश्क वो एहसास है जो आपको ज़िंदगी में हर चीज़ को महसूस करवा देता है। अगर इश्क और प्यार ज़िंदगी में हो तो ज़िंदगी सवरी सवरी सी लगती है, अगर ना हो तो बिना ज़िंदगी इश्क के बिल्कुल ही फीकी सी लगती है। तो क्यों ना इश्क और प्यार कर लिया जाए, थोड़ा सा इसका एहसास कर लिया जाए, इसके इश्क के रंग भी रंग दिया जाए। चाहे फिर वो नेचर से प्यार करना हो, नेचर से इश्क करना हो, या फिर अपने करियर से, अपने शौक से प्यार करना हो, अपनी फैमिली से प्यार करना हो। देखिए साहब, इश्क और प्यार करके तो देखिए, ये आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल देगा।

तो जी संगीत की ये महफिल यही ख़त्म नहीं होती बल्कि दिलों में हमेशा गूंजती रहती है और उम्मीद करते हैं कि आज की ये सुरीली सुहाने सफ़र के जो हमने ये सफ़र तय किया आपके दिल में एक प्यारी सी याद छोड़

हो गई। बहरहाल आज के इस सफ़र को अभी के लिए मैं यहीं पर विराम देती हूँ। 103.7 MHz आकाशवाणी FM शिमला ट्यून किया है आपने। अब शाम के 4:20 होने वाले हैं। आप कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 4:20 हुए हैं। अब हमारे हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम आरंभ होते हैं। इनमें सबसे पहले सुनते हैं सिरमौरी कार्यक्रम।

फसल वो बर्बाद हो जाऊं। ऐसी 12 मई मतलब डाली रे नरो के रोने रा दिन ए मनावने रा जीमा ए संयुक्त राष्ट्र संघ रे खाद्य एवं कृषि संगठनों र अंतर्राष्ट्रीय पादप संरक्षण सम्मेलनों रे 180 दे ज्यादा देशों गाय और सोए निरा जीमा। अब मनावने रा मकसद का नाजरी सुरक्षा मतलब खाद्य सुरक्षा। हर साल 40% फसलों बीमारी रोकीटोरी वजह से खत्म हो जाऊं र पूरी दुनिया रे पेटो हम अनुरोगी फसलों रे दामो गाय दोमो गाय बोरे सको गेहूँ दे कुछ बीमारी जरे रस्ट बोलो तेनी के दानो दे ब्लास्ट बोलो केड़े दे पनामा बिल्ट जरी बीमारी केती बेरो सारी सारी फसलें नाश करे जाऊं। अब रेखा का कारण हो सको से कारणों सो पोई सेरा नुकसान एरू बताऊं दे जे कीटोरी बीमारी की वजह से 220 बिलियन डॉलर नुकसान हुआ। आम अंगूर बासमती जरी फसलों भाइंडिन बेच सकते बिकने के बाहर पुंडे देशों जेनरी वजह से मारे देशों दा 50 बिलियन डॉलर नुकसान तो मारे मुल्कों दा यू जाऊं। अब इंदिरा रेखा कारण ये बहुत सोचे इंदिरा मारे वातावरणों का है मारे पर्यावरणों का है अब गलत असर पड़ो। 80% जो जमीनी जीव जंतु सो से पौधे गाय निर्भर सो बूणों दे एक ही पौधे री बीमारी ना सारे बूण खत्म हो सको। अब जलवायु परिवर्तन बोने लाग रहा जे मारी डाली बीमार होली तो वह मारे कई तरह रे प्रदूषण फैल ले तो तेंदरी वजह से हमो जलवायु परिवर्तन देखना लागो। एरू बोलते जे एक डाले सालों दे 22 किलो कार्बन डाइऑक्साइड चूसो रजे से बीमार पड़ो या मोरे जाओ तो एनी ना कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाऊं। आदमी के रो पशु के बीमारी का कारण हो सको ये जो बीमार डाली हो सो कोनी के मारे से खाने के आप के कोरनी रो अपने पशु के से खाने के कोरनी तो तेनी ना गलत असर पड़ सको मारे स्वास्थ्य गायब। अब डाली के खतरा कोनी वजह से हो सो इंदा रे के मूल को माइंदे कीट रो बीमारी आऊं मौसम बदलने की वजह से बोई सको दुनिया भर दा लकड़ी का व्यापार हो तेनी सीते केती बीमारी आए जाऊं। एक ही जरी डाली लाने की वजह से एक ही तरह री जे डाली एक ही जागे होली तो तीन जे एक ही डाली दे बीमारी लग गई तो से बीमारी सारे डाली दे लाग सको से पूरा पूरा तेनी बूण खत्म कर सको नष्ट कर सको। अब हमारे मुल्क को दे कोनी जरूरी हो सो कोनी खास हो सो एक तो हमारा जो मुल्क हो सो से खेती बाड़ी गाय और सो टीका होता लगभग 58% आबादी मारे खेती बाड़ी गाय निर्भर रहो लगभग 7.13 लाख वर्ग किलोमीटर बूणो डालियो सो पर 36% कीट और बीमारी वजह से खराब हो जाओ बॉडी बीमारी बोणियो ये पूरे बुणरा नाश कर सको। अब बात कर मैं जे बीमारी दे बचाने रा काजर या सो कैसे हमें इनी डाली बीमारी दे बचाए सको तो सबदा पहली तो इनी के ये जरूरी हो सजे हमें किए बीज पौधे किए बाहर दले होंदे बाहर मूल को पाइंड ले होंदे तो तेनी ना बीमारी आए सको तो बिना जांचे परखियो से पौधे न ले होने बीज न ले होनी केती बेरो हमें अब नवा तरीका सो मंगावने रा अब हमें कंप्यूटर ना ऑनलाइन तरीके ना मंगाओ तो जब किए बीज या पौधे मंगाने तो तेनी रा नरोगने रा सर्टिफिकेट देखना लागो पहले मंगाने दा पहले जब ठीक हो सो तब मंगाने पौधे।

मीना लागा रे शाड़ो शावणोरा। हवे भी तो लग रहा दूती पुरशिदा शुरू होना मारे जैठोरा मीना, पर जानी नहीं है जो जैठोरा मीना शुरू ही गया। तो यदि पहले हमें बात किए

खराब कर दियो। आजकल है बोतले सब ठाउँ प्लास्टिक करी चाल रही, सेब माटी मारे खराब कर सको। तो यही रोकने के सबदा बढ़िया जरिया हम इजा सोचे, हमें प्लास्टिक कम इस्तेमाल करो, दवाई खाद जितनी वो सको से प्राणी रे सबे दवाई रो गोबर रे खाद हमें पाए सको, जिन ना हमें अपनी माटी बचा सको। खूब पौधे लाओ जिन ना कटाओ रुकला। अब साथ ही एक नवा एनी चल रहा है एक बीमारी चल रही ई कचरा, जरी हमें मोबाइल कंप्यूटर एनी जो पुरानी हुई जाओ से हर को थी प्रकह दो, तो तेनी ना अब मारे माटे दूषित हो जाओ, तो सेब हर को थी प्रकह होनी तेनी कहते जोने से पाछू लो रही तेनी दोबारे बनाए नए मोबाइल बनाने के प्रयोग लाए सको। इनरा असर जो हमें देख रहा का माटी है प्रदूषित होने बारे का, ये देख रहा का पंजाब हरियाणा का, जैथे बीमारी बढ़ने लग रही है नहीं खादों और दवाई की वजह से। अब ये बात बात कर मैं ध्वनि प्रदूषण के बारे में। आजकल है गाड़ी फैक्ट्री मशीनों बाजे इस सारी भी वजह से हमारे जो ध्वनि प्रदूषण हो जो आवाज होता हो हमारे साधु हो से बड़े जाओ ते ना हमारे ना तो खाली दिमाग होता बल्कि शरीर होता तो इनका असर पड़ो और मानसिक रूप से हमें बीमार हो सको। तो इनका हमारे ध्यान रखना है नहीं कि हमारे कोरोना का शुभ पहली बात हुई जैसे हमारे पेड़ पौधे लाने खूब जतने हो सको, तेना हवा साफ हो माटी का कटाव रुको से चीश शुद्ध को निरा काम अब करो, फैक्ट्री बिजली बनाने के कोयले का इस्तेमाल ना करो, नए तरीके जो चीश नए बिजली बनाने या सूरज नए बिजली बनाने गाड़ी लोनी से बिजली ना चलने आई गाड़ी रा इस्तेमाल हमें कर सको, प्लास्टिक रा कम दा कम इस्तेमाल कर सको, ई कचरा रखने के तेनिरा इंतजाम कर सको, तब तो हमें यानी पर्यावरण प्रदूषण बचाए सको और अपनी आने आए जो मारी अगली पीढ़ियों से तेनों के किए रख सको। मैं पाछू ना तो तेनों के कुछ न रखो मारे इस हिसाब है। तो ये कुछ पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बात की। अब इधर बाद सुन मैं एक प्यारा सा लोकगीत।

गाडी कम चलाउने र बैठ्यो काम गरे बैठ्यो काम गर्ने र पढाई अनलाइन तरिकेले गराउने र ए आह्वान गरेर राख अपिल गरेर राखे डिजल पेट्रोल इन्जिन आए बचलो त्यहाँ नै बोलो जे यसै टाइम हो सोबी साथी आयो काम गर्ने रे जरुरत छ डक्टर बन्ने क्या नीट युजी जु पेपर हो 2026 रा से 3 जुन के हुआ थिया सरकार है से रद्द कर नेरा फैसला लय रखा सरकार है बोलो जे नीट गाय र सरकार गाय विश्वास रखने के पेपर लीक होने री खबर की वजह से सरकार है इंद्रिय जांच सीबीआई ना कराने रा फैसला लय रखा र अगले जो एनी पर्चरी पेपररी जो तारीख से अलग से बताए जाने चुनाव आयुक्त श्री सुखविंदर सिंह संधू जी है आज शिमले रे नीच के स्कूल शोगी मतदान केंद्र रे जांच किए रतेत है इंतजाम रा जायजा लोआ प्रदेश दे ज्यादातर बागो दे बादल छाए रे जनजातीय जिले लाहौल स्पीति री ऊंची टीरो गाय आज जीशो ताजा यूं पड़ेरा कुल्लू मंडी सोलने सिरमौर तेज आवे सीति बरखा र शोड़ू पड़ने रा अनुमान सो जबकि हमीरपुर बिलासपुर कांगड़ा रो उन्ने तेज आवे सीति बरखेरा येलो अलर्ट जारी करे रखा तो ऐबे शुण में गिरे एक सिरमौरी लोकगीत रविंदर वर्मा री आवाज़ दा

हुंदे भवाई पाछे चालो शोरा आगे जुमाई ता तो बैठी मोले

अभी आप सुन रहे थे सिरमौरी कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है महास्वी कार्यक्रम।

0: शिमले राधे के।
1: जी तो हित राम तनवरोरी आवाज़ा दे सुने तुसे लोक गीत ए ब्यासा गलबात लगानी अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस और बारे दे। तो जी आज 12 मई आज के दिन अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस हर वर्ष जो है मनाया जावा। तो जी 12 मई जो हमारे आधुनिक नर्सारे संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल री जयंती है। इनारा जन्म 12 मई 1820 के इटली दे हुआ था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो एक मतलब जान से ये जो है तेस टाइम में कोई क्रीमिया रा एक युद्ध हुआ था। तेस दौरान जो है राती दे यो लालटेन लेके ना जो तेती घायल थे मानू सैनिक घायल थे तीनारी जो है देखभाल करो थी राती रहने रे और इना ही नर्सारे लिए औपचारिक प्रशिक्षण इतने के बाद शुरू भी किया था इन्हें। और जो बोलो है ना मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो काउंसिल ऑफ नर्सिंग जो भी है इन्हें 1965 इतने के मनाना शुरू करता था और जनवरी 1974 दे 12 मई को आधिकारिक तौर पर दे अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस घोषित किया था। इस दिन और मकसद जो है से समाजों दे हमारी नर्सारे जो योगदान है मान्यता देना है। अच्छा जागरूकता क्या डॉक्टर जो हमारे मरीज है इन्हें बिचे मजबूत कड़ी रा काम करने वाली जो हमारी नर्साई है ना इन्हारे बारे दे एक मतलब नई पीढ़ी के दर्शना कि क्या काम करो या कितना काम करो या है ना। और जो हमारे नर्साई इन्हें जो भी निवेश करना नर्सा के इन्हारे अधिकार

जी तो लोकगीत सुना तुसें सरदारी लाल दीपकारी आवाजा दे। एह् बी असें गल्लबात लगानी बसंत ऋतु दे म्हारे जंगला दे मिलने आह्ले औषधीय सब्जियां और फल दे बारे दे। तो जी म्हारा पहाड़ म्हारा हिमाचल बहुत जे एड़ी औषधीय साग सब्जी और फला साथे भरी रहा कि जे असें अपनी दिनचर्या दे तीन औषधीय वाली सब्जियां खे खाऊं तो किथी ना किथी आ सारी बहुत जी बीमारियों रा इयां ही निदान हुई जाना। तो गांवां दे तो खैर किसी के दसने की जरूरत ही नहीं होंदी, गांव वाले माणू तो इयां ही इन्हां सभी चीज़ा के खाओ है, खाना पसंद करो है, और जिबे लगी दिसनी चीज़ तो जी साइड जाहिर जी गली पे तबे खाने तो पड़नी है ही, है ना। पर शहरा वाले खाना चाहो है पर तबे शहरा दे चीज़ा मिलदियाँ ही नहीं, तेती तो पैसे दे के भी वो चीज़ा नहीं मिलदियाँ। तो भाई आ सारे नेड़े तेड़े देखो आज के टाइम होता जो देखा जाओ तो ए तो कुछ भी आनी शुरू हो जानी, कहती कहती तो आने भी लगी दी, क्योंकि ये तो बारी है जो है गर्मी आ खास पता नहीं लग्या नहीं आ, बरखा अच्छी हुई दी आ, लेट हुई है पर बरखा अच्छी हुई दी आ। ए भी देखो लियूंगड़ा भी हमारे यहाँ है तो यो जंगली सब्जियाँ है ना, देखो आपू कोई इतने के किसी किस्म खाद नहीं पानी पड़ती इन्हें चीज़ा के आपू लगो या यो है ना पानी अरे किनारे जेती जे मतलब बड़ा ठंडा जा जगह हो, और कैथी कैथी से तरड़ तरड़िया जड़े मतलब गाँव दे बड़ी भारी मेहनत करनी पड़ो इन्हें सब्जियाँ काटने है, जो तरड़ तरड़िया सब्जी बोलो है ना जड़ुआ हो गया है वो सब्जी एरिया तो बड़ भारी गहराई है दे मतलब खनाई करी के ते वे यो सब्जियाँ इन्हें जड़ा है काटो है और बड़ी बड़ी ताकतवर हो ये वो सब्जियाँ, इन्हें रे बड़ियाँ भी पाओ कई इन्हें रे कोफ्ते बनाओ कई सब सब्जी बनाओ जड़े आलू वाली सब्जी बनोई, और जड़े हमारे बन ककड़ी होएगी आया मतलब अश्वगंधा होएगी और ची बिच्छू कुट्टी का साग जैसे के बोलो है मारे तो ची बोलो है ना पर कई जगह बिच्छू कुट्टी भी बोलो है। तो आसे तो देखो क्या करूँ है आजकल ऐसा के बिच्छू कुट्टी भी मिली जाओ, कड़ी पत्ता भी मिली जाओ आ, टिम्बरो भी मिली जाओ ही है ना, और जड़े से बसुटी जे गाँव रे तो माणु सब भी जानो है और मारा खे तो लगो शहर वाले भी जानो है बसुटी जो है हमारे ना खांसी वगैरह एड़े किसी बहुत पुरानी जड़े सावरी प्रॉब्लम हो इन्हें के भी अच्छी हुई। तो ये वो जे ऐसे कुंबल कुंबल इन्हें रे लेके ना पुदीना वगैरह ब्रह्मी तुलसी एलोवेरा वगैरह कट्ठा साग बनाऊँ ना और खाऊँ तो बड़ा भारी गुणी हो ये। तो एबू करियाड़ो मारे लगी दी कैथी कैथी मुकी गई दी कैथी कैथी एबू फूली गई दी पर

अभी आप सुन रहे थे महासुई कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है स्पीति कार्यक्रम।

जुले पितिमी मेसाङमाला याकाशवाणी शिमला एनु म छेरिङ पाल्मो धेरिङ कि पिति ड्याग्रिम गचौ नाइन धेरिङ हजयाला बुजुर्गौँ कि सम्मान रङ महिला कि सम्मान रङ्ग्याकर कि लन कोर्ला छिग्नी सुम सुनाइन् बुजुर्गौँ कि सम्मान सेना घिनगुनियाला याक्पु फेच्छ धेरिङ हया ला बुजुर्गौँ कि सम्मान कोर्ला सुनाइन् हजी मिजे नाङदु हजी घिनगुन याते सोनम साहू रंग घिनगुन याते हजी जिमे त्याकी नीब चिक इनो खोंजाया ते ऐ चुअर रमदा रंग योंदन रंग आशीर्वाद सु हजी जिमेत रंग हजी तोपला शांते जुआ खोंजाया जिमेत नांगला टू या जिमेत या किफिला मेहनत रंग हति याकपू की लहा रंग सम्मान फेचा की लापचा गेपका खोंजाया ल याकपू फेचाते हया कि कर्तव्य चिक सेना हया कि लिहा चिकिनु हजी ग्याकर कि युल नाङदो हजी घेनगुन याला इज्जत तेचा ते चिन हुआ सेना यांग जिस घर में बुजुर्गों का सब सम्मान होता है सेना यांग हती रु याकपू फेचानी घेनगुन याला हती खांगबारु कितपू रंग शांति रंग हती ल याकपू रंग यारकेत योगा बीवी में रंग टू याला याकपू याराप लापचा रंग जिमे याला यारकित लापचा गिनगुन याला यांग मिनांग मिति याकपू फेचा खोंजाया की तांगबू की लाभ नेंजा चुआ रामदा की ची योन्ना खोंजायला कितपू रंग खाऊ की लाभ या नेंजा ते होया की जिम्मेबारी नो यांग मिनांग मिति याकपू खोंजायला चाशे लाभ तांगजा होजाया की खोंजाया की खाऊ की काचाया नेंजा ते होया की एक लहा चिकिनो तांग थिरिंग की कलवा की तुजत नांग तो मिया खोंजायाला यांग व्यस्त जिंदगी खोंजरी व्यस्त जिंदगी नांगला खोए पुचियो का गिनगुनियाला तुजत मातेता यांग खोंजाया लाभ मांगेंदा खोंजायागा याकपु मचावा यांग खोया आवा आमा की तांगपु की लाभ मान्यता ते खोया सेम फमचो का यांग दीते याकपु की लाभ मा तेने हजाय तब घिनगुन या कि लाभ नियन खोंजाया कि लाभ चा खोंजाया कि ची खाहु अतिया नियन खोंजायाला तुजुते तब याला न्याम्पु डुलझा कि लाभ चाया नियन अति ते याकपु इनो तेने होया यांग घिनगुन याला चुक्सी याकपु फेचावा अति कि ची ची फेचावा मनशोला हजाय तब घिनगुन याला याकपु चाशी लाभ तांग खुले नियनपु लाभ तांग घिनगुन याला कित खोंजायाला कितपु रंग चाय पर खोंजाय तोपला घिनगुन याला लाभ तांग खोंजाय तुजुते लाभ ची तांग ना नेनबु चाय खुले चाय जम्पु चाय तांग जाय खोंजाय याला सेम फम्मा चुकपा निपाते घिनगुन याला नाम तांग ना खोंजाय लाभ तांग सनाया खोंजाय न्याउ देची थेन खोंजाय न्याउ थुल जी लाभ तांग जाया यांची तोंग लिहा जोना खोंजाय न्याउ थुल जी जोया सुंपाते खोंजाय की सेवा फेचा सना खोंजाय की सेवा ची फेचा खोंजायाला चा थोपा गुण अति तेचा खोंजाय ना सारो खोंजायाला ताया लेहा चुन चुन याला खोंजायाला यांग होया चुकसी

जगा मांगबू का थकसंग का आने याला यांग भेदभाव का चुआ खोजा याले ये मालावा यांग चुंदा नामाल तंग अति याकू माछावा यांग टू या किन रांडा माछावा याकू में फेका यांग खोजा याला अपमान का मिनंग मिति चुआ दहेज पर था यांग बाल विवाह का चुन नसु यांग ऋषि जगरू यांग आने याला चढ़ाई छाए का मांगबू चुआ अति ते याकू माँ अति ते मिना मिति धुमल की लाभ इनू दीते आने रंग ओई या ओई सांची तब ला याकु मानो महिला सम्मान फिला ओई दी भाषण चिकु मते ता मीना मिति ओय सम याकु की लेहा फेचा आने अल चुन नसु लापचा गिपचा की खंजिरंग ची ओ न खंजरंग खाहु ला ची ओ न खंजरंग यंग टू यल डिपेंड मद खुरा अति फेचा अति गंगबू की यंग यरके फिला आने यला लापचा ओई ची ओ नई आने न चुन नसु पमो याला आने याला आवा अम्मा याला लापचा गिपचा हिनो यंग तिमु छाई ची खोजेला ला ये लाभ घुसन ये लापचा चुन नसु ची खोजे अति फेन अतिला खोजेला बढ़ावा ते घुसन दी ते ओई गनमी लू ला माता वन माते ओ आने याला जिहू मिलाप का यो खांग भी ला रंग ते फेचेला फौजेता पमो या चुकसी फेचा से ओतो से माँ ओया पमो याला ये लाभ घुसा चुन न से खोजे समाज आज की निर्माण चुआ खोजे ची लहा हो ना तेरे याकू चाही पेका पोमो याले योंदन लाभ खोजे ले नौकरी ची पहनना होती थे याकू इनो खोजे लाये ची और ना या और इसी में बारी इनो खोजे ले सपोर्ट चुना दी थे ता पोमो की सम्मान को लत्सिग निसो मेनो ता आने यंग कुमारी दोर्जे की लूनियन बोची नेंदा जा

अभी आप सुन रहे थे स्पीति कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं लोकगीत। कार्यक्रम का पहला लोकगीत आपको सुनवाते हैं अक्षर सिंह परमार और साथियों की आवाजों में।

0: अभी आप सुन रहे थे लोकगीत। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं, शाम के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला 103.7 MHz पर भी सुना जा सकता है। ये समाचार DTH सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध रहेंगे।
1: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
2: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया।
3: मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
1: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
2: तो फिर सही नंबर,
1: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
3: आपने तो बचा लिया दीदी।
1: काम से नहीं।
4: RBI कहता है,
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि रेजिलिएंट एक्शन फॉर डेवलपमेंट एंड डिजास्टर रिकवरी हिमाचल प्रदेश परियोजना प्रदेश में आपदा प्रबंधन क्षमता को सुदृढ़ करने और प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने में प्रभावी व दूरदर्शी पहल सिद्ध होगी। शिमला में आज परियोजना की प्रगति व क्रियान्वयन को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2,687 करोड़ की लागत की इस परियोजना का उद्देश्य आपदा प्रभावित बुनियादी ढांचे की पुनर्स्थापना करना है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किसानों व बागवानों के लिए मजबूत सुविधाएं और ढांचा तैयार करने की आवश्यकता पर भी बल दिया ताकि प्राकृतिक आपदाओं के समय उनकी फसल और आजीविका सुरक्षित रह सके। इस बीच मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को राज्य के लिए 31 मई तक पोषण नीति तैयार करने के निर्देश दिए। शिमला में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि फिट हिमाचल के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लोगों को पोषण युक्त भोजन के महत्व के बारे में जागरूक करना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापक पोषण नीति तैयार करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। प्रदेश भाजपा ने 4 नगर निगमों सोलन, पालमपुर, धर्मशाला और मंडी में आगामी 17 मई को होने वाले चुनाव के लिए आज अपना संकल्प पत्र जारी किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने सोलन नगर निगम चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि सोलन को प्रदेश का सबसे स्वच्छ, सुरक्षित, हरित और स्मार्ट शहर बनाया जाएगा। उधर भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने धर्मशाला नगर निगम चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी धर्मशाला को आधुनिक, सुव्यवस्थित, पर्यावरण अनुकूल और विश्व स्तरीय पर्यटन शहर के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा तैयार किया गया ये संकल्प पत्र केवल चुनावी घोषणा पत्र नहीं बल्कि धर्मशाला के भविष्य का विजन डॉक्यूमेंट है। सुधीर शर्मा ने कहा कि ये संकल्प पत्र शहर की वर्तमान आवश्यकताओं और भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है।
1: नगर निगम के सामूहिक विकास की दृष्टि से पार्टी ने जो संकल्प पत्र तैयार किया है, ये संकल्प पत्र पूरे नगर निगम को एक दृष्टि में रखते हुए तैयार किया गया है। शपथ पत्र में मुख्यतः जो भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में नगर निगम धर्मशाला को विकसित करने के लिए मूलभूत सुविधाओं में सुधार लाने के लिए विचार रखती है।
0: भाजपा सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज और प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष विपिन परमार ने नगर निगम पालमपुर के चुनाव के लिए पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट व संकल्प पत्र जारी किया। उन्होंने कहा कि ये संकल्प पत्र पालमपुर के समग्र विकास का रोड मैप है। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने भी सोलन नगर निगम चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। नगर निगम चुनाव प्रभारी व उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल की उपस्थिति में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सोलन शहर का सर्वांगीण विकास उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि शहर में पानी की समस्या का जल्द निपटारा किया जाएगा और शहर को 100% सीवरेज लाइन से जोड़ा जाएगा।
2: पिछले 3 साल में जब से कांग्रेस की सरकार आई है, सोलन की जो वाटर सप्लाई स्कीम है उसको डिस्ट्रीब्यूशन में क्योंकि दिक्कत थी, लगभग 12 से 13 करोड़ रुपए जो है वो अलग अलग वार्ड्स में डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस को ठीक करने के लिए खर्च किया गया है। हमारी कोशिश ये भी है कि हर वार्ड में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम डेवलप किया जाए, स्थानीय जल स्रोतों का संरक्षण किया जाए।
0: इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी मौजूद रहे। प्रदेश में पंचायत चुनावों के लिए दाखिल नामांकन पत्रों की आज जांच की गई। सिरमौर के जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त प्रियंका वर्मा ने बताया कि जिले में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए 5,953 नामांकन पत्र दाखिल हुए। उन्होंने बताया कि जिले की 273 पंचायतों में 26, 28 और 30 मई को 3 चरणों में चुनाव होंगे, जिसे लेकर प्रशासन द्वारा आवश्यक तैयारियां पूरी की जा रही हैं।
3: हमारे 8 ब्लॉकों में तो टोटल 74 जिला परिषद के लिए नामांकन भरे गए हैं। वही पंचायत समिति में टोटल 474 नामांकन भरे गए हैं। उसी तरीके से जो हमारी 273 पंचायतें हैं उसमें टोटल हमारे हैं 1,452। 14 और 15 तारीख तक का 10 से 3 बजे तक का समय दिया जाएगा अपने कैंडिडेटों को विड्रॉ करने के।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7।

0: 7:45 पर नमस्कार।
1: आज तो पार्टी चाहिए,
2: चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
3: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: इस द पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
3: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग।
3: आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर भी सुना गया। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं कांगड़ी कार्यक्रम।

हिमाचली बोलियां अंदर कांगड़ी कार्यक्रम च अस अपने श्रोतियां दा बहुत बहुत स्वागत करदे। जिस पासे सुना मौसम दे चर्चे बेशुमार कांगड़ी कार्यक्रम च कबूल करा वंदना राणा दा नमस्कार। जी हाँ श्रोतियो, अजकल हर कुसी ते मौसम दे चर्चे सुनांदे हन। हुण कदिया मौसम चलिया, मई है कि दिसंबर है, हाली ठंड मई च पवा दी, एदे दे टाइमें दे पहले ही बरसातां शुरू होई गईयां हन। पता नहीं इस वरी मौसम जो क्या होई क्या है, दईयां मतियां सारियां गल्लां मौसम दे बारे च चला दियां हन। कने सच भी है कि इस मई दे महीने च बथेरी गर्मी हुंदी थी, लोकां स्वैटरां कोटियां जैकटां रखी दित्तियां थियां, पर हुण के ना स्वैटर उतरे ना जैकटां, किन्ना ठंड ही इतनी होआ दी है। कने बरखा तां इतनी होआ दी कि जियां बरसाती लगियां होन। इस मौसम दे बदलाव च कुथू ना कुथू असा ही जिम्मेवार हन। पर्यावरण दे बारे च अगर पहले चेते हुंदे तां अपने अपने टाइमें पर मौसम आउंदे जांदे। हुण भी अगर असा पर्यावरण बखे नरमी रखी तां आने वाले टाइमें च मौसम अपने अपने टाइमें पर आउंगे। अज कांगड़ी कार्यक्रम च असा यही गलबात लेके आयो हन कि जलवायु परिवर्तन एक गंभीर समस्या बनी चुकी है। इस जो असा किन्ना दूर करी सकते हन, किन्ना इससे निपटी सकते। कने अपने सूबे की खबरसार कने लोक गीतां कने असा मनोरंजन तुसां दा करते करते हन कार्यक्रम के दौरान। तां चला कार्यक्रम की शुरुआत माता दी भेंट सोगी करदे हन। ओम प्रकाश कने साथियों दी आवाज़ सुनते हैं कार्यक्रम दी ये पहली पेशकश।

माता दी भेंट सुनी तुसां ओम प्रकाश कन्नै साथियों दी आवाज़ बिच कुदरत दे हर रूप च उस शक्ति दा बास है कुदरत दे हर रूप बिच उस शक्ति दा बास है जिस पासे भी दिखते हुंदे मां दे दीदार हन। इस करके असां जो शक्ति स्वरूप कुदरत दा खास ध्यान देना होगा। कुदरत दी संभाल ही ईश्वर दी पूजा है। मौसम बदलाव अज दुनिया दी सबते गंभीर समस्या चते एक है। इसका मतलब है कि जमीन दे तापमान मौसम कने बरखा दे तरीकें च लंबे टैमे तक होने वाला बदलाव खास तौर पर इस समस्या माणुओं की वजह से बदती है। जियां कि रुखां दी कटाई कारखानियां कने गड्डियां दे निकलने वाला धूं कने कोयला पेट्रोल डीजल का ज़्यादा तो ज़्यादा इस्तेमाल करना। मौसम बदलाव की वजह से जमीनों का तापमान लगातार बढ़ता जिस से पूरी दुनिया च ग्लोबल वार्मिंग बोलिया जाता है। इसके नतीजे ते ग्लेशियर पिघलाते समुद्रों का जल स्तर बढ़ता है। सूखा बाढ़ चक्रपात कने बेमौसमी बरखा जते कुदरती आफता बढ़ा हैं। इसका असर खेती जल के स्रोत जंगली जीवों कने माणुओं की सेहत पर भी दिखा पौता है। अगर टैम रेंदे इस समस्या जो रोकया नहीं गया तो भविष्य जीवन कने सेहत होर खराब हो सकती है। इस वास्ते असं जो रुख लगाने प्रदूषण घटाने ऊर्जा की बचत करने कने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का

कमल शर्मा दी आवाज़ सुनिया तुसां ए लोकगीत कुदरत कन्ने जुड़िया खास खास खबरां लगांदे हन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरां ने पश्चिम एशिया संकट दे बीच विदेशी मुद्रा दी बचत वास्ते लोकां ते ईंधन बचाने कन्ने विदेशी चीज़ां दा इस्तेमाल कम करने दा आग्रह कीता है। प्रधानमंत्री होरां ने पेट्रोल कन्ने डीजल दा इस्तेमाल कम करने कन्ने घरे ते कम ऑनलाइन क्लासें कने वर्चुअल बैठक जते उपाय अपनाने दी अपील भी दोहराई है। आयात कम करने कने इस संकट ते उभरने च देश दी मदद ते मिली जुली प्रयास पर जोर दिंदिया प्रधानमंत्री होरां ने गलाया कि ए टाइम लोकां जो एकजुट होने कने मुल्क दे संसाधनों पर बोझ कम करने दी जिम्मेवारी निभाने दी जरूरत है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू होरां ने सेब उगाने आलियां ते लंबे बिलां दे भुगतान वास्ते मंडी मध्यस्थता योजना दे तहत 20 करोड़ रुपए जारी करने दे निर्देश दित्ते हन। सह अज शिमला च एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करा दे थे कने सुखविंदर सिंह सुखू होरां ने इस साल 15 अप्रैल चो की गई घोषणा दे मुताबिक सारे महकमें ते चतुर्थी श्रेणी पेंशनरां दे बकाया एरियर दा भुगतान करने दे निर्देश भी दित्ते। उन्हां गलाया कि सेवा निवृत्त कने सेवा च कम करा दे सरकारी कर्मचारियां दे चिकित्सा प्रतिमूर्ति दाव्यां दा विछोड़ निपटान कीता जाए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने चिकित्सीय शिक्षा च दाखले वास्ते 3 मई जो आयोजित NEET UG 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। सोशल मीडिया पोस्ट च एजेंसी ने गलाया कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित कने राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली पर टिके विश्वास जो ध्यान च रखदिया लिया है। NTA ने दस्सिया कि सरकार ने पेपर लीक दे आरोपां दी पूरी जांच वास्ते मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI चो सौंपने दा फैसला लिया है। एजेंसी ने गलाया कि सह CBI दे कन्ने पूरा सहयोग करके कने जांच वास्ते जरूरी सारी समग्री रिकॉर्ड कने सहायता मुहैया करांगी।

NTA ने गलाया कि इम्तहान वास्ते 9 तरीक अलग ते अधिसूचित की जाएगी। तो इतियां खास खास खबर कने हुण सुनते हैं कुलदीप सिंह राणा की आवाज़ कार्यक्रम का अगला लोकगीत।

दी आकाशवाणियों शिमला केंद्र शु सोंगलो प्रोग्राम रे राधी केंदी भत्ते दी मोड़े दी बाड़े दी ऐके नरसेहणा दी केंदी भत्ते दिगी प्रोमिलो तरफे राम राम जुले जी सादी रे तुगल सोंगलो रूठे रूठे गीत गुरेर केंजरे रोनी दीरा सादे ईमिना खास खास आऊँ खबर तो दुर दुर लकेंदा सादे जरूर शपोग त सादी रे आर्थिक केंज बातेज नैन की भाई तोक्षु अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस त हर साल सानी मायरी कुछ मना तो की ध्याड़ा में ती पूरे दुनिया दी ध्याड़ा मना सयुआ नर्स दिवस मना सयुआ त दी खास ध्याड़ा आधुनिक नर्सिंगो संस्थापक माने सहिलजा फ्लोरेंस नाइटिंगेलो आऊँ जयंती तो दुमुकारी दी मना सयुआ ते सादी रे दी खास ध्याड़ा मनाची मकसद नर्स अदु आऊँ मेहनत तो नतपदु सेवा है स्वास्थ्य क्षेत्र री दो दो अहम योगदान पहचान रणरिम थलजी दी मना सयुआ दियु मकसद दी एशु त मी दिल नर्स अदु अहमियत कंजिते दो दु थालजी आदरो भावना ताजिम थालजिल बते मीर प्रेरित लेशु दी खास ध्याड़ा आई छन समाज अभी दी हित दिलाचा कि भाई नर्सर में स्वास्थ्य सेवा र अधोड़े शुर तांत कुछ तरफोन कि भाई नर्स दिवस जेते इच उत्सव मश सादी रे दित नर्स अदी आदर रणरी रसा दे दो दु सेवा भावो थालजी दो दी शाबस लेमी मुक्का शु त दीपाठी गलगप्पा प्रोग्राम बीजा जरूर शपोग दीरा सादे सादे आई खास विषय तो नेत्र दानो पाठी टीरो दान ले मानव तो साजे सेवा शु तांत हेंज दीवी महान दान ल कुर्दानी भत्ते भी मोड़े दान ल हेंज दीवी कुर्दानी छेर कुजी हिंदू लसी टीरो दान रानी इच टीरे माता जामी भी इच खर कोई जिंदगी खोसी तरसी दो हयारिस जिंदगी भी इच खर कोई छांगे खोसी तरसी त दीपाठी ल गलगप्पा प्रोग्राम बीजा जरूर शपो केंदा सादे त प्रोग्राम मुंडर हेंजरे रोनी नीरू चान्यू सक्सी दी गीत

जी गीत केन्द्रेश तनी छंगसी मुक्तु बी चंग हेंदु स्वंगला दीवे थलजी सी ए शिंगमियो छन तो की खास ध्याड़ो बारे गलगप्पा केंदा सा देशाज लेखतो एग केंज भातेज ने की भई हर साल सनी मायरी पूरे दुनिया विश्व नर्स दिवस मना सा छन केंज भातेज ने की भई छा रोगे रानी टे कुई रानी टेजी नाथ पदी जिंदगी रंजेरी छिड़ योगदान हेंजी डॉक्टर दुमाने स्तनी डॉक्टर शुजा तो धोने नर्स अदुल तो नर्स अजले एना दु जिंदगी परवा लाजी में इच नत पो जान बचा चिम पाठी पूरे कोशिश ला जातो दुर तांत दि खास ध्याड़ा दो दु योगदान थल जी मना सयुआ दिरा सादे सादे छान केंज बत्तीज नैनी आधुनिक नर्सिंग ओ जननी फ्लोरेंस नाइटिंगलो ही तरी दि खास ध्याड़ा मना सयुआ आउजी टेजी नत पदु सेवा एनो सेम जिलाते छान क्रीमियन लड़ाई दो तल लम पेरानी छांगी लाजिते लम परेन जाते घायल सैनिक अदु सेवा दोई एनो सेम जी रूठेरा सादे सेवा लाते तांत दोवी लेडी विद द लेम कुड़ातो दुर छन सनी मई साल सरे राउ नीजारी जेगी फ्लोरेंस छन एनो सेवा भावना उथाल जी दू हेंज भरतेज हीत लादनी दोई साल सरे राउ शुम नीजारी सेंट थॉमस अस्पताल आ रसादे उई नर्स अदू थल जी आऊँ नाइटिंगल प्रशिक्षण स्कूल तो दोलो दोई स्थापना लाते त ध्यारी मुंड फिगी नर्स दिवस मना चिम प्रस्ताव त ध्यान त साल सस्कुराउ निंजो शशुमारियान दे त सस्कुराउ शुमनिजो सा पीरी छन सनी मई आधिकारिक तौर विश्व नर्स दिवस रूपरी मना चिमी दि घोषणा शुते त केंज भत्तेज नेन की भई छन सनी मई कुज मना नाइटिंगेलो जे बीमी ध्याड़ा बीए अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मना चिमी फैसला शुते तारिंग छन जुड़ हजार निजो त्रुईरी हेन जी दि खास ध्याड़ा मनास दन त दि द्यू थीम तो हिंदू नर्सर हिंदू अंजाम मुदा शुर हिंदू भविष्य शुर सशक्त नर्सर जी जिंदगी बचा जी मकसद दी ये कि भाई नर्सर दी रूठे सुरक्षित का मोठा रिरानी आदर रनी रूठे मुक्कर रनी ते स्वास्थ्य सेवा रहें जी मजबूत बनार स्तर जी तो सादी रे गपदू ये कि भाई नर्सर जी छन नतपदू रूठे टहल ले रहा सादे नतपदी इच खर कोई उम्मीद दोज रन रतो दूर टे कोनी लड़े पी मित शादे छो याऊ दो जिरन रतो दुर द्या छो आऊँ रोग तो या दुर खरी बार दो वक्त तो दु वक्त अरे नर्सर मानव तव भत्ते बे मोड़े सेवक शुर दोरे हिंदू समाज सजे सेवक अर शुर आऊँ जी रात दिन नत पदु टेहल लजातो दुर नत पर स्वस्थ बना छिरी तरंग बरंग लेमी थल जी एना दु अहम भूमिका दोज निभा जातो दुर इच नर्स इच नत पर भी जेते औषध रन रिम कम मल तीरा सादे दोई दु नत्पा भी टे कुनी लड़े पीमी याऊल रन रतो हिम्मत रन जी रसादे दोबी मानसिक सहारा ल रन रतो त टेजी नत्पो हर क्वज मोड़े जरूरत ध्यानता जी रसादे रात दिन मेहनत लजते नत्पा दु सेवा लवे परमाए छन हैं जी नर्स दि हैं जी दिखास त्याडर शबस लहदनी छन इच वक्त हैं जी दि कुछ तरफन की भाई मदन आऊँ कोरोना उल

जी घुरे के जरेश तनी बोला चानणी ना लगी हो। चन तो कि खास दिहाड़ो बारे के दसा दे गप्पा शस देखत दिरी हिंज छन फ्लोरेंस नाई टेंगलो हीत लाते नी। त दो बारे ले इफो गलगप्पा जरूर शज जुम्बोग छन दो जन्म त इच तो जी घर बारा अंग्रेज परिवार छुते। आऊँ इटली फ्लोरेंस शहरा दोरबरा जातो एर त दो क्वाश तारनी तेज तंग न्यू रहा कि शुबीरा सा दे दो सेमरी हमेशा मी दू सेवा इच्छा तो कुरा तो दोर की भाई दू वक्त मेज मी दू नर्स बने पीछा रूठे माचे जातो एर। पर फ्लोरेंस से नर्सिंग अभी एनो पेशा बना गदे दो टेजी ए घायल मी दू सेवा ले एनो जिंदगी लक्ष्य बनाटरा। त दू साल सरे रहू नींजो सा पीरी क्रीमियन लड़ाई दो तल ब्रिटिश सैनिक का दू सेवा उथल झील दे। तो दोई दौर तिक अस्पताल दो हालत ठीक ले रसा दे सुधारे ची रसा दे नतपद टेहलो टोईल आईने ध्यान रन रहा। त दो मेहनत ते या सैनिक का दू जान ल बचे पा। त दू कु रतो दौर की भाई रात वक्त ल दोई गुड़ी लम्परें जाते नतपद टेहल ला जा तो तात दो भी लेडी विद द लैम्प कुछ मना त लम्परा लम्पो राखी मेज मिल दोज कु रतो र। त फ्लोरेंस से छन नर्सिंग अभी इच सम्मानो पेशा बढ़ाक दे त आधुनिक नर्सिंग नींव दोई ठारिक दे नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूलर बनाक दे। त आऊँ घड़ी दो एनो कुजमा आऊँ दो पेशा दोई चुनेक दे दो थल जी दू सेम जी रनी पूरी त्यार शुज छक्कन शुज दिकोनी की भाई दो सेवा भाव दो सेम रि तो ता दोई मानवताओ सेवा आइन रूठेरा सा दे लते। त शाशु मागा साल सस्कुराव सारी दू दी दुनिया ने अछाइल दे फोमे पिनीजो सा सालो उम्र दू सील दे। त सादरे तात तो की वक्त ल नर्सिंग ट्रेनिंग पूरे लज थल नर्स अदी नाइटिंगेलो प्रतिज्ञा दिला साइल जातो आऊँ द दया सेवा ईमानदारी प्रतीक माने सेवा। त दितोई तो की खास दिहाड़ो आऊँ हेंजी दिकोन की भाई महानमी हीद हेंजिला तनी महानमेजमियू। त इमी ना खास खास खबर केंजरे रुनी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA चिकित्सीय आऊँ चिकित्सकीय आऊँ शिक्षा तो दीरी दाखिला उथल जी आऊँ शुम मायरी शुजी नीट UG जुड़ा जार निजो त्री परीक्षा तो ही दू रद्द लेमी फैसला लेप जो। सोशल मीडिया पोस्टर एजेंसी को तो की भाई दी फैसला पढ़े जा कड़ू दू ही तो थल जे राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली री टीके की विश्वास ध्यान अरता जी लेप साइल जा। NTA कंज दो की सरकार पेपर लीक को आरोप पूरे जाँच थल जी मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI भी रंजन फैसला लेप दो। एजेंसी कुतो की भाई दोई CBI रसा दे पूरे सहयोग लव दो तो जाँच उथल जी जूशी बत्ते समान रिकॉर्डर मदद रम दो। NTA कुतो की परीक्षा उथल जी खर कोई तारीख शा दे अधिसूचित छो दो। त द सर्गो पार्टी छन खबर तो की भाई प्रदेशो मसला का दो तोग इफो सर्ग दिंग यार तोई जनजातीय जिला स्वालपी दी रंगी चो न दो टोई तोग मुंजे इफो फन फन मूक बजेगा। त मूक बजे पेपर मा दिलाकंग छन तापमान ढाशु झील जितो इल्जा इफो ध्याड़ा नि नाजा नाजा संदाय शरू बजे पिम वजई राज्य मस तापमान सामान्य नि जुड़ा नि 2 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज शुभिले गितो। त मौसम विज्ञान केंद्र तो छन कुल्लू मंडी शिमला सोलन ने सिरमौर जिलाऊ इफो ठारी दू तेज संजी लंद सादे संदा बजे पिमी शरू बजे पिमी ए आई दुरा लंडू।

अंदाड चालेपी मी ऑरेंज अलर्टल दुई जारी लतो ता ता हमीरपुर बिलासपुर कांगड़ाए उन्ना जिलंग और तिगा निन जानी निन जो 100 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार अनी तेज लन चालेपी मी संदाव येलो अलर्टल जारी लसी तदो दितो इमिना खास खास खबर केंदु थालजी त इफो गलगप्पा छना टीरो दानो पाठी नेत्रदान टीरोदान ले मानवतव सजे सेवा शुदी हेंज भत्तेज नेनी दीबी हेंज महादान लकुर्जन छरिकुजी हिंदू लासी टीरोदान रानी इच टीरे औं माताजा मी तो हेंज दिकोन की भई जिंदगी री हया दो जिंदगी री तो ध्या

जी साथी रे खाई नजारा मरगुल बजारा दिए गीतारा साधे तो किसोंगलो प्रोग्राम वक्त यो सैलजा लिपोगी इजाजत राम राम जुले।

0: लाहौली कार्यक्रम के साथ ही हमारे हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम यहीं संपन्न होते हैं। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। शाम के 7:05 होने वाले हैं। अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. India will host the BRICS Foreign Ministers meeting on the 14th and 15th of this month. The meeting will be chaired by External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar. Briefing media in New Delhi today, External Affairs Ministry spokesperson Vandhi Jaiswal said, during the meeting, the foreign

0: भाई, इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ हरी शर्मा।
1: और मैं हूँ हेमराज शर्मा।
0: हेमराज जी सुनाए, कैसे हैं आप?
1: हरी जी, मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए, आपके क्या हालचाल है?
0: हेमराज जी बिल्कुल बढ़िया है, और उम्मीद करते हैं कि जो हमारे किसान और बागवान भाई बहन हैं वो भी अच्छे से होंगे और अपने कृषि और बागवानी के जो कार्य है उसमें व्यस्त होंगे। आजकल देखिए काफी दिनों से जो है वर्षा का क्रम जो है चला हुआ है।
1: बिल्कुल जी, हम उम्मीद करते हैं कि इस बदलते हुए मौसम में हमारे किसान भाई अपना तो ध्यान रखेंगे ही, साथ में ख्याल रखेंगे अपने पशुधन का भी।
0: जी बिल्कुल,
1: हरी जी, देखिए कृषि जगत कार्यक्रम में क्या कुछ है इसके बारे में अगर बात करें तो काम की बातों के अंतर्गत हम बात करेंगे ग्रीष्मकालीन मूंग उत्पादन इस विषय के बारे में।
0: जी
1: उसके बाद पहाड़ी लोकगीत के माध्यम से मनोरंजन करेंगे किसान श्रोताओं का, और जानकारी पूर्ण बातचीत के तहत आज किसान भाइयों को जिस विषय के बारे में जानकारी दी जाएगी वह है प्रदेश में सजावटी पौधों का उत्पादन एवं संभावनाएं। डॉक्टर रंजन शर्मा से जानकारी हासिल करेगी रीता हंस, इसका पुनः प्रसारण हमारे किसान भाई सुनेंगे, और कार्यक्रम के अंत में बात करेंगे कल के मुख्य आकर्षणों के बारे में।
0: जी किसान भाई, शुरू करते हैं काम की बातों में। काम की बातों में आज जैसे कि हेमराज जी आपने बताया ग्रीष्मकालीन मूंग उत्पादन के बारे में, तो ग्रीष्म ऋतु में उगाई जाने वाली दलहनी फसलों में मूंग का विशेष महत्व माना गया है। शाकाहारी भोजन में मूंग की दाल प्रोटीन का प्रमुख स्रोत है। मूंग की दाल अपनी उत्कृष्ट पौष्टिकता के लिए संपूर्ण भारत में अति लोकप्रिय है। मूंग की दाल का छिलका दुधारू पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने में सहायक होता है, और मूंग का पौष्टिक भूसा भी जो है पशु को चारे के रूप में खिलाया जाता है।
1: बिल्कुल, और देखिए परंपरागत रूप से किसान भाई मूंग की फसल को मुख्य रूप से पानी की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में उगाते हैं, परंतु आजकल सिंचित क्षेत्रों में भी मूंग की खेती की जा रही है।
0: जी
1: अधिक नमी वाले क्षेत्रों में बीमारियों और कीड़ों के प्रकोप के कारण मूंग की अच्छी पैदावार नहीं मिलती। कम अवधि वाली मूंग की किस्मों का विकास होने से धान गेहूं फसल चक्र वाले क्षेत्रों में मूंग की ग्रीष्मकालीन फसल सफलतापूर्वक ली जा सकती है।
0: जी बिल्कुल किसान भाई, पिछले 8 से 10 वर्षों में मूंग की अनेक प्रजातियां जो है वो हमारे विज्ञान के द्वारा जो है विकसित की गई है। इनमें से अधिकांश प्रजातियां प्रमुख रोगों और कीटों के प्रति अवरोधी हैं। इसके अलावा ये शीघ्र पकने वाली फलियां, एक साथ पकने वाली तथा बड़े आकार के दानों वाली हैं। ये नवीनतम प्रजातियां अधिक उत्पादक भी हैं, और इनकी उत्पादन क्षमता जो है वो कुशल फसल प्रबंधन के अंतर्गत 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मानी जाती है, और ये प्रजातियां परंपरागत प्रजातियों की अपेक्षा जो है 15 से 20% तक अधिक उपज जो है हमारे किसान भाइयों को देती है।
1: बिल्कुल हरी जी, और देखिए खेत की तैयारी की अगर बात करें तो बुआई से पहले खेत अच्छी तरह से तैयार कर लेना चाहिए। खेत में उचित नमी होने पर ही बुआई करनी चाहिए। भुरभुरे बारीक और चूर्णिल खेत को मूंग की खेती के लिए अच्छा माना जाता है। खेत की 2-3 बार जुताई अवश्य करें, और प्रत्येक जुताई के बाद पाटा भी अवश्य लगाना चाहिए, जिससे भूमि की नमी जो है वो संरक्षित बनी रहती है। असिंचित वर्षा आधारित क्षेत्रों में खेतों की मेड़बंदी करके वर्षा के पानी को बहने से रोकना चाहिए, जिससे वर्षा का जल अधिकांश भाग मिट्टी अच्छी तरह से सोख लें, क्योंकि अधिकतर किसान वर्षा की नमी पर ही मूंग की बुआई करते हैं।
0: जी बिल्कुल, और किसान भाई हम बात करते हैं बीज की मात्रा की, तो बसंत कालीन यानी कि ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई के लिए 15 से 20 किलोग्राम मूंग प्रति हेक्टेयर जो है हमारा किसान भाई ले सकता है, जबकि खरीफ ऋतु की फसल के लिए 12 से 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर हमारे किसान भाइयों को लेना होता है। ग्रीष्मकालीन मूंग की पंक्तियों से पंक्तियों की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए, और वर्षा ऋतु की फसल में पौधों की अधिक बढ़वार को देखते हुए पंक्ति से पंक्ति की दूरी 50 सेंटीमीटर रखे, और पंक्तियों में पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर हमारा किसान भाई रख सकता है। बुआई हमेशा पंक्तियों में करनी चाहिए, जिससे फसल की निराई गुड़ाई जो है आसानी से की जा सके, और मूंग को मक्का गन्ना कपास के साथ जो है हमारा किसान भाई मिश्रित खेती के साथ उगाता है।
1: बिल्कुल हरी जी, और देखिए खाद और उर्वरक प्रबंधन की बात करें तो खेत की मिट्टी की जाँच के बाद ही खाद और उर्वरक की मात्रा सुनिश्चित की जानी चाहिए। मूंग की फसल के लिए नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटाश की संपूर्ण मात्रा बुआई के समय प्रयोग करनी चाहिए। जैविक उर्वरक के प्रयोग द्वारा मूंग की पैदावार में 15 से 20% तक की बढ़ोतरी की जा सकती है। जीवाणु उर्वरक सस्ते और आसानी से उपलब्ध हैं तथा इनका प्रयोग भी सुगम होता है। फास्फोरस जड़ों के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। बारानी व कम पानी वाले क्षेत्रों में फास्फोरस का प्रयोग करने से पौधों की जड़ें गहराई तक जाती है, जिससे पौधे गहराई से पानी और पोषक तत्वों का अवशोषण कर सकते हैं। मूंग की खेती में उत्पादन लागत कम करने के लिए फॉस्फेट घुलनशील जीवाणु का भी प्रयोग करना चाहिए, जिससे मिट्टी में उपस्थित अघुलनशील फास्फोरस की उपलब्धता को बढ़ाया जा सकता है, और इसके लिए PSB का 500 ग्राम का 1 पैकेट प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है।
0: जी हेमराज जी, बात करते हैं सिंचाई प्रबंधन के बारे में। मूंग की फसल में पानी की कम आवश्यकता होती है। वर्षा ऋतु में यदि लंबे समय तक वर्षा न हो तो अच्छी पैदावार लेने के लिए हल्की सिंचाई हमारा किसान भाई कर सकता है। अनावश्यक रूप से सिंचाई करने पर पौधों की

0: वानस्पतिक वृद्धि जो है वो ज्यादा हो जाती है और जिसका उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सिंचाई आवश्यकता अनुसार व हल्की ही हमारा किसान भाई करे और ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल की अच्छी वृद्धि व विकास के लिए 3 से 4 सिंचाइयां आवश्यक होती है। खरीफ की फसल में भरपूर पैदावार हेतु जल निकास की उचित व्यवस्था हमारे किसान भाइयों को करनी होती है, अन्यथा फसल के मरने की जो है वो शंका बनी रहती है।
1: बिल्कुल हरी जी, और देखिए अब बात आती है खरपतवार नियंत्रण की। तो देखिए ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल में खरपतवारों की कोई विशेष समस्या नहीं रहती है, परंतु खरीफ ऋतु की फसल में खरपतवारों का अधिक प्रकोप होता है और फसल की वृद्धि के साथ कई प्रकार के चौड़ी व संकरी पत्तियों वाले खरपतवार उग जाते हैं जो फसल को दिए गए पोषक तत्वों व पानी का अवशोषण करते रहते हैं, जिससे मूंग की पैदावार और गुणवत्ता में कमी आ जाती है।
0: जी
1: इस प्रकार किसानों को अपनी फसल का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता है और बुआई के प्रथम 20 से 25 दिनों में खरपतवार फसल में ज्यादा स्पर्धा करते हैं, इसलिए बुआई के 15-20 दिनों के अंदर कसोले से निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए।
0: किसान भैया, अब बात करते हैं सह फसली खेती के बारे में। तो मूंग अल्प अवधि वाली फसल है और इसकी बढ़वार बहुत तेजी से होती है। ऐसी स्थिति में मूंग की फसल को अन्य फसलों के साथ सह फसल के रूप में उगाना लाभदायक माना गया है। देश के कई भागों में मूंग को कपास, गन्ना, अरहर व मक्का के साथ जो है वो हमारा किसान भाई उगाता है और ऐसा करने से किसानों को मुख्य फसल के रूप में अतिरिक्त आय भी मिल जाती है। साथ ही सह फसली खेती में मुख्य फसल की पैदावार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता।
1: बिल्कुल, और इसके बाद हम बात करते हैं मूंग की फसल में कोई कीट वगैरह लग जाए तो उनका नियंत्रण हमारे किसान भाइयों ने किस तरह से करना है। देखिए किसान भाइयों, मूंग की फसल में लगने वाले कीटों में थ्रिप्स, श्वेत मक्खी व जैसिड प्रमुख है। इन कीटों से फसल को बचाने के लिए मेटास्टिटॉक्स या मोनोक्रोटोफॉस 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर फली बनने से पहले छिड़काव किया जा सकता है। मूंग की फसल में लगने वाले प्रमुख रोगों में पीला मोजेक, मूल गलन, सर्कोस्पोरा व पर्ण धब्बे होता है। पीला मोजेक से रोगग्रस्त पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए। रोगों से बचाव करने के लिए मूंग की रोगरोधी किस्मों को उगाना चाहिए।
0: हम ये बात करते हैं कटाई और मुड़ाई की। तो जब फसल जो है 80% से अधिक फलियां पक जाए तो फसल की कटाई हमारा किसान भाई कर सकता है और ज्यादा देर से कटाई करने पर फलियों से दाने झड़ने की जो है वो आशंका बनी रहती है। इसलिए इसमें रहते हमारा किसान जो है इसकी कटाई कर ले और मूंग की नई किस्में ज्यादातर एक साथ पक जाती है, जिससे संपूर्ण फसल की कटाई एक साथ हमारा किसान भाई कर सकता है।
1: बिल्कुल हरी जी, उपज की बात करें तो यदि किसान भाई बताई गई सभी बातों का ध्यान रखे और मूंग की वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी को अपनाते हुए खेती करें तो एक अच्छी पैदावार हमारे किसान भाई मूंग की ले सकते हैं।
0: जी, तो किसान भाई ये तो इस जानकारी ग्रीष्मकालीन मूंग के उत्पादन के बारे में। हेमराज जी, अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनाते हैं किसान और बागवान भाई बहनों को राजेश टेम्टा की आवाज में ये लोकगीत।

0: किसान भाइयों, अभी आपने सुना ये लोकगीत। तो लोकगीत के बाद अब समय आ गया है कि आपको एक जानकारी पूर्ण बातचीत सुनाई जाए। जानकारी पूर्ण बातचीत का विषय है प्रदेश में सजावटी पौधों का उत्पादन एवं संभावनाएं। डॉक्टर रंजन शर्मा से जानकारी हासिल कर रही है रीता हंस। तो आइए सुनते हैं इसका पुनः प्रसारण।
1: कृषि जगत के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। किसान भाइयों, आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर रंजन शर्मा। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। देखिए, और आज का विषय जो है वो है प्रदेश में सजावटी पौधों का उत्पादन एवं व्यावसायिक संभावनाएं। जी श्रोताओं, जहाँ बात आती है सजावट की तो मन खुश हो जाता है, और सजावट चाहे घर की हो, दफ्तर की हो, या फिर किसी भी समारोह की। फूलों को लेकर के बात आती है मन में तो मन खुश हो जाता है। जितने भी पूजा पाठ के काम है या फिर शादी विवाह के जो भी काम है, वहां पर फूलों की जरूरत अक्सर पड़ती है। इन्हें देख करके मन भी खुश हो जाता है। तो श्रोताओं, इसी विषय पर आज आपको जानकारी देने जा रहे हैं, प्रदेश में सजावटी पौधों का उत्पादन एवं व्यावसायिक संभावनाएं। और शुरुआत करते हैं, डॉक्टर साहब आपका स्टूडियो में एक बार फिर से स्वागत है। आपसे प्रश्न पूछना

0: चाहूंगी, प्रदेश में पुष्प उत्पादन की क्या स्थिति है तथा प्रदेश में अभी तक किस तरह का पुष्प उत्पादन किया जा रहा है इस बारे में।
1: सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद रीटा जी।
0: जी,
1: जैसा कि आपने हमने बात की कि पुष्प उत्पादन की, तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि हमारे पुष्प उत्पादन हिमाचल प्रदेश में है। अगर हम बात करें 1993-94 के दशक में, ये जो उत्पादन है लगभग 25 हेक्टेयर क्षेत्र में किया जा रहा था।
0: जी,
1: और आज उत्पादन हिमाचल प्रदेश में लगभग 629 हेक्टेयर तक पहुँच गया है।
0: जी,
1: क्योंकि हमारे प्रदेश में विविध जलवायु वाला प्रदेश है, क्योंकि समुद्र तल से अगर ऊंचाई देखें तो 365 मीटर की ऊंचाई से लेकर 3656 मीटर तक की ऊंचाई के क्षेत्र हमारे प्रदेश में पाए जाते हैं। और यही कारण है कि हमारे जो प्रदेश में विभिन्न तरह के पौधे जो है वो उगाए जा सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि 1993-94 में 25 हेक्टेयर क्षेत्र से हमारा पुष्प उत्पादन प्रारंभ हुआ था। और पर अभी भी जो पुष्प उत्पादन हो रहा है हमारे प्रदेश में, वो ज़्यादातर जो है कट फ्लावर्स या खुले जो पुष्प होते हैं, लूज फ्लावर्स
0: जी
1: है ना, उनके लिए उनका उत्पादन हो रहा है।
0: जी
1: उसमें जैसे कट फ्लावर में आपने देखा होगा मार्केट में गुलदाउदी है, गेंदा, कार्नेशन, गुलाब, ग्लैडलस और लिलियम, इस तरह के पुष्प जो हैं
0: जी
1: वो उगाए जा रहे हैं और यहाँ से प्रदेश से बाहर की मंडियों में उन्हें बेचा जा रहा है।
0: जी
1: पर जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है सजावटी पुष्प उत्पादन, तो इसका उत्पादन जो है अभी काफी कम मात्रा में लगभग 50 हेक्टेयर क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में हो रहा है।
0: जी
1: और यह उत्पादन भी ज्यादातर कांगड़ा, कुल्लू, शिमला जिले में हो रहा है।
0: जी और एक और प्रश्न है डॉक्टर साहब हमारे मन में, कि सजावटी पौधों से क्या अभिप्राय है तथा इसके विभिन्न श्रेणियां कौन कौन सी हैं?
1: जी हाँ, ये बहुत ही आवश्यक है कि हमें जानना कि सजावटी पौधे हैं क्या, क्योंकि मैंने आपको कहा कि हमारा जो उत्पादन प्रदेश में हो रहा है वो कट फ्लावर और लूज फ्लावर के लिए हो रहा है।
0: जी जी
1: अब सजावटी पौधे हमारे उस तरह के पौधे हुए कि जिन्हें हम अपने घरों में या ऑफिस में
0: जी
1: या फैक्ट्रियों में या परिसरों में,
0: जी
1: जो
0: जी
1: जितने भी हमारे संस्थान है उनके परिसर है,
0: जी जी
1: या गार्डन्स में, वहां पर जो भी हम पुष्प या पौधे लगाते हैं, जैसे खासकर हम गमलीय पौधे लगाते हैं
0: हाँ
1: जो
0: जी
1: गमलों में लगाते
0: जी जी
1: हैं, या फिर अगर लैंडस्केपिंग की बात करें, भूदृश्य निर्माण की बात करें, तो ये वो पौधे हैं जो हम जमीन में लगाते हैं, है ना। कुछ सीजनल पौधे हैं जो हम एक मौसमी पौधे जिनको कहते हैं, वो इस तरह के पौधे जो भी हैं, जो भी सजावट में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, वो सारे के सारे हमारे सजावटी पौधों में आते हैं। और इसमें जैसे श्रेणियों की बात की, ये जानना बहुत ही आवश्यक है जो इस व्यवसाय से जुड़ेगा युवक या युवती, इसमें विभिन्न श्रेणियां क्या होती हैं। श्रेणियों में जैसे हम बात करें तो झाड़ीनुमा पौधे हैं
0: जी
1: या श्रब्स हैं, उस तरह के पौधे हुए जिनकी ऊंचाई लगभग जो है वो 2 फुट से 3 फीट के बीच में
0: जी
1: रहती है। फिर इसके बाद कुछ हमारे सदाबहार शाकीय पौधे या फिर एवरग्रीन हर्बेशियस प्लांट्स जिनको बोलते हैं,
0: जी जी
1: ये छोटे पौधे होते हैं और क्यारियों में लगाए जा सकते हैं।
0: जी
1: फिर हमारे कुछ बल्बस पौधे या कंद वाले पौधे
0: हाँ जी
1: है ना, जैसे डेफोडिल्स हैं, टियम हैं, तो ये हो गए। फिर सीजनल पौधे या मौसमी पौधे जैसे होते हैं, तो मौसमी पौधे ऐसे हुए कि जो एक मौसम में लगते हैं उसके बाद खत्म हो जाते हैं, फिर हमें दोबारा से दूसरे मौसम में लगाने पड़ते हैं।
0: जी
1: और कुछ सजावटी पौधे ऐसे हैं जो वृक्ष हैं,
0: जी
1: उनको भी हम सजावट के लिए इस्तेमाल करते हैं।
0: जी
1: तो
0: डॉक्टर साहब प्रश्न है कि सब लोगों के मन में होता है कि हम फूल लगाएं, तो
1: जी
0: क्या आप बता सकते हैं कि इन दिनों हमारे किसान भाई या फिर हम लोग आम लोग जो हैं अपने गमलों में या फिर अपने क्यारियों में किस तरह के पौधे लगा सकते हैं?
1: जी जी बिल्कुल, इसमें ऐसा है कि जैसे मैंने अभी बात की आपको कि सजावटी पौधों में हमारे कुछ मौसमी पौधे होते हैं
0: जी
1: या सीजनल प्लांट्स हैं, तो सीजनल प्लांट्स में कुछ ऐसे पौधे हैं, तो उसमें हमारे जैसे गेंदा है,
0: जी
1: वो आजकल हम काफी जो है वो क्यारियों में भी लगाते हैं
0: जी
1: और गमलों में भी लगाते हैं।
0: जी
1: तो इसके अलावा हमारे फिर गॉम्फ्रीना है, साल्विया है, तो इस तरह के पुष्प की हमारी नर्सरी जो है वो नर्सरी हमें लगभग आप मई जून में हमें लगानी पड़ती, ताकि वो पौध तैयार होके फिर हम उसको गमले में लगा लें या फिर क्यारियों में लगा लें।
0: जी तो
1: जी
0: डॉक्टर साहब ये जो है सीजनल प्लांट जैसे आपने बात कही है, जो सीजन होता है उसी समय ये पौधे आते हैं या फिर बीच बीच में कभी आते भी रहते हैं, जैसे प्रागण होता है और वो उसके
1: बीज
0: बीज गिर जाते हैं, तो
1: जी
0: क्या
1: जी
0: ये अपने आप ही होते रहते हैं?
1: कि तभी मैंने श्रेणियों की बात की,
0: जी
1: इसमें
0: जी हाँ जी
1: श्रेणियों की बात इसलिए की कि हमारे जो खास, जैसे आपने कहा कि बीज जो गिर जाते हैं,
0: जी
1: तो ज्यादातर जो मौसमी पौधे हैं वो क्या होता है, उनका उनका एक समय होता है जैसे 2 या 3, 3-4 महीने का,
0: जी जी
1: जिसमें वो पुष्प खिलते हैं, उसके बाद उनके बीज जो है वो अपने आप गिर जाते हैं,
0: जी
1: या फिर हमें कलेक्ट करने पड़ते हैं, उसमें से बीज निकालते हैं, हम उसको दोबारा से रख लेते हैं, और जब समय आता है
0: जी
1: जैसे नेक्स्ट जो है मई जून आएगा,
0: हाँ
1: तो
0: जी
1: फिर हम उन्हें क्यारियों में लगा के उसका रोपण करेंगे।
0: जी
1: पर इसके अलावा कई पुष्प ऐसे हैं जो सदाबहार हैं,
0: हाँ जी
1: है ना, तो
0: जी
1: उसमें हम बार बार उनको रोपित नहीं करते, एक बार ही लगा के छोड़ देते हैं, और उसमें जब भी मौसम में गर्माहट आती है, ज्यादातर बसंत ऋतु में हमारे
0: जी
1: पुष्प
0: जी
1: खिलते हैं, तो वो गर्माहट के समय पुष्प उसमें आए।

0: उसके बाद पुष्प झड़ जाएंगे, जो हमारा पौधा है वो सदाबहार रहेगा। जी
1: जी, इसके अलावा डॉक्टर साहब हम आपसे और भी जानना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से सजावटी पौधों का उत्पादन किया जा सकता है
0: जी सर
1: जिनकी मांग प्रदेश और प्रदेश से बाहर भी रहती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: प्रदेश में सजावटी पौधों की क्या व्यावसायिक संभावनाएं हैं?
0: जी बिल्कुल, यही जो बात है, ये हमने प्रश्न जो आपने किया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न
1: जी
0: है, क्योंकि हम जैसे बात करेंगे कट फ्लावर और लूज फ्लावर प्रोडक्शन तो हमारा हो ही रहा है,
1: जी जी
0: जैसे व्यावसायिक संभावनाओं की बात की तो अगर हम देखें हिमाचल प्रदेश में शहरीकरण जो है वो बहुत अधिक बड़ा है,
1: जी
0: और बहुमंजिलिया इमारतें अगर देखें उनका निर्माण भी काफ़ी अधिक हो रहा है।
1: जी
0: हिमाचल क्योंकि ये पर्यटक राज्य है और
1: जी
0: हमने देखा है कि कुछ वर्षों में यहाँ पर होटलों की, रिजॉर्टों की संख्या उसमें भी काफ़ी अधिक वृद्धि हुई है, फैक्ट्रियाँ और कुछ शिक्षण संस्थान भी यहाँ पर काफ़ी अधिक बड़े हैं।
1: जी
0: तो मैं इन सब की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जैसे जैसे ये हमारा शहरीकरण बढ़ रहा है या
1: जी
0: इंडस्ट्रीज लग रही है तो सजावटी पुष्पों की मांग जो है इन सबसे काफ़ी अधिक बड़ी है,
1: जी
0: और अभी तक जो ये हमारे पॉटेड प्लांट्स हैं या सजावटी पौधे जैसे हमारे गमलों में या फिर क्यारियों में जो हम लगा रहे हैं तो इसका जो उत्पादन है वो प्रदेश से बाहर की नर्सरियों से मंगाकर जो है यहाँ पर आपूर्ति करवाई जा रही है।
1: जी जी
0: अगर हम देखें तो पिछले कुछ दशकों में कुछ ऐसे बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाज हैं या कंपनीज हैं उन्होंने तो अपने अगर परिसर की बात करें
1: हाँ
0: तो
1: जी
0: खास तौर पे कुछ एम्प्लॉयज़ उन्होंने ऐसे रखे हैं
1: जी
0: जो सिर्फ सजावटी पौधों का ही देख रेख कर रहे हैं,
1: जी
0: काफ़ी मालियों को उन्होंने लगा रखा है,
1: जी
0: और हमारे जो कुछ छोटे होटल्स हैं कुछ लोगों ने भी ऐसा किया है कि वो नर्सरियों से पुष्प खरीदते हैं और
1: जी
0: साल भर का उन्होंने कई बार एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी बना रखा
1: हाँ
0: है,
1: जी हाँ जी
0: वार्षिक अनुबंध भी बना रखा है जिसमें कि वो विभिन्न विभिन्न तरह के पुष्प जो है वो गमले उन
1: जी
0: घरों में लेके आते हैं या
1: जी
0: होटलों में
1: जी
0: दे के
1: हाँ
0: आते
1: जी
0: हैं, फिर दोबारा वहाँ से अगर वो ख़राब हो जाते हैं या उसमें कुछ गमलों को चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है तो वो करते हैं और एनुअल जो है वो पेमेंट उसकी करते रहते हैं।
1: जी जी
0: तो इस तरह से जो हमारे प्रदेश में सजावटी पौधों का जो है बहुत ही व्यावसायिक रूप में संभावनाएं हैं, और
1: जी
0: साथ में एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, जैसे प्रदेश में कुछ इस तरह के पुष्प है क्योंकि हमारा जो प्रदेश है वो समशीतोष्ण प्रदेश है,
1: हाँ जी
0: टेम्परेट रीजन है,
1: जी
0: खासकर जो हमारे मध्य पर्वतीय क्षेत्र या ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र हैं, और यहाँ पर जो है कुछ इस तरह के पुष्प खिलते हैं जो कि टेम्परेट रीजन में ही खिलते हैं,
1: जी
0: जैसे टेम्परेट रीजन हमारा जम्मू कश्मीर भी है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, या फिर सिक्किम अरुणाचल प्रदेश जो क्षेत्र हैं
1: जी
0: राज्य हैं वहीं पर ये इस तरह के पुष्प खिलते हैं, पर जो यहाँ पे पुष्प उगाए जा सकते हैं गमलीय पुष्प उगाए जा सकते हैं इनकी मांग जो है हमारी मैदानी जो क्षेत्र हैं
1: जी
0: नॉर्दर्न प्लेन्स के इंडिया के वहाँ पर रहती है, और यहाँ पर उगाकर हमारे जो पुष्प उत्पादक हैं ये उसे मैदानी क्षेत्र में सेल कर सकते हैं।
1: जी
0: तो बहुत ही व्यावसायिक तौर पे देखे जाए
1: जी
0: तो बहुत ही हमारे यहाँ पे क्षमता भी है और आवश्यकता भी है, तो
1: जी
0: हमारे जो बेरोजगार युवक युवतियाँ हैं यहाँ
1: जी
0: पर वो इस व्यवसाय को अपना कर जो है और ना केवल अपनी आजीविका
1: जी
0: अपने साथ जो है कई लोगों को इसमें रोजगार भी दे
1: जी
0: सकते हैं। जो हमारा सजावटी पुष्प है इसमें हर श्रेणी की मैंने आपको बात की थी तो हर श्रेणी के बारे में ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बिना ज्ञान से सजावटी पुष्पों का खास तौर पे हम उत्पादन नहीं प्रारंभ कर सकते।
1: जी डॉक्टर साहब,
0: जी
1: बहुत अच्छा आपने ये कहा कि हमारे जो बेरोजगार युवक युवतियां हैं उनके लिए भी एक ये व्यवसाय का साधन बन जाएगा।
0: जी
1: और इसके अलावा डॉक्टर साहब बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से सजावटी पौधों का उत्पादन किया जा सकता है और जिनकी मांग प्रदेश और प्रदेश के बाहर भी रहती है?
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये जानना मैंने कहा कि श्रेणियां हमें पता होना चाहिए तो बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले जैसे सजावटी पौधों की हम बात करते हैं तो सजावटी पौधों में हमारा ध्यान भी आता है कि हमारे गमले वाले पौधे, ये पौधे जिनको
1: जी जी
0: बोलते हैं, गमलीय पौधों की भी अगर हम बात करें तो इसकी भी फर्दर आगे दो और श्रेणियां हो जाती हैं, जैसे ऐसे पौधे गमलीय पौधे जिसमें पुष्प खिलते हैं, ऐसे गमलीय पौधे जो सिर्फ सजावट के लिए उनके पत्ते इतने सुंदर होते हैं तो
1: जी
0: फॉलिएज प्लांट्स उसको बोलते हैं, सजावट के लिए इस्तेमाल किए जा सकते। तो रीटा जी पहले मैं ये बताऊंगा आपको कि हमारे जो फ्लावरिंग पॉटेड प्लांट्स
1: जी
0: वो कौन कौन से हैं जो हम हमारे समशीतोष्ण क्षेत्र उगाकर जिनकी मांग जो है मैदानी क्षेत्रों में रहती है, तो जैसे कि साइक्लेमेन है, प्लारगोनियम है, फूशिया, हाइड्रेंजिया, ट्यूबरोज बिगोनिया, प्रिमुला स्पीशीज, कैल्सियोलेरिया, तो ये इस तरह के पुष्प हैं जो
1: जी
0: हम मध्य पर्वतीय क्षेत्र और ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में उगाकर और हमारे डोमेस्टिक जो यहाँ की डिमांड है उसको भी पूरा कर सकते
1: हाँ
0: हैं और मैदानी क्षेत्रों में भी इन्हें बेच सकते हैं। इसके अलावा जो है हमारे जो मैदानी

0: क्षेत्र है या सब ट्रॉपिकल जो रीजन है प्रदेश के,
1: जी
0: उसमें हम पॉइंसेटिया, यूफोर्बिया, कलेंचू, स्पैथिफाइलम, मिनी जर्बेरा, इम्पेशंस, मिनी रोजेस, पॉटेड बुगेनिया, विंका और क्लेरोडेंड्रॉन, इस तरह के पुष्प अगर हम लगाएंगे तो
1: जी
0: इनकी मांग प्रदेश में भी रहती है और प्रदेश से बाहर भी रहती है। तो ये तो वो पौधे थे जिनमें कि पुष्प खिलते हैं पॉटेड। इसके अलावा जैसे सजावटी पौधों की पत्तों की बात करें तो उसमें रेक्स बिगोनिया, पेपरोमिया कैपराटा और कुछ रसदार पौधे हैं जैसे सकुलेंट्स कहते हैं उनको, डम्स, रॉक रोज, क्रेसुला, एओनियम, इस तरह के पौधे जो हैं हम गमलों में लगा सकते हैं। गमलों के अलावा अगर हम बात करें तो गमलीय पौधों के अलावा जैसे मैंने भूदृश्य निर्माण की बात की थी
1: हाँ
0: या
1: जी
0: लैंडस्केपिंग की बात की थी, क्योंकि
1: जी
0: आजकल हमने देखा है कि हर कोई अपने घर को सजाना चाहता है, घर के आगे लॉन भी लगाना
1: हाँ
0: चाहता
1: जी
0: है,
1: हाँ जी
0: क्यारियों में पौधे लगाना चाहता है, तो उसमें जो भी पुष्प हमारे सजावटी पुष्प लगते हैं उसकी मांग भी काफ़ी अधिक रहती है। जैसे अगर हम झाड़ीनुमा पौधों की बात करें तो प्रीविट है, यूनाइमस, जुट्जिया, दुरांटा, स्पाइरिया, इस तरह की झाड़ियां हैं जिनकी मांग हमारे प्रदेश में रहती है
1: जी
0: और लैंडस्केपिंग में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कुछ वृक्ष हैं जैसे जूनिपर्स हैं, थूजा, मैग्नोलिया, सेलिक्स, लबर्नम, ये इस तरह के वृक्ष हैं जो हम लॉन के आसपास लगा सकते हैं।
1: जी तो डॉक्टर साहब, ये भी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से सजावटी पौधे लगा सकते हैं और प्रदेश के बाहर भी इनकी मांग रहती है। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी बेहतर जानकारी दी प्रदेश में सजावटी पौधों का उत्पादन एवं व्यावसायिक संभावनाएं इस विषय पर। इस सब जानकारी के लिए डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद जी।
2: किसान भाई, अभी आपने एक महत्वपूर्ण जानकारी सुनी, प्रदेश में सजावटी पौधों का उत्पादन एवं संभावनाएं। और फिर से कार्यक्रम में बारी है एक और लोकगीत की, तो आइए सुनते हैं बिमला देवी की आवाज में ये लोकगीत।

0: किसान भाइयों, अभी आपने सुना ये लोकगीत। तो लोकगीत के बाद हरी जी अब चलते चलते बात कर लेते हैं कल कृषि जगत कार्यक्रम में क्या कुछ रहेगा इसके बारे में। कल काम की बातों के अंतर्गत बात की जाएगी गर्मियों में हरे चारे की बिजाई हमारे किसान भाइयों ने किस तरह से करनी है इसके बारे में
1: जी।
0: पहाड़ी लोकगीत के माध्यम से मनोरंजन करेंगे और एक जानकारीपूर्ण बातचीत भी सुनाई जाएगी जिसका विषय रहेगा दुधारू पशुओं के प्रमुख रोग व उपचार।
1: जी तो अब तो देखिए कार्यक्रम का समय भी संपन्न होने को है और सभी किसान और बागवान भाई बहनों से अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।
0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता दीपक कुमार।
2: अभी आप सुन रहे थे कृषि जगत कार्यक्रम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप जुड़े हैं आकाशवाणी FM शिमला के साथ। हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:45 होने वाले हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला 103.7 MHz पर भी सुना जा सकता है। ये समाचार DTS सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध रहेंगे।
1: हो गया इंतजाम।
2: किसका?
1: गुड्डी की फीस का।
2: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
3: RBI कहता है,
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, मुख्यमंत्री ने छोटे सेब उत्पादकों के लिए MIS के तहत 20 करोड़ रुपए जारी करने और चतुर्थ श्रेणी पेंशनर

करों के बकाया बिलों का जल्द भुगतान करने के दिए निर्देश। राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने शिमला में तंबाकू मुक्त हिमाचल अभियान का किया शुभारंभ। समाज में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति से निपटने के लिए युवाओं को जागरूक करने पर दिया बल। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा, विधान मंडलों के कार्य संचालन व प्रक्रिया नियमों में समानता लाने में लोकसभा के प्रयास सराहनीय। भाजपा ने नगर निगम चुनावों के लिए जारी किए संकल्प पत्र। कांग्रेस ने सोलन नगर निगम के लिए घोषणा पत्र किया जारी। और भारी बर्फबारी के कारण बंद चंबा किलाड़ वाया साच पास मार्ग और मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए बहाल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सेब उत्पादकों के लंबित बिलों के भुगतान के लिए मंडी मध्यस्थता योजना के तहत 20 करोड़ रुपए जारी करने के निर्देश दिए हैं। वे आज शिमला में एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस वर्ष 15 अप्रैल को की गई घोषणा के अनुसार सभी विभागों के चतुर्थ श्रेणी पेंशनरों के बकाया एरियर का भुगतान करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्त और सेवा में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों का भी शीघ्र निपटान किया जाए। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी देनदारियों का निपटारा 4 दिनों के भीतर करने और इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि रेजिलिएंट एक्शन फॉर डेवलपमेंट एंड डिजास्टर रिकवरी हिमाचल प्रदेश परियोजना प्रदेश में आपदा प्रबंधन क्षमता को सुदृढ़ करने और प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने में प्रभावी व दूरदर्शी पहल सिद्ध होगी। शिमला में आज परियोजना की प्रगति व क्रियान्वयन को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2,687 करोड़ की लागत की इस परियोजना का मुख्य देश आपदा प्रभावित बुनियादी ढांचे की पुनर्स्थापना करना है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किसानों व बागवानों के लिए मजबूत सुविधाएं और ढांचा तैयार करने की आवश्यकता पर भी बल दिया ताकि प्राकृतिक आपदाओं के समय उनकी फसल और आजीविका सुरक्षित रह सके। इस बीच मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को राज्य के लिए 31 मई तक पोषण नीति तैयार करने के निर्देश दिए हैं। शिमला में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि फिट हिमाचल के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लोगों को पोषण युक्त भोजन के महत्व के बारे में जागरूक करना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि व्यापक पोषण नीति तैयार करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने आज शिमला स्थित लोकभवन में यूथ फॉर वॉलंटरी एक्शन इन हिमाचल द्वारा आयोजित तंबाकू मुक्त हिमाचल अभियान का शुभारंभ किया। ये अभियान प्रदेश के सभी 12 जिलों में चलाया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं और आम लोगों को तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक कर नशा मुक्त व स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। इस दौरान यूथ फॉर वॉलंटरी एक्शन इन हिमाचल के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को संगठन द्वारा चलाए जा रहे मिशन यूथ फॉर राइज नो टू ड्रग्स यस टू पैशन की विस्तृत जानकारी दी। इस मिशन के अंतर्गत तंबाकू मुक्त हिमाचल अभियान को सक्रिय रूप से संचालित किया जा रहा है। राज्यपाल ने संगठन की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि समाज में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए युवाओं में जागरूकता अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ और जिम्मेदार समाज के निर्माण में युवाओं की सक्रिय भागीदारी व सामूहिक सामाजिक प्रयास महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस बीच राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक हिमाचल प्रदेश के मुख्य महाप्रबंधक विवेक पठानिया और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी आज लोकभवन में राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट की। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में ग्रामीण विकास को गति प्रदान करने और कृषि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में नाबार्ड की महत्वपूर्ण भूमिका है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि कार्य संचालन और प्रक्रिया नियम हर विधानसभा की रीढ़ होते हैं और ये नियम सदन के कामकाज को नियंत्रित करने, अनुशासन बनाए रखने व लोकतांत्रिक जिम्मेदारियों को प्रभावी ढंग से निभाने में मदद करते हैं। कर्नाटक विधानसभा द्वारा मैसूर में आयोजित राज्यों के पीठासीन अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि विधान मंडलों के कार्य संचालन और प्रक्रिया नियमों में राष्ट्र स्तर पर समानता लाने के लोकसभा के प्रयास सराहनीय हैं। उन्होंने कहा कि एक समान मॉडल विधायी कामकाज की कार्यक्षमता को बेहतर बना सकता है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रचलित कार्य संचालन पद्धति व नियमावली का विस्तृत विवरण भी दिया। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे

0: बुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश भाजपा ने नगर निगमों सोलन, पालमपुर व धर्मशाला में आगामी 17 मई को होने वाले चुनाव के लिए आज अपना संकल्प पत्र जारी किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने सोलन नगर निगम चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि सोलन को प्रदेश का सबसे स्वच्छ, सुरक्षित, हरित और स्मार्ट शहर बनाया जाएगा। उधर भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने धर्मशाला नगर निगम चुनावों के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी धर्मशाला को आधुनिक, सुव्यवस्थित, पर्यावरण अनुकूल और विश्व स्तरीय पर्यटन शहर के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा तैयार किया गया ये संकल्प पत्र केवल चुनावी घोषणा पत्र नहीं बल्कि धर्मशाला के भविष्य का विजन डॉक्यूमेंट है। सुधीर शर्मा ने कहा कि ये संकल्प पत्र शहर की वर्तमान आवश्यकताओं और भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है।
1: नगर निगम के सामूहिक विकास की दृष्टि से पार्टी ने जो संकल्प पत्र तैयार किया है, ये संकल्प पत्र पूरे नगर निगम को एक दृष्टि में रखते हुए तैयार किया गया है। शपथ पत्र में मुख्यतः जो भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में नगर निगम धर्मशाला को विकसित करने के लिए मूलभूत सुविधाओं में सुधार लाने के लिए विचार रखती है।
0: भाजपा सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज और प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष विपिन परमार ने नगर निगम पालमपुर के चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। उन्होंने कहा कि ये संकल्प पत्र पालमपुर के समग्र विकास का रोड मैप है। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने भी सोलन नगर निगम चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। नगर निगम चुनाव प्रभारी व उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल की उपस्थिति में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सोलन शहर का सर्वांगीण विकास उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि शहर में पानी की समस्या का जल्द निपटारा किया जाएगा और शहर को 100% सीवरेज लाइन से जोड़ा जाएगा।
2: पिछले सवा तीन साल में जब से कांग्रेस की सरकार आई है, सोलन की जो वाटर सप्लाई स्कीम है उसको डिस्ट्रीब्यूशन में क्योंकि दिक्कत थी, लगभग 12 से 13 करोड़ रुपए जो है वो अलग अलग वार्ड्स में डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस को ठीक करने के लिए खर्च किया गया है। हमारी कोशिश ये भी है कि हर वार्ड में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम डेवलप किया जाए, स्थानीय जल स्रोतों का संरक्षण किया जाए।
0: इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी मौजूद रहे। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों से जनता पूरी तरह त्रस्त है। पालमपुर में आज नगर निकाय चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 2022 के विधानसभा चुनाव में जनता से झूठे वायदे किए, लेकिन महिलाओं को 1500 रुपये और युवाओं को रोजगार की झूठी गारंटियों ने कांग्रेस का असली चेहरा बेनकाब कर दिया है। डॉक्टर सिकंदर कुमार ने कहा कि पूरे प्रदेश विशेषकर पालमपुर में भाजपा के पक्ष में जबरदस्त माहौल है और हिमाचल की जनता अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व के साथ चलने का मन बना चुकी है। उन्होंने नगर निकाय चुनावों में भाजपा की जीत का दावा भी किया। सर्दियों के मौसम में भारी बर्फबारी के कारण बंद चंबा किलाड़ वाया साच पास मार्ग को लोक निर्माण विभाग ने छोटे वाहनों की आवाजाही के लिए खोल दिया है। करीब 14,500 फुट की ऊंचाई से गुजरने वाले इस मार्ग के खुलने से पांगी घाटी के लोगों को बड़ी राहत मिली है और वाहनों की आवाजाही आरंभ होने से घाटी का संपर्क जिला मुख्यालय से जुड़ गया है। जिला उपायुक्त मुकेश रेपसवाल ने साच पास मार्ग को रिकॉर्ड समय में बहाल करने के लिए लोक निर्माण विभाग की सराहना की है। उपायुक्त ने बताया कि इस मार्ग के खुलने से चुनाव संबंधी सामग्री पांगी घाटी तक पहुंचाने में भी आसानी होगी। उधर मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को भी आधिकारिक रूप से यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है। भारी बर्फबारी के चलते कठिन परिस्थितियों के बावजूद प्रोजेक्ट हिमांक की स्नो क्लियरेंस टीम ने सड़क संपर्क बहाल करने की उपलब्धि हासिल की है। इस मौके पर 38 कोर टास्क फोर्स के कमांडर कर्नल गौरव बंगारी, ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट कर्नल तेजस मोरे और कैप्टन साजय कृष्णा भी मौजूद रहे। सीमा सड़क संगठन की टीमों द्वारा बर्फ हटाने का कार्य 16 मार्च से शुरू किया गया था और शून्य से नीचे तापमान व हिमस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों में लगातार काम करते हुए इस मार्ग को यातायात के लिए बहाल किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने छोटे सेब उत्पादकों के लिए MIS के तहत 20 करोड़ रुपए जारी करने

0: और चतुर्थ श्रेणी पेंशनरों के बकाया बिलों का जल्द भुगतान करने के दिए निर्देश। राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने शिमला में तंबाकू मुक्त हिमाचल अभियान का किया शुभारंभ। समाज में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति से निपटने के लिए युवाओं को जागरूक करने पर दिया बल। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा, विधान मंडलों के कार्य संचालन व प्रक्रिया नियमों में समानता लाने में लोकसभा के प्रयास सराहनीय। भाजपा ने नगर निगम चुनावों के लिए जारी किए संकल्प पत्र। कांग्रेस ने सोलन नगर निगम के लिए घोषणा पत्र किया जारी। और भारी बर्फबारी के कारण बंद चंबा किलाड़ वाया साच पास मार्ग और मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग यातायात के लिए बहाल। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
1: बंधु, नई कार जीतने का मौका, वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
2: रुक जा बुद्धू।
3: ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल

0: uppskar.
1: बुद्धू, नई कार जीतने का मौका? वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
2: रुक जा बुद्धू।
3: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
1: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
4: पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर भी सुना गया। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं समूह स्वरों में देशगान।

0: अभी आप सुन रहे थे समूह स्वरों में देशगान। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है, कृपया हमारी अगले उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: हेलो, गुड इवनिंग, आदाब, नमस्कार। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी FM शिमला सुन रहे हैं आप, और स्वागत है आप सभी सुनने वालों का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे उन नगमों की जो ना तो पुराने होते हैं और ना ही भुलाए जाते हैं। जी हाँ, आज के कार्यक्रम में सुनेंगे कुछ एक ऐसे सुर जो हर दौर में गूंजते हैं। आइए जुड़ते हैं दिल के तार इस गीत के साथ, जिसे गाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने। फिल्म है यादों की बारात।

आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी का गाया ये गीत अभी आपने सुना। और देखिए ना, जब भी प्यार का जिक्र होता है किशोर कुमार की आवाज़ अनायास ही याद आने लगती है। और प्यार का मौसम हो या दिल की धड़कन, उनके गानों का जादू बेमिसाल है। और अगर बात करें सुरों की मल्लिका लता मंगेशकर की, तो उनकी आवाज़ आज भी हमारे या किसी भी श्रोता के कानों में मिश्री सी घोल देती है ना। तो आइए सुनते हैं एक ऐसा गीत जो रूह को छू जाता है और जाग जाता है, एक ऐसा एहसास जो बरसों से कायम है। आइए सुनते हैं ये गीत।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का आनंद आप ले रहे हैं एफएम शिमला से। और देखिए ना, गीत संगीत का सिलसिला जारी रखते हुए सुनते हैं नया दौर फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने। साहिर के बोल है और संगीत है ओपी नायर का।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले का गाया ये गीत अभी आपने सुना, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। और कितना आनंद आता है इन पुराने गीतों को सुनकर, है ना। पुरानी दोस्ती हो, पुराना प्यार हो, या फिर पुरानी कोई चीज़ हो, उसे हमें अटैचमेंट होती ही है। और जब तो बात आती है गीत संगीत की, तो इसका तो अपना मज़ा अलग ही है। और अपने हसीन होंठों को किसी पर्दे में छुपा लिया करो, हम गुस्ताख लोग हैं, नज़रों से चूम लिया करते हैं। चांद की अगर हम बात करते हैं, तो चांद की तुलना हर महबूब ने की है अपनी महबूबा से। जी हाँ, और कई जगह तो महबूबा को चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत बताया गया है। चांद रोज़ छत पर आकर इतराता बहुत था, कल रात मैंने भी उसे तुम्हारी तस्वीर दिखा दी। अजीब सी बेताबी है, तुम्हारे बिना रह भी लेते हैं और रहा भी नहीं जाता। और तुम मिले तो मुझे नाज है अपने पर, इसके अलावा हम कुछ मांगते भी नहीं उस खुदा से। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का आनंद आप ले रहे हैं FM शिमला से। और देखिए ना, वक्त का कुछ पता ही नहीं चलता, बातों ही बातों में हम अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं कार्यक्रम के।

तो चलिए, कार्यक्रम का अंतिम नगमा आपको सुनाने जा रहे हैं इज्जत फिल्म के इस गीत के रूप में। आइए सुनते हैं।

जुड़े हैं आप आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं नाम गुम जाएगा फिल्म के इस गीत के साथ।

श्रेया घोषाल और उदित नारायण की आवाज़ों में आपने ये गीत सुना। अगला गीत आपको सुनाने जा रहे हैं कुछ ना कहो फिल्म से। आवाज़ें हैं उदित नारायण और कविता कृष्णामूर्ति की और बोल है जावेद अख्तर के। आइए सुनते हैं।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत में फिलहाल इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ जुड़े हैं आप समाचार संध्या और न्यूज़ 8:09। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से बस कुछ ही देर में।

0: दिल्ली स्टूडियो।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। सीबीआई ने कथित नीट परीक्षा पेपर लीक संबंध में मामला दर्ज किया। देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। तमिलनाडु में एआईएडीएमके पार्टी में फूट। 30 विधायकों का बड़ा गुट विजय की सरकार का समर्थन करेगा, विश्वास मत कल। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर की अदालतों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। भारत 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी बृहस्पतिवार से करेगा। इसमें पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच घरेलू बाजार में लगभग 2% की गिरावट। और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के

0: कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग के लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। जांचकर्ता अब संदिग्ध नेटवर्क के विस्तार और परीक्षा से पहले प्रश्न पत्रों के प्रसार से जुड़े धन के लेन देन की जांच कर रहे हैं। दल ने कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। सूत्रों के अनुसार इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। अगले दिन 4 नीट परीक्षार्थियों को भी गिरफ्तार किया गया। उधर नासिक पुलिस ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित टीवी के सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना DMK पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर 2 गुटों में बट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडापड्डी के पलानीसामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न देने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने SP वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना DMK पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। सरकार को अम्मा मक्कल मुनित्र कड़गम के एकमात्र विधायक S कामराज का भी समर्थन प्राप्त है, जिन्हें आज ही उनकी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय कल से ही विश्वास मत से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं से बैठकें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंत नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा सहित 4 मंत्रियों को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने कुशल प्रशासक के रूप में पहचान बनाई है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने अपने हाथ में ले ली है। मामले की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक पंकज सिंह की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है। इस बीच पुलिस ने इस मामले में उत्तर प्रदेश और बिहार से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। न्यायालय ने आरोपियों को 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता

0: रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे, इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में से के नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन के समर्थन से जुड़ी खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये खबरें पहले से ज्ञात तथ्यों की पुष्टि करती हैं।
1: ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुए आतंकी हमले का एक सटीक, लक्षित और नपातुला जवाब था। इसका उद्देश्य उन आतंकवादी ढांचों को नष्ट करना था जो न केवल पाकिस्तानी राज्य द्वारा प्रायोजित है बल्कि पाकिस्तान से और उनके इशारों पर चलता है। अब यह उन राष्ट्रों को ही तय करना है, उन पर ही निर्भर करता है जो स्वयं को जिम्मेदार मानते हैं कि वे इस बात पर आत्मचिंतन करें कि क्या आतंकवादी ढांचे को बचाने के प्रयासों का समर्थन करना उनकी प्रतिष्ठा और वैश्विक साख को प्रभावित करता है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। श्री शाह ने कहा कि इस कदम से अवैध खातों का तेजी से पता लगाया जा सकेगा और उन्हें समाप्त किया जा सकेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आर्थिक, तकनीकी अथवा भू राजनीतिक हर तरह की बाधाओं का सामना करने में सक्षम है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि खंडित भू राजनीतिक और व्यवसायिक परिस्थितियों के कारण दुनिया हर दिन संकटों का सामना कर रही है, लेकिन भारत ने लगातार प्रतिकूल परिस्थितियों को अवसरों में परिवर्तित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोने की खरीद टालने और विदेश यात्रा से बचने की अपील एक सकारात्मक कदम और एहतियाती उपाय है। उन्होंने कहा कि देश में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि इस समय विपक्ष को सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए।
2: विपक्ष को चाहिए कि वो पैनिक ना फैलाए, भ्रम की राजनीति ना करे और आपदा में अवसर की खोज और आविष्कार ना करें। और जिस तरह से कोविड की महामारी में भी विपक्ष ने ऐसी ही भूमिका निभाई थी, लेकिन भारत कोविड की महामारी से उभर पाया और मजबूत होकर निकल के आया, वैसे ही ये जो वैश्विक संकट है, चुनौतियां हैं इसमें, लेकिन भारत में वो मजबूती है कि इन चुनौतियों के सामने मजबूती से खड़ा भी रहेगा और मजबूत होकर उभर के आएगा।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।
3: आईसीएसईआर समय को आगे जाते हुए आने वाले 10-15 साल भारत को 2047 की रोड मैप में पहुंचने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस किस प्रकार की सोशल चैलेंजेस को ध्यान देना पड़ेगा, ये आईसीएसईआर के आने वाले 10-15 साल के काम होने चाहिए। हमें अपनी भाषा को महत्व देना पड़ेगा, हमारी अर्थनीति को मजबूत करना है तो हमारी भाषा को हमें महत्व देना पड़ेगा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स चिकित्सा नवाचार और स्वास्थ्य सेवा उत्कृष्टता के क्षेत्र में देश का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। आज नई दिल्ली में एम्स के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि एम्स ने किफायती दरों पर रोगी देखभाल और आधुनिक चिकित्सा के उच्चतम मानक स्थापित किए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov

0: www.newsone.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच बंबई शेयर बाजार में लगभग 2% की गिरावट आई है। अन्य आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
1: बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 1.9% के नुकसान से 1456 अंक लुढ़ककर 74,559 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.8% की गिरावट से 436 अंक गिरकर 23,380 के स्तर पर रहा। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 32 पैसे की गिरावट से 95.63 रुपए प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर दर्ज हुआ।
0: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने

है। ये लगातार चौथा वर्ष है जब बैंक मुनाफे में रहे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह प्रदर्शन तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मजबूती और स्थिरता को दर्शाता है। गुजरात में जनगणना का पहला चरण 1 जून से शुरू होगा। लोगों को पहली बार भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वगणना पोर्टल se.census.gov.in के माध्यम से जनगणना में शामिल होने का अवसर मिलेगा। 17 से 31 मई तक लोग पोर्टल पर स्वगणना पूरी कर सकेंगे। 1 से 30 जून तक नामित जनगणना अधिकारी घर घर जाकर जानकारी एकत्र करने के लिए परिवारों की सूची तैयार करेंगे। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने आज रीभोई जिले के भोईरिमबोग में एरी रेशम प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य राज्य के पारंपरिक रेशम उद्योग को मजबूत करना और बुनकरों के लिए बेहतर बाजार पहुंच बनाना है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन में पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया के पुत्र एरवियान सिंह और बगास मोलाना को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि हरिहरन अमसा कारुनन और एमआर अर्जुन तथा महिला डबल्स में ऋतुपर्णा श्वेतापर्णा पांडा को हार का सामना करना पड़ा। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में लक्ष्य फोगाट ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि 4 अन्य मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल मुकाबलों में कांस्य पदक हासिल किया। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 124 रन बना लिए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के लिए पंजीकरण जल्द ही समाप्त होने वाले हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को 19 मई से पहले यात्रा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए mygov.gin पर लॉगिन कर सकते हैं। सीबीआई अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सीबीआई ने कथित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में मामला दर्ज किया। देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया। तमिलनाडु में AIADMK पार्टी में फूट। 30 विधायकों का बड़ा गुट विजय की सरकार का समर्थन करेगा, विश्वास मत कल। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर की अदालतों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। भारत 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी बृहस्पतिवार से करेगा। इसमें पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच घरेलू बाजार में लगभग 2% की गिरावट। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

सॉन्ग आपने एंजॉय किया पुष्पा टू द रोल फिल्म से। जी हाँ, और अब बता देते हैं आपको कि ये फिल्म रिलीज़ हुई थी 5 दिसंबर 2024 को। जी हाँ, और इस दिन दुनिया भर में स्टैंडर्ड आईमैक्स 4DX डी बॉक्स और PVR IFC फॉर्मेट में रिलीज़ हुई ये फिल्म। समीक्षकों से इसे मिली कुल प्रतिक्रियाएं, जिनमें एक्शन सीक्वेंस और अभिनय की प्रशंसा की गई थी। बता देते हैं आपको कि फिल्म एक बड़ी व्यावसायिक सफल फिल्म भी रही, जिसने दुनिया भर में 1642 से 1800 करोड़ की कमाई की, और इस कारण से ये रिलीज़ के समय भारत में दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली और दुनिया भर में चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली इंडियन फिल्म बन गई। सुनते हैं इस फिल्म का नेक्स्ट सॉन्ग।

0: एक फिल्म से कार्यक्रम आप सुन रहे हैं एफएम शिमला से, और आज के इस प्रोग्राम में आप एंजॉय कर रहे हैं पुष्पा टू द रोल फिल्म के सॉन्ग्स। चलिए अब सुनाते हैं आपको प्रोग्राम का लास्ट सॉन्ग।
1: पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा पुष्पा

Papuş papuş papuş papuş.

इसी गीत के साथ एक फिल्म से कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आपको नहीं जाना है कहीं भी, यूं ही बने रहिए एफएम शिमला के साथ, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

ट्यून इन आप 103.7 MHz आकाशवाणी FM शिमला के साथ, और FM शिमला से ये समय रहता है आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम दिल की आवाज़ भी सुनकर। जी हाँ, तो कार्यक्रम में आपके लिए लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक खूबसूरत फिल्मी नगमे। तो क्यों ना शुरुआत की जाए इस सॉन्ग से, आइए सुनते हैं।

अब धुन ये किसको सुनाएगी, ये तेरी पायल किसको नींद से जगाएगी। पायल न केवल एक खूबसूरत आभूषण है, बल्कि ये प्रेम और सौंदर्य और नारीत्व का प्रतीक भी है ना। और देखिए ना, अगर हम बात करते हैं पायल की, तो बहुत सारी जो दिल की बातें हैं या दिल की आवाज़ जो हम मुँह से नहीं बोल पाते हैं, हमारे जो गहने हैं या फिर जिन्हें हम बेहद प्रिय मानते हैं, एक औरत श्रृंगार के आभूषणों में चूड़ियाँ पायल

ये हो जाते हैं, और कंगन भी बोलते हैं, पायल भी बोलती हैं। तो कहते हैं ना कि तेरी पायल की आवाज़ दिल की धड़कन हो जैसे, हर खनक में बस तेरा ही जादू हो। तो पायल की बात हम कर रहे हैं कार्यक्रम में, सुनते हैं अगला गीत, और भी करेंगे और बहुत सारी बातें।

देखिए ना, हम सभी की लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा आ ही जाता है जिसकी एक खुशी के लिए और जिसका प्यार पाने के लिए हम सारा जहान भूल जाते हैं, बस जिंदगी के सफर में उसी के साथ की चाहत रखते हैं। बहरहाल, हम बात कर रहे थे पायल की। तो पायल, तेरे पाँव में बसी जो ये पायल की खनक, उसमें बसा है मेरे दिल का हर ख्वाब हर ख्वाहिश। पायल में बसा है तेरा प्यार, तेरी हर आवाज़ की मीठी बातों का संसार, तेरे कदमों की खनक से खिला है सारा जहां, तेरी पायल की आवाज़ जैसे हो प्यारा सा गहना, तेरे बिना सब कुछ अधूरा सा लगता है, पायल की खनक सुनकर मेरा दिल पूरा सा लगता है। तो चलिए सुनते हैं अगला गीत जिसमें पायल का जिक्र है।

पायल की छनक तेरे प्यार का पैगाम है, तेरी हर आवाज में दिल लुभाने का काम है। चाहे दूर हो तुम लेकिन तेरी पायल की आवाज़ कानों में गूंजती है, मेरे दिल की धड़कन तुमसे ही मिलती है। पायल की आवाज़ में बसी है तुमसे मिलने की चाहत, तुम्हारे बिना ये दुनिया लगती जैसे अधूरी रात है। पायल की धुन में खो जाता है ये दिल, तुम्हारे कदमों से ही जीने की वजह मिलती है। पायल की खनक बयां करती है मेरा दिल, बस यही बतलाती है पायल में बसी है तेरी रूह की मीठी आवाज़, जिसे सुनकर दिल में बजने लगते हैं सुकून के ताज। पायल के वो घुंघरू जैसा प्यार है, तेरे कदमों की आवाज़ में सारा संसार है। दिल की आवाज़ भी सुन प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं आप FM शिमला से। और कई बार अगर दिल से सुनो तो स्त्री का श्रृंगार भी बहुत कुछ कह जाता है, और कभी कभी तो यूँ लगता है कि आभूषण और कपड़ों का सामंजस्य इतना गहरा है कि आपस में ही बतिया जाए। तो चलिए सुनते हैं प्रोग्राम का लास्ट सॉन्ग।

उजाड़ कर वफाओं का गुलसिता वो मेरी ज़िंदगी को वीरान कर गया। चाहा था जिसे रब से भी ज़्यादा, करके बेवफाई वो मुझे हैरान कर गया। 103.7 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला। समय है गज़लों के कार्यक्रम का, तो गज़लों का आनंद आप लेंगे हमारे साथ। आगाज़ करते हैं जगजीत सिंह की गाई इस गज़ल से।

अपने दिल का उनकी मोहब्बत से सौदा कर आए, उनसे नज़र मिली और आँखों में हज़ार ख्वाब उतर आए। कभी तैरते थे कभी डूबते थे जिंदगी के सागर में, जब से पकड़ा उन्होंने हाथ साहिल पास खुद चलकर आए। जगजीत सिंह की गाई गज़ल अभी आपने सुनी। अगली गज़ल आपको सुनाने जा रहे हैं सुरेश वाडेकर की आवाज़ में।

अब जरूरत नहीं हमको किसी भी जन्नत की, उनके सायों से लिपट कर हम सारी जन्नतों से गुजर आए। कभी छोड़ कर जा चुकी थी हमको सारी खुशियाँ, मगर उनके आने से खुशियों के दिन फिर लौट कर आए। पंकज उदास की आवाज़ में अभी आपने सुनी गज़ल। गज़लें आप सुन रहे हैं FM शिमला से, और अब कार्यक्रम की अंतिम पेशकश के रूप में आइए सुनते हैं ये गज़ल, जिसे गाया है जगजीत सिंह और चित्रा सिंह ने।

सुन रहे हैं आप आकाशवाणी FM शिमला 103.7 MHz पर सदाबहार नगमे कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं हम। और हमेशा की तरह कार्यक्रम में आनंद लेंगे कुछ ऐसे फिल्मी नगमों का जिन्हें सुनकर हम याद करते हैं अपने हसीन लम्हे, कुछ हंसाने और कुछ रुलाने वाली यादें, साथ ही साथ बीते सुनहरे पल भी। तो सबसे पहले आपको सुनाने जा रहे हैं आदमी खिलौना है फिल्म का ये गीत, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत और आवाज़ें हैं मोहम्मद अजीज़ और अलका याग्निक की। आइए सुनते हैं।

सदाबहार नगमे हमेशा दिल को एक नई उमंग देते हैं और दौर चाहे कोई भी हो, इन नगमों को सुनने का एक अलग ही आनंद होता है और एक गहरा सुकून भी मिलता है मन को। फूल और कांटे, जी हाँ, इस फिल्म का गीत अब आप सुनने जा रहे हैं अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज़ों में। गीत को संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने और गीतकार है समीर।

सदाबहार नगमे आप एंजॉय कर रहे हैं एफएम शिमला से, और गीत संगीत का ये सिलसिला थमने नहीं देंगे। तो इसी कड़ी में अगला गीत आपको सुनाने जा रहे हैं पत्थर के सनम फिल्म से, जिसे गाया है मुकेश ने। आइए सुनते हैं।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं FM शिमला से। और देखिए ना, जिंदगी कभी कभी उदास हो जाती है, बेरंग नीरस सी लगती है, लेकिन ये नगमे यानी कि सदाबहार नगमे मस्ती भी खेलने के लिए ही बने हैं। जी हाँ, इनके साथ हम गुनगुनाते रहते हैं। तो देखिए, कार्यक्रम पहुँच चुका है अंतिम पड़ाव पर और वक्त का पता ही नहीं चला। ये शाम भले ही ख़त्म हो रही है, लेकिन ये सदाबहार नगमे

0: इसी गीत के साथ सदाबहार नगमे कार्यक्रम में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी FM शिमला के साथ जुड़े हैं आप। हिंदी और अंग्रेजी में समाचार अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट UG 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट UG परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष CBI टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई है। नीट UG 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में ले लिया है। कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। उधर नासिक पुलिस ने नीट UG परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट UG 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट UG परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
2: हमने इस मैटर को CBI को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
1: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित TVK सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना DMK पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को TVK सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने SP वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना DMK पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान TVK सरकार का समर्थन करेगा। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता हिमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ 4 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इसमें भाजपा के से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को

0: त्वरित निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन आज से शुरू हो गया है। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया की जोड़ी को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The Central Bureau of Investigation, CBI, has registered a case in connection with an alleged paper leak in the conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026. The agency has registered the case based on a written complaint received from the Department of Higher Education, Ministry of Education. The agency stated that special CBI teams have been formed and dispatched to various locations for an investigation into the matter. NEET UG 2026 exam was conducted by the National Testing Agency, or NTA, on the 3rd of this month. In this case, the Rajasthan Police Special Operations Group, SOG, has so far detained 15 people. The SOG yesterday detained an alleged mastermind identified as Manish from Jaipur. Addressing a press conference on NEET exam cancellation in New Delhi, DG National Testing Agency Abhishek Singh said, NTA will conduct a re-exam for students and it will be done in a fair manner and no additional fee will be charged for the re-exam. The political situation in Tamil Nadu has turned dramatic ahead of tomorrow's floor test for the newly elected TVK government led by Joseph Vijay. The All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam has split into two groups over extending support to the government. The faction led by former Chief Minister and Party General Secretary, Edappadi K. Palaniswamy, has directed party MLAs not to support the TVK government. Senior leader Agri Krishnamurthy has warned that any MLA violating the party whip would face expulsion. Meanwhile, another faction claiming the support of 30 MLAs has elected SP Velumani as the AIADMK Legislature Party leader. Leaders of the faction met the media today after a meeting at former Minister C.V. Shanmugam's residence. Shanmugam announced that the group will support the TVK government during the trust vote. Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma has taken oath as the Chief Minister of Assam for a second consecutive term. Governor Lakshman Prasad Acharya administered the oath of office and secrecy to him at a ceremony held at the Veterinary College ground in Kanapara, Guwahati. Along with Dr. Sarma, 4 MLAs were also sworn in as cabinet ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, several Union Ministers and Chief Ministers from NDA-ruled states attended the ceremony. Chief Justice of India Surya Kant has announced to constitute a high-powered committee headed by Supreme Court Justice Arvind Kumar to prepare a blueprint for the modernization of courts across the country and secure a government allocation of 40 to 50,000 crore rupees for the purpose. The Judicial Infrastructure Advisory Committee will address infrastructural deficiencies in courts through substantial financial support from the government. The Ministry of Education today organized a high-level diplomatic interaction on Bharat Innovates 2026 in New Delhi as part of preparations for the Global Innovation Event scheduled to be held in Nice, France from 14th to 16th of June.